你的对立广播电台听众朋友们，下一首歌是朱比呢那提亚勒唱的，请收听。

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस बालकांड भाग 99। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद आप सुन सकेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थितः भविष्यति। पञ्चदशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् अनन्तरं इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमन्त्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः 4,000+ सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद सूरत वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य 14 जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवाविस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्तसंघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन् यूनः मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
2: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गयी FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं जो साझा इतिहास सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है इसमें प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है ये एक निष्पक्ष समान और बहुत संतुलित समझौता है
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए

0: 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम

0: पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
8: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
7: Union Home and Corporation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program.
9: Developed by Sahakar Taxi Cooperative Limited with the support of 8 major cooperative institutions including Amul, IFFCO and NABARD, Bharat Taxi operates on a zero-commission model to pass the maximum financial benefits directly to drivers. Since its soft launch in December last year, this platform has registered over 1.5 lakh drivers and 7 lakh customers in Gujarat alone, completing more than 3,500 rides daily. The service will initially be launched across 14 major cities in Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with a target to cover the entire state within a month. Aparna Khun, Akashwani News, Gandhinagar.
7: Secretary, Department of Atomic Energy, Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में 2 बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और 2 तरफा ताउन के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। नीज वो बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन-उल-अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर आज़म मोदी अपने दौरे में सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। आज वो शजरकारी की एक तकरीब में जड़ी बूटियों के एक बाग की सैर करेंगे और सेशल्स के साहिली गार्ड के ठिकाने का दौरा करेंगे। भारत और सेशल्स के दरमियान एक देरीना शराकत दारी है जिसकी जड़ें तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। बहिरे बहरे हिंद खित्ते में एक समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का भारत के विजन महासागर में एक खास मकाम है और आलमी जुनूब के तई इसका एक अहद है। वज़ीर आज़म के इस दौरे से भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती और सभी शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के मुश्तरक अज़्म का इआदा होता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इमदाद बाहमी पर मबनी पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का गुजरात के 14 बड़े शहरों में आगाज करेंगे। ये तकरीब आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुनाकिद की जाएगी। जनाब शाह गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। वो बहुत से बुनियादी कामों का भी आगाज करेंगे और कुछ जायजा मीटिंगों की सदारत करेंगे। हमारे नामा निगार ने बताया है कि इस प्रोग्राम में वजीर आला भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी, इमदाद बाहमी शोबे के नुमाइंदगान और 4000 से ज्यादा ड्राइवर्स शिरकत करेंगे। इस तकरीब के दौरान आला तरीन कारकर्दगी की पेश करने वाले ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म से मुतालिक सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत टैक्सी को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने 8 बड़े इमदाद बाहमी इदारों की मदद से तैयार किया है जिनमें अमूल, इफको और नाबार्ड

0: शामिल हैं। ये इदारा अपना कामकाज बगैर किसी कमीशन के अंजाम देता है, जिसकी वजह से ज्यादा माली फायदा बराह रास्त ड्राइवर्स को जाता है। पिछले साल दिसंबर में जब भारत टैक्सी का ऑनलाइन आगाज हुआ था तो इस पर सिर्फ गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा ड्राइवरों और 7 लाख से ज्यादा सार्फिन ने इंदराज कराया था, और तभी से रोजाना 3,500 से ज्यादा लोग इसके जरिए सफर कर रहे हैं। ये सर्विस इब्तदाई तौर पर गुजरात के 14 बड़े शहरों में शुरू की जाएगी, जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा भी शामिल हैं, और ये सर्विस 1 महीने के अंदर अंदर पूरी रियासत में शुरू कर दी जाएगी। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: एटमी तवानाई के महकमे के सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है। ये फैक्ट्री कॉपर क्लोरीन हरारती कीमियावी तसलसल पर मबनी है और जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। ये फैक्ट्री कलापक्कम में एटमी तहकीक के इंदिरा गांधी मरकज में कायम की गई है। डॉक्टर मोहंती ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई को हाइड्रोजन की तैयारी जैसी माहौल के लिए साजगार तवानाई की उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मरबूत किए जाने से तवानाई से मुतालिक एक पायदार मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इस मुनफरिद अहलियत वाली न्यूक्लियाई तवानाई से कार्बन से पाक काबिल इन्हिसार बिजली फराहम होगी। देही तरक्की के वजीर जनाब शिवराज सिंह चौहान इस माह की 28 और 29 तारीख को नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस 2026 की सदारत करेंगे। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में देही तरक्की के वुजरा, सभी रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के सरकारी सीनियर ओहदेदार और माहिरीन मजमुई देही तरक्की पर तबादला ख्याल करेंगे और अहम प्रोग्रामों का जायजा लेंगे। नीज देही भारत के लिए मुस्तकबिल का खाका तैयार करेंगे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान की क्यादत में पहली मरतबा इतने वसी पैमाने पर कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियों के तनाजुर में अमरनाथ यात्रा के रास्ते की 24 घंटे मुसलसल निगरानी की गरज से टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी का मंसूबा प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। जम्मू के हमारे नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक अनकरीब अमरनाथ यात्रा के लिए तौसी दिए गए सिक्योरिटी निजाम के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने इस पहल का आगाज किया। प्रोजेक्ट हॉक आई के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने यात्रा के रास्ते पर फजाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट्स तैनात किए हैं। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की। इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज दोपहर 5:10 से सुन सकते हैं। आप हमारे ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम कल सुबह 9:10 पर भी नशर किया जाएगा। ये खबरनामा आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद 920 तक पहुंच गई है और तकरीबन 3,300 अफराद जख्मी हुए हैं। बचाव कारकुन राजधानी के करीब इलाके में इन जलजलों के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने वेनेजुएला में इन तबाहकुन जलजलों के बाद ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ऑपरेशन एमिस्ताद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद और कुदरती आफात की सूरत हाल में एक राहत मिशन है, जिससे वेनेजुएला के आवाम के साथ यगानगत का इजहार होता है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई के तहत भारतीय फजाइया के 2 C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे कल वेनेजुएला भेजे गए थे। ये तैयारे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहत का सामान लेकर गए हैं, जिनमें बचाव टीम के 41 अरकान भी हैं। वेनेजुएला की आरजी सदर डॉल्सी रोड्रिग्ज ने जलजलों के बाद भारत की यगानगत का इतराफ किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मुश्किल घड़ी में भारत और वेनेजुएला के अवाम के दरमियान तआवुन के जज्बे की हामिल है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: कॉमर्स और सनत के

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
1: स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति न केवल अपनी शारीरिक हानि करता है बल्कि अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक वातावरण को भी दूषित करता है। नशे के प्रभाव से बच्चे, बुजुर्ग और युवा कोई भी अछूते नहीं हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ साथ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ाई के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष 26 जून को नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे युवाओं में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत, इस विषय पर एक परिचर्चा। प्रतिभागी हैं मनोचिकित्सक डॉ. निमेश देसाई, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुपम गोयल और मनोचिकित्सक डॉ. सजीला मैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉ. जवाहरलाल जैन।
2: श्रोताओं, हर वर्ष 26 जून नशीले पदार्थों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और ये 7 दिसंबर 1987 को यूएन जनरल असेंबली में डिसाइड किया गया था। इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं प्रोफेसर निमेश देसाई, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं इभास यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज, बहुत ही जाने माने मनोचिकित्सक हैं। हमारी दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुपम गोयल, जो कि डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत और सीनियर कंसल्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस। और हमारी तीसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सजीला मैनी, जो कि बहुत ही सीनियर वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल। ये माना कि आज का सामाजिक जीवन भी विषमताओं से भरा हुआ है। प्रत्येक मानव मस्तिष्क नाना प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त है और ये कुंठाएं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति पाती हैं। कभी खुद को नशीले पदार्थों या धूम्रपान का सेवन कर या फिर किसी और के साथ मिलकर नशीले पदार्थों का सेवन करना, दोनों ही स्थितियां सामाजिक दृष्टि से भयावह है, आप मानते होंगे। इससे प्राय सभी सहमत है कि नशे का प्रारंभ किशोरावस्था में किया जाता है। आज के संदर्भ में स्कूलों, विश्वविद्यालयों की छात्र छात्राएं हो अथवा कार्यरत मजदूर या खिलाड़ी, धुएं के छल्ले सर्वत्र उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। शायद मानसिक तनाव, उदासी, चिंता, शायद कुछ वजह हो सकती है और ये सब जानेंगे हम अपने विशेषज्ञों से। डॉक्टर निमेश देसाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि हर वर्ष ये जो 26 जून है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है, तो जैसे हर वर्ष कोई ना कोई थीम दिया जाता है, तो क्या हम साल में एक दिन थीम देने से क्या हम इस समस्या पर कंट्रोल कर सकेंगे और इस थीम का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आप बताएं।
3: मुझे लगता है सोचने लायक बात यह है कि जैसे आपने मुद्दा उठाया, क्या साल में एक दिन किसी थीम पे या किसी इश्यू पे चर्चा करके सामाजिक समस्याएं हल की जा सकती है? कतई नहीं। हमें किसी भी ऐसे महत्व के मुद्दे पे साल भर गौर करना चाहिए और चर्चा करते रहना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। एक का दिन ज्यादा और एम्फेसाइज हो जाता है, सबको याद हो जाए कि भैया ये मुद्दा भी मायने रखता है। जो रासायनिक पदार्थों के सेवन की बात है, सामाजिक रूप से सेवन पहला चरण है। कभी कभार कोई रासायनिक पदार्थ ले लिया जिससे थोड़ा नशा हो, थोड़ी रिलैक्सेशन मिले, उसका नेक्स्ट लेवल होगा हैबिट हो जाए, आदत, और फिर तीसरा चरण होगा लत की बीमारी या व्यसन की बीमारी।

0: यहां सबसे ज्यादा मुझे लगता है, जैसे आपने कहा, यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने जो इलीगल ड्रग्स है इसपे ज्यादा फोकस करते हैं, यूएन का प्रोग्राम, इसलिए ऑफिशियली रहता है एम्फेसिस अवैध ड्रग्स पे। लेकिन अगर सामाजिक रूप से सोशली सोचें और पब्लिक हेल्थ की तरफ से, जनस्वास्थ्य की तरफ से सोचें, तो हमें तंबाकू और शराब जैसे जो नशीले पदार्थ है उनको कतई हमारी दृष्टिकोण से बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेविंग लाइफ, जीवन बचाने वाली जो बात है, सच्चाई ये है कि जबकि अवैध पदार्थ से बहुत सारी मौतें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत ज्यादा हद तक बीमारियां होती है शराब और तंबाकू के सेवन से
1: जी।
0: तो अगर रासायनिक पदार्थ का बड़ा सा परिपेक्ष रखा जाए, तो एक वो है फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रग्स, दूसरा है स्पेक्ट्रम ऑफ यूज फ्रॉम सोशल यूज टू एडिक्शन, तो करीब करीब पूरे समाज में काफी हद तक ये मुश्किल फैली हुई है। और संक्षेप में एक बात कर ले जो आदमी करेंगे शायद, लेकिन हम शायद हमारे श्रोताओं को इंटरेस्ट रहेगा, नॉन केमिकल एडिक्शन उसमें भी अब फोकस होने लगा है, मोबाइल टेक एडिक्शन।
1: डॉक्टर जी लेमनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सीनियर मनोवैज्ञानिक है। ये जानते हुए कि आज का यूथ भी ड्रग्स की तरफ लालायित है और सब ये मानते हैं कि किशोरावस्था में शुरू किया, ये मनोवैज्ञानिक एंगल इसका क्या है?
2: कोई भी इंसान जब शुरू करता है वो ये नहीं सोचता कि मैं इसका गुलाम बन जाऊंगा, वो शुरू शौक शौक में करता है, उसको मजे मजे में करता है, उसको पता ही नहीं होता, वो उसको शुरू में पूछो कि तुम्हें आदत लग जाएगी, वो अगर एक दिन भी नहीं करता तो कहता मैं तो कहां करता हूं, मैं तो पेरेंट्स होते तो नहीं करता, ये छुट्टी पे जाता हूं, ये माँ बाप होते हैं तो कोई नहीं करता हूं। तो उसको तब तक, जब तक उसको आदत, जब तक उसको आदत उसके सर पे जड़ के बोलती नहीं है ना, तब तक वो मानता नहीं कि मुझे जो है आदत की का ग्रस्त मैं हो चुका हूं। तो इसकी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे प्रिपरेशन स्टेज है, शुरू में उसके घर में देखता है किसी को अगर पेरेंटल स्मोकिंग है तो फिर शुरू में नफरत करेगा, पेरेंट्स मेरा स्मोक कर रहा है या कुछ कोई अल्कोहल ले रहे हैं कुछ कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा जैसे माँ बाप का आचरण होता है, धीरे धीरे बच्चा भी उसी चीजों में चला जाता है। और दूसरी चीज है पीयर प्रेशर, आजकल इतना ज्यादा पीयर प्रेशर हो रहा है कि लोगों को अगर वो इस चीज का सेवन ना करें तो ग्रुप के बाहर हो जाते हैं, आप समझिए ग्रुप का भी हिस्सा बन जाते हैं, पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे आजकल आता है सोशल मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है यूथ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है डोंट केयर एटीट्यूड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, माँ बाप जो बोले बोले या जो बोले उसको फर्क नहीं पड़ता। और आजकल ये भी देखा गया है जो कैनबिस है वो इतना कॉमन है यंगस्टर्स के अंदर, और एज ऑफ अपटेक आपकी रेगुलरली डिक्रीज होती जाती। तो बेसिकली क्या है, इंसान शुरू होता है धीरे धीरे करके उसको हैबिट लगती है, फिर उसकी कोपिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है वो, ठीक है। कोपिंग मतलब वो एक टिपिकल एक बंदा जो स्मोक करता है उसका देखिएगा, उसकी दिन की शुरुआत जो है वो सिगरेट से शुरू होती है और दिन का खात्मा सिगरेट से होता है। तो अगर 20 बार ले रहा है तो 20 बार दिन में वो सिगरेट पी रहा है, वो खुश है तो पीता है, दुखी है तो पीता है, काम बहुत है तो पीता है, काम नहीं है खाली बैठा हूं टाइम पास कैसे करूं तो पीता है, टॉयलेट जाना है तो पीना है, खाना खाना है तो पीना है, चाय पीनी है तो पीना है, हर चीज के साथ एसोसिएटिव इफेक्ट है वो इंसान को मार देता है। और कभी भी कोई भी नशा जब भी कोई स्ट्रेस होता है उसमें ज्यादा बढ़ता है।
0: The reasons for starting are psychological and social, कौतूहल, पीयर प्रेशर, बाकी सामाजिक मुद्दे। जो एंड स्टेज है, सेकंड हाफ है, आदत या लत की बीमारी, वो ऑलमोस्ट ऑलवेज बायोलॉजिकल होता, वो जो एडिक्शन का प्रोसेस ब्रेन में हो गया, उस रासायनिक पदार्थ ने ब्रेन के कुछ हिस्सों पे ऐसा असर शुरू कर दिया कि अगर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे वो पदार्थ नहीं लिया तो तकलीफ होगी। हाँ। तो हमें चाहिए कि सामाजिक रूप से ये समझ लें कि जो लत की बीमारी के शिकार है उनको चाहिए इलाज और सहानुभूति।
1: जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अनुपम गोयल। अब जैसा डॉक्टर सजीला भी कह रही हैं और डॉक्टर निमेश भी कह रहे हैं कि मेनली ज्यादातर हम अगर बहुत ज्यादा इलिसिट ड्रग्स की ना भी बात करें, शुरुआत में जो है स्मोकिंग से शुरुआत होती है, अल्कोहल से शुरुआत होती है, चाहे वो सामाजिक इशू पे है, पीयर प्रेशर के ऊपर है, और ये दोनों के केसेस रिलेटेड आपके पास निश्चित रूप से आते हैं, क्योंकि स्मोकिंग रिलेटेड हार्ट डिजीज और अल्कोहल रिलेटेड हार्ट डिजीज। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, आप क्या समझ, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं या बिल्कुल नहीं?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनके डेफिनेटली बहुत साइड इफेक्ट हैं, शौक में शुरू होते हैं, एडिक्शन बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। स्मोकिंग से शुरू करते हैं, स्मोकिंग की वजह से ब्लड थिक होता है, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन आता है, यंग एज में हार्ट अटैक्स होते हैं। आपको ख्याल होगा 20-25 साल पहले कोई यंग लड़का अगर चेस्ट पेन से आए, यंग क्या 40 साल से भी छोटा, तो हम लोग सोचेंगे हार्ट का तो नहीं होगा, गैस होगी, मस्कुलर पेन होगा। बट जहां स्मोकिंग का नाम आ गया, पता लग गया कि ये स्मोकिंग करते हैं, अब वो स्मोकिंग आप नॉर्मल टबैको कह लें, वीड कह लें, कैनबिस कहें, तो उन सब से ब्लड थिक होके हार्ट अटैक का रिस्क 10 टाइम्स तक बढ़ जाता है। और ये सब नॉर्मल हेल्दी आर्टरीज हैं जिनमें सडनली हार्ट अटैक की वजह से क्लॉट बन जाता है और पेशेंट का हार्ट डैमेज हो जाता है। सो ये सचमुच में रियलिटी है। और बहुत एक अच्छी बात पता लगी लेडीज, जब भी जैसे आपने बात

0: मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कल की वेट मत कीजिए, आप अभी से छोड़ दीजिए। आप जितना देर लगाएंगे छोड़ने में, आपके लिए छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, जैसे अभी अभी हमारी बात हुई, क्योंकि ये ब्रेन के बायोलॉजिकल सेंटर को अफेक्ट करता है, फिर वो जरूरत बन जाती है।
1: जी अनुपम जी, जैसा आप कह रही हैं कि स्मोकिंग के इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, यंग एज में लड़कियों में भी, लेडीज में भी काफी ज्यादा केसेस देखने जा रहे हैं, तो क्या इसका हार्ट के अलावा ब्रेन पर ऐसा कहीं कोई असर आता है?
0: जैसे अभी बहुत क्लियर शब्दों में बताया गया, ये शुरुआत शौक से होती है, फिर एडिक्शन हो जाती है जो आपके कंट्रोल के बाहर हो गई, क्योंकि आपके ब्रेन के एक सेंटर को इसकी आदत पड़ गई। अब अगर आप नहीं लेंगे तो वो आपको कोचता रहेगा, तो वो स्टेज आने से पहले ही हम रुक जाएं तो वो आसान है। हालांकि रुकना तो हर स्टेज पे ही होगा, और वेपिंग कहें ठीक है, कम नुकसान है, पर नुकसान तो है। जो स्मोकिंग करते हुए वेपिंग पे आ जाएं, चले कुछ बेटर स्टेज पे हुए, पर जो नहीं करता वो वेपिंग करने लगे ये सोच के कि इसके नुकसान नहीं है, ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि नुकसान तो है। और ब्रेन स्ट्रोक होने का रिस्क है, हाथ और पांव की ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार एम्पुटेशन की जरूरत पड़ती है, हार्ट की मसल्स वीक होके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें हमारी बॉडी के सभी सिस्टम्स को अफेक्ट करती हैं।
1: जी निमेश जी, कौन कौन सी दवाइयां ज्यादा देखी जाती हैं, मतलब इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं?
2: चाय कॉफी, कैफीन, तंबाकू, धूम्रपान और तंबाकू वाला पान मसाला, इसको हम भूले नहीं, शराब, सारे फॉर्म्स। अब आए अवैध दवाओं पे। हमारे समाज में प्रणालीगत रूप से कैनाबिस और अफीम, ओपियोइड का सेवन रहा है, अगर हम गौर करें बहुत सारे प्रांतों में। अब 20वीं और 21वीं सदी में आ गए ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जिसका असर दिमाग पे और ज्यादा तीव्र होता है। तो जो अफीम गांव में कस्बों में इस्तेमाल होता था या कैनाबिस भांग यूज होती थी, उसके मुकाबले अब पदार्थ और ज्यादा तीव्र हो गए, ये समस्या है। और बहुत सारी जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है, उनमें और बहुत सारी दवाइयां, पार्टी ड्रग्स, एमडीएमए और एलएसडी और वो चलती हैं, लेकिन मोटे तौर पे अगर ज्यादातर जनता की बात करें तो ओपियोइड्स, जैसे आपने कहा, सारी अफीम से लेके हेरोइन, स्मैक और कैनाबिस के सारे प्रोडक्ट्स। एक मुद्दा मैं यहाँ डॉक्टर साहब ये भी टेबल पे लाना चाहूंगा, जो बहुत सारी नींद की दवाइयां है और गलत फहमी है, मानसिक रोग के लिए जो दी जाती है वो दवाइयां एडिक्टिव अब नहीं रही है, लेकिन जो नींद की दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयों का मिसयूज भी होता है, या पेन किलर जो है, मॉर्फिन का सारा ओपियोइड का ग्रुप में आ गया और बेंजोडिएज़ेपिन्स। तो संक्षेप में सलाह ये भी कर दी है कि जो दवाइयां ब्रेन पे असर करती है उसको खुद ब खुद या केमिस्ट से पूछ के लेना न शुरू करें, न जारी रखें, डॉक्टर से सलाह करके करें।
1: जी अनुपम जी और सजीला जी, दोनों से मैं आपसे इस विषय पर जानकारी जानना चाहूंगा। ये जो नींद की दवाइयां कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिस्ट और हर के साथ पेशेंट आके कहता था मुझे नींद नहीं आ रहा, वो दवाइयां अगर एक हफ्ते या 15 दिन महीने के लिए लिखी जाए वो सालों साल चलती है, और सालों साल चलते, तो क्या कार्डियोलॉजिस्ट समझते हैं कि भाई इसका कोई नुकसान हो सकता है या होगा, एडिक्शन है वो लाइफ लॉन्ग ही चलेगी उसकी नींद की दवाइयां, उस पर आप क्या कहेंगे?
0: कार्डियोलॉजिस्ट नींद की दवाइयां नहीं प्रिस्क्राइब करते,
1: नहीं करते,
0: क्योंकि हम लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मरीज को नींद क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारी बात क्या होता है, मरीज लेटा, उसका सांस फूला, उसको उठ के बैठना पड़ता है, वो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि वो हार्ट की मसल्स की वीकनेस की वजह से नहीं सो पा रहा है। सेकंड, किसी पेशेंट को स्नोरिंग है, वो सोते हुए स्नोर कर रहा है तो उसके जो गले में सांस लेने वाली नसें हैं वो सिकुड़ गई, तो उसके उठ के बैठना पड़ता है। तो ये सब हमारी कार्डियोलॉजिस्ट की कोशिश ये होती है कि हम नींद ना आने की वजह ढूंढें, अगर कोई ऑर्गेनिक वजह है तो वो ठीक की जाए, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट को सीपैप लगाया जाए, जिसको फेलियर में है उसको डायूरेटिक देके उनकी लंग्स को क्लीन किया जाए। ऐसे ही सोने का एक एनवायरमेंट होता है, अगर हम अपने रूम में टीवी लगा के रखेंगे एंड 10-11 बजे तक चाय कॉफी पियेंगे तो नींद नहीं आ पाएगी। तो सबसे जरूरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नींद की दवाइयां शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। आप सबसे आसपास देखिए कि किस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है।
1: आप क्या कहेंगे? जैसा कहते हैं लोग कई बार ना,
3: अल्कोहल की जब भी कोई मेडिकेशन अक्सर शुरू होती है तो सेडेटिव उसका इम्पैक्ट होता है वहां से शुरू, तो लोग अल्कोहल तो छोड़ते नहीं है, ठीक है, वो अलग लग जाती है उनको। और जो जो सेडेशन की जो हैबिट है, ये हैबिट फॉर्मिंग है, पहले एक गोली से असर होगा, फिर दो से वही सेम असर होगा, असर वही रहता है, ठीक है, फिर चार से असर होगा, फिर आप मानेंगे नहीं, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 60 गोली और 100 गोली दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 100 गोलियां कंज्यूम करते हैं और फिर भी आराम से जाग रहे हैं, उनको नींद की गोली से नींद नहीं आ रही है, उनको अपनी नॉर्मल होने के

0: ये नींद की गोली की सेवन की जरूरत है, इस तरह के ये सेडेटिव एक तरह से नशा बन गया है उनका।
1: डॉक्टर अनुपम जी, जैसा सजीला जी कह रही कि इतनी ज्यादा एडिक्शन है, और एडिक्शन में आज के टाइम में सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ जो सोशल फैक्टर है वो है अल्कोहल का। तो शराब का आप क्या समझते हैं? वो तो साइड इफेक्ट है, चले अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया, सिरोसिस ऑफ लिवर, लेकिन तो आप क्या समझते हैं कि अल्कोहल का क्या कुछ हार्ट पर ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो लगे कि भाई निश्चित रूप से अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए या पिए तो कितना?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा, अल्कोहल हर लिहाज से बुरा है, फैमिली के लिए, पेशेंट के लिए, फाइनेंसिस के लिए, उसके लिवर के लिए और हार्ट के लिए भी बहुत ज्यादा। अल्कोहल से कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं, हार्ट फेलियर कर जाता है, हम इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, जो बहुत कॉमन है, या तो लिवर फेल होगा या हार्ट फेल होगा। हार्ट की वजह से बहुत सारे विटामिन हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से वीकनेस और कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। हार्ट डिजीज का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है अल्कोहल से। और जैसे अभी आपने कहा, जब अल्कोहल पीने बैठते हैं तो बहुत कॉमन है कि साथ में स्मोकिंग होगा या साथ में कुछ और भी गलत चीज ली जाएगी, तो वो इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है।
0: मैम, आपसे हम एक चीज जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैम, कि लोग ये बोलते हैं, हमें आके बोलते हैं सब, कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं दो ड्रिंक सेफ है, ठीक है, ये दो ड्रिंक का क्या हिसाब है? क्योंकि दो ड्रिंक हमारी 60 ml की भी हो सकती है, 120 ml की भी हो सकती है।
3: चूंकि सामाजिक रूप से सदियों से शराब का सेवन चला आ रहा है, मेडिकल एसोसिएशन ने मैक्स लिमिट फिक्स कर दी कि भी अगर सेवन हो रहा है परिवार में, समाज में, तो इसे ज्यादा ना करें। इसका ये कतई नहीं हो सकता कि जहां शराब का सेवन है नहीं वहां शुरू किया जाए। तो हम उन समाजों की बात करें जहां अपर लिमिट फिक्स की गई कि अगर परिवार में है, तो अक्सर ये होता है पब्लिक हेल्थ में और यंग ग्रुप्स में कि भाई सेफ लिमिट है तो दो तक ले सकते हो।
2: कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं कहेगा कि अल्कोहल लीजिए वो सेफ है, ये आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए बोलना शुरू कर लिया है। जो भी हमारे पास आए हैं, जितना लिटरेचर है, अल्कोहल चाहे कम हो चाहे ज्यादा नुकसान करता है। हम बोलते हैं कि आप मैक्सिमम लेना चाहे हफ्ते में 2 पैक 30 ml पर आर अल्कोहल से ज्यादा बिल्कुल ना लें। ये बात बिल्कुल सच है। पहले था कि आपके आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ जाता है रेड वाइन से, वो आप खजूर खा लीजिए, आप साथ में अंगूर खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, उससे भी बढ़ जाएगा। रेगुलर वॉक कर लीजिए, उससे भी बढ़ जाएगा। आप उसके लिए एक और एडिक्शन को मत पालिए।
3: जो सेफ्टी की बात हो, एक तो डॉक्टर मैनी जैसे कह रही है वो अमेरिका में, यूरोप में कर दिया, दूसरा जो डॉक्टर अनुपम कह रही ना, वो गाइडलाइंस बनी थी खासकर ड्राइविंग के कॉन्टेक्स्ट में, कि वाहन चलाने की जो सेफ्टी है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इतने ज्यादा 1 या 2 घंटे में हो, जिससे आपका मोटर कोऑर्डिनेशन न बिगड़े। उस आधे घंटे की एक शाम की जो गाइडलाइन है उसको जीवन में लागू करने की गलती ना करें।
0: बिल्कुल
1: जी। तो अब हम इलिसिट ट्रैफिकिंग की बात करें तो ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा किसी पोर्ट पर पकड़ी जा रही है 80 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जा रही है, कहीं 100 करोड़ की पकड़ी जा रही है। अच्छा, कोकेन के बारे में मैं बताऊं, इवन खिलाड़ियों में भी देखा जाता है। तो आप क्या कहना चाहिए, कोकेन, कैनाबेस और ये इतने ज्यादा इसका प्रचलन क्यों होता जा रहा है? और उनमें भी आपसे जानना चाहूंगी, क्या कोकेन का भी साइड इफेक्ट है, क्या हार्ट रेट बढ़ाता है, क्या नुकसान करेगा? पहले निमेश जी,
3: बहुत ब्रीफली, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स जो है स्टेरॉइड से लेके और सारी, वो एक मुद्दा है
1: जी, वो अलग ही
3: उसका जो ढांचा है कंट्रोल का वो भी अलग रहेगा स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के तहत। खुले समाज में वहां पे जैसे आप कह रहे हो, जो इलीगल मार्केट है वो अपना प्रोडक्ट्स पुश करेंगी, तो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट का काम रहेगा किसी एक एरिया में थानेदार, दिल्ली बंबई शहर में कमिश्नर या किसी राज्य में डायरेक्टर जनरल ये तय करे कि जी मैं अपने एरिया में ड्रग्स बिल्कुल नहीं आने दूंगा। ये हुआ लॉ एनफोर्समेंट, कानून का अमलीकरण। एक एक गलतफहमी ये भी हो जाती है कि जी सरकार इसको परमिट कर दो फिर हम यो ओवर क्यों ना लें, तो ये गलतफहमी भी ना हो दे, और वो हो सबलीकरण से, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, युवाओं को शारीरिक मानसिक रूप से जो किक चाहिए, जो एक्साइटमेंट चाहिए, वो तो वैध है, वो जस्टिफाइड है, लेकिन उसके अरासायनिक तरीके ढूंढे जाए। स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग, म्यूजिक, जो भी हो, अलग अलग व्यक्ति के
0: सस्टेनेबल एडिक्शन।
3: बिल्कुल
1: डॉक्टर अनुपम जी, ये जो कोकेन है इसके बारे में बड़ा ज्यादा है, कहते हैं बहुत ज्यादा एडिक्टिंग है, साइड इफेक्ट और हार्ट की रेट बढ़ा देता है, हार्ट पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करता है, क्या कहना चाहेंगे?
2: हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हम कोकेन को परफेक्ट हार्ट अटैक ड्रग कहते हैं। कोकेन लेने का मतलब ये है कि हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, देयर वुड बी सिंपैथेटिक ड्राइव। अगर मोटे शब्दों में बोले तो ये ये ड्रग हमारे सिंपैथेटिक ड्राइव को बढ़ाते हैं, जो जो फाइट और फ्लाइट वाली

0: टेंडेंसी है, हार्ट रेट दौड़ने लगेगा, एरिथमियाज का रिस्क बढ़ जाता है और ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हार्ट पे जोर बहुत आ जाता है। लॉन्ग टाइम यूज करने से हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो इट वुड कम एज अ सरप्राइज, बट इट इज अ परफेक्ट हार्ट अटैक ड्रग। तो जो लोग भी ड्रग ये ले रहे हैं, मेरी उनसे या किसी को भी आप गाइड करना चाहें, तो बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। ये ना सोचें कि पूरी दुनिया लेती है। हार्ट अटैक इज अ वेरी रियलिटी विद दीज ड्रग्स। जो इनफेक्ट जो लोग जो ड्रग एडिक्ट्स या कोई भी एडिक्ट्स हैं जो एडमिट होते हैं, हमारे पास हमारे यहाँ से बहुत डाटा नहीं है, बट अमेरिका में हार्ट अटैक होने से फोर्थ टाइम इज द नीड फॉर एडमिशन। एक तो इन लोगों में साइकोसिस हो गया, थोड़ा हेल्यूसिनेशन हो गई, उसके बाद हार्ट अटैक इज द मोस्ट कॉमन अकरेंस, जिसकी वजह से ड्रग एडिक्ट्स को हॉस्पिटल में आने की जरूरत पड़ती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसके इल इफेक्ट उनको बताएं, समझाएं, ताकि वो समझ सके कि ये चीज नॉर्मल नहीं है, इसको लाइटली नहीं ले सकते।
1: तो कहने का मतलब है कि एडिक्शन नहीं होनी चाहिए,
2: लेना ही नहीं चाहिए।
1: एडिक्शन की बात अगर हम कहते तो सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, डी एडिक्शन क्लिनिक्स हैं, इवन कई अस्पतालों में, पुलिस स्टेशन में भी डी एडिक्शन क्लिनिक्स खुले हुए हैं। आप भी गंगाराम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडिक्शन सेंटर चलते हैं, टोबैको सेशन क्लिनिक चलते हैं, तो इनका क्या रोल है, इनका क्या महत्व है और क्या रोल है? क्या सरकार की जिम्मेदारी है? इस समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? एक बंदे की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं? पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या सिर्फ सारी जिम्मेदारी सरकार की है? किसकी जिम्मेदारी है?
3: देखिए, एक एक एक ढांचा तो स्वास्थ्य की समस्याओं का ये है, अगर हम गौर करें कि बदनसीबी से हम लोग स्वास्थ्य केंद्रों तक, अस्पताल तक तभी जाते हैं जब बीमारी हो जाए, तो यही यहाँ लागू होता है। व्यसन की जो बीमारी है, ये बड़ी कड़वी और बदनसीबी की सच्चाई है कि व्यक्ति विशेष या परिवार या मित्रगण अंतिम चरण में शायद व्यक्ति को इलाज के लिए ले जाने की कोशिश करते हैं, तभी नहीं सफल होते। अगर अगर लत आदत बनने लगे तभी से इलाज या कोई काउंसलिंग शुरू कराइए। अगर लत की बीमारी हो गई तो जरूर इलाज करवाइए, जल्दी से करवाइए। और अगर थोड़े समझाने से, थोड़ी जबरदस्ती से, थोड़ा कानून की मदद लेके, पुलिस की मदद लेके उस व्यक्ति को इलाज के लिए जाना पड़े तो वो करिए। ये तो हुआ ट्रीटमेंट। और दूसरा मुद्दा, शायद हम बात करें, शायद समझ ना रहे, सामाजिक रूप से लोग उस सीमा तक ना पहुंचे। प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे हो बड़े स्तर पे समाज में, लेकिन सेविंग लाइफ वाला वो रहेगा खास ट्रीटमेंट।
1: फैमिली का या समाज का क्या दायित्व है कि इस प्रॉब्लम से निकाला जा सके?
2: जैसे कि अभी सर ने बोला था, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ हुआ ट्रीटमेंट, दूसरा हुआ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तो बहुत लंबे स्तर पे होना चाहिए। स्कूल्स के अंदर जिस तरह से हम एनवायरमेंटल एजुकेशन एक सब्जेक्ट घुसाया है, उस तरह से एक हेल्दी लिविंग का कहीं स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन ड्रग्स ऑल्सो, इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, जो लोग वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एक तो वो प्रिवेंशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ट्रीटमेंट के लिए जैसे अभी ये डिस्कस हुआ, क्या होता है जो हमने देखा अपने पेशेंट्स के अंदर, कई बार जो बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चों से माँ बाप डरते हैं, आप समझिए ये डर नहीं होना चाहिए, बच्चों से डरते, बच्चा क्या करता है जो ड्रग लेता है वो ऐसे करके हाथ दीवार पे मार देगा, डरते हैं अरे कुछ करना ले, ठीक है सो करने दो, ऊंचा बोलेगा, चिल्लाएगा, चीजें तोड़ेगा, उस चीज से डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपका बच्चा कहीं आपको देखे कुछ करता हुआ, नशा करता हुआ, तो उसी समय पुट योर फुट डाउन, बोले कि आपको ये करना है, ट्रीटमेंट लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ पूरा ऑप्शन दीजिए उसको, और उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट सेंटर मिला के उसको पूरा छुड़वा दिया जाए।
1: तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि नशीले दवाएं, नशीले पदार्थ आपके जीवन में अंधकार फैला देंगे और आपके स्वास्थ्य, आपकी पढ़ाई, आपकी इनकम, आपकी रेपुटेशन और पारिवारिक रिश्तों पर निश्चित रूप से दुष्प्रभाव डालेंगे, और इनसे इन्फेक्शियस डिजीज जैसे एड्स, एचआईवी वगैरह तक भी लग सकते हैं, और आप धीरे धीरे उदासी का शिकार हो जाते हैं, जुर्म की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और क्राइम की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहें, परिवार की सपोर्ट एवं मेडिकल हेल्प या काउंसलिंग की निश्चित रूप से जरूरत है, सहायता लें उनकी। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए प्रोफेसर निमेश देसाई, डॉक्टर अनुपम गोयल और डॉक्टर सजीला मेनी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: थैंक यू भाई।
4: युवाओं में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे मनोचिकित्सक डॉक्टर निमेश देसाई, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गोयल और मनोचिकित्सक डॉक्टर सजीला मैनी। संचालन कर रहे थे डॉक्टर जवाहरलाल जैन।
5: दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट

0: इमरजेंसी मेडिसिन इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। आजकल के मौसम में आप देख रहे हैं कि काफी तेज धूप निकल रही है और काफी गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी कई जगहों पे आ रही है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना बचाव खुद करें, क्योंकि देखा गया है कि अगर लू लग जाती है किसी को और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो ऐसे में इसकी डेथ रेट काफी ज्यादा होती है, यानी इनफैक्ट 50-70% डेथ रेट इसमें होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें खुद अपना बचाव करना है कि 12 से 4 बजे तक सबसे ज्यादा गर्मी धूप पड़ती है, या तो ऐसे समय में नहीं निकलें या अपना जो भी काम है उससे पहले कर लें, बाद में कर लें, और अगर निकलना भी है तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ आप निकलें। जैसे कि एग्जाम्पल, आप कैप लेके निकल सकते हैं, छतरी लेके निकल सकते हैं, पानी तरल पदार्थ आप जरूर रखें बॉटल में, चाहे वो ठंडाई हो, ORS हो, या फिर आपने नींबू पानी का घोल बना लिया हो, या इस तरह की कोई भी जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसको आप लेके चलेंगे और बीच बीच में सेवन करते रहें उसको, ताकि आपको ये जो लू लगने की समस्या ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो कपड़े जो पहनते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे में, जो बिल्कुल टाइट फिटिंग सिंथेटिक ड्रेस जो होते हैं वो ना पहने, और कॉटन वाले जो हल्के रंग के, जो वाइट या उसके हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं, ताकि जो इवेपोरेशन है, जो बॉडी को कूलिंग होती है या बॉडी का जो हवा लगनी है वो भी लगते रहे। सिंथेटिक कपड़ों में हवा बॉडी को नहीं लगती है और इवेपोरेशन भी नहीं होता है, ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं लू लगने के। इसके साथ साथ अगर कोई समस्या आती है, आपको हीट क्रैम्स आते हैं या मूर्छित वाली ऐसी स्थिति, या वॉमिटिंग, नोजिया या उल्टियां आने ना, दस्त आ जाना, तो इससे डिहाइड्रेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। या फिर लक्षण भी अगर जैसे मान लो गफलियत में कोई जा रहा है या फिर दौरे पड़ रहे हैं उसको, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल में जाना अनिवार्य हो जाता है, ताकि इसका सही उपचार या IV फ्लूइड्स जिसको कहते हैं वो दिया जा सके। तो सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचना भी एक उपचार ही है, और क्योंकि ऐसी भयानक बीमारी से बचाव सिर्फ जानकारी से और समय पे सही निर्णय लिया जाना अति आवश्यक है। धन्यवाद।
1: अगर आप इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार हम तक प्रेषित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। मेल में आप कार्यक्रम से संबंधित फीडबैक, विचार, सुझाव, विषय और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका समाप्त करने की इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

जल दाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

नमस्कार, धरती आकाश के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में सुनिए ये वार्ता, महासागर संसाधनों से बढ़ती भारत की आत्मनिर्भरता। आलेख डॉक्टर नवनीत कुमार गुप्ता, विज्ञान लेखक और संचारक, और वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में कृषि, उद्योग, स्टार्टअप या डिजिटल तकनीक की तस्वीर उभर आती है। लेकिन एक ऐसा विशाल संसाधन है जो हमारी नजरों के सामने होते हुए भी कई बार हमारी सोच से बाहर रह जाता है। महासागर के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। सदियों तक हम इनके महत्व को नहीं समझ पाए या पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। भारत का समुद्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत अहम भूमिका निभाता है। भारत की समुद्री तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 9 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसके साथ ही भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र केवल पानी का विस्तार नहीं, बल्कि संभावनाओं का अथाह भंडार है, जिसमें जैविक, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की भरमार है। महासागर संसाधनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में, जैविक संसाधन, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन में बांटा जा सकता है। जैविक संसाधन की बात करें तो वो पोषण और रोजगार के आधार हैं। जैविक संसाधनों में मछलियाँ, झींगे, केकड़े, समुद्री शैवाल, सीवीड और अन्य समुद्री जीव शामिल हैं। भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। मत्स्य क्षेत्र देश की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन का सस्ता और सुलभ स्रोत है, जो विशेष रूप से तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मत्स्य पालन केवल भोजन का साधन नहीं, बल्कि रोजगार का भी एक बड़ा स्रोत भी है। देश में करोड़ों लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हाल के वर्षों में एक्वाकल्चर यानी कृत्रिम मत्स्य पालन को भी बढ़ावा मिला है, जिससे उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। समुद्री शैवाल यानी सीवीड की अधिक खेती एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, औषधियों, कॉस्मेटिक्स और जैव ईंधन के निर्माण में किया जाता है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ये आय का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनके सफल प्रयोग देखे जा रहे हैं। खनिज संसाधन भविष्य की औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहे हैं। असल में महासागर की गहराइयों में कई प्रकार के बहुमूल्य खनिज छुपे हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स हैं। ये समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले छोटे छोटे गोलाकार पत्थर होते हैं, जिनमें निकल, कोबाल्ट, तांबा और मैगनीज जैसी धातुएं पाई जाती हैं। ये धातुएं आधुनिक तकनीक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी निर्माण, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वर्तमान समय में भारत इन धातुओं के लिए आयात पर निर्भर है, लेकिन महासागर संसाधनों के दोहन से इस निर्भरता को कम किया जा सकता है। इसी दिशा में भारत सरकार ने गहरे समुद्र मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के अंतर्गत समुद्र की गहराइयों में मौजूद संसाधनों का अध्ययन, अन्वेषण और सतत उपयोग किया जा रहा है। इस मिशन का महत्वपूर्ण पहलू मानव युक्त सबमर्सिबल मत्स्य 6000 है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक 6000 मीटर की गहराई तक जाकर शोध कर सकेंगे। मत्स्य 6000 भारत के गहरे समुद्र मिशन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी घटक है, जिसका उद्देश्य समुद्र की गहराइयों में मानव युक्त अनुसंधान को संभव बनाना है। ये एक अत्याधुनिक मानव युक्त सबमर्सिबल है, जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये समुद्र की लगभग 6000 मीटर गहराई तक सुरक्षित रूप से जा सके। इतनी गहराई पर अत्यधिक दाब, कम तापमान और पूर्ण अंधकार जैसी चुनौतियां होती हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। मत्स्य 6000 में 3 वैज्ञानिकों की बैठने की क्षमता होगी, जो विशेष रूप से बनाए गए दाब यानी कि रोधी टाइटेनियम से बने गोलाकार केबिन में बैठकर समुद्र की गहराइयों का अध्ययन करेंगे। इस सबमर्सिबल में अत्याधुनिक सेंसर, कैमरे, रोबोटिक आर्म और सैंपल कलेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जिनकी मदद से वैज्ञानिक समुद्र तल से खनिज, जैविक नमूने और अन्य महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित कर सकेंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स जैसे बहुमूल्य खनिजों का अध्ययन करना है, जिनमें निकल, कोबाल्ट और तांबा जैसी धातुएं होती हैं। ये धातुएं आधुनिक उद्योगों, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मत्स्य 6000 समुद्री जैव विविध

0: पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु परिवर्तन से जुड़े पहलुओं के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये पहल भारत को गहरे समुद्र अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल वैज्ञानिक क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर समुद्री अनुसंधान और संसाधन प्रबंधन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकेगा। अब सुनिए एक और वार्ता, नवीकरणीय ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण और विकास। वार्ताकार हैं इंदु शेखर शुक्ल, विज्ञान शिक्षक।
1: नवीकरणीय ऊर्जा को रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है, अर्थात इसमें न्यूनतम या शून्य कार्बन और ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है, जबकि इसके विपरीत जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का काफी अधिक उत्सर्जन करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन वायुमंडल में सल्फर का भी उत्सर्जन करते हैं, जिसके प्रभाव से अम्लीय वर्षा होती है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को काफी कम करता है। नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा का स्थायी स्रोत माना जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि वे कभी भी समाप्त नहीं होते, या कह सकते हैं कि उनके खत्म होने की संभावना लगभग शून्य होती है। वहीं दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन तेल, गैस और कोयला जैसे ऊर्जा के स्रोतों को सीमित संसाधन माना जाता है, और इस बात की प्रबल संभावना होती है कि वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा अन्य परंपरागत विकल्पों की अपेक्षा एक बेहतर और सस्ता स्रोत है। जैसे जैसे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, नए और स्थायी रोजगारों का भी निर्माण होता जा रहा है। उदाहरण के लिए जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कई नए रोजगारों का सृजन हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिए जाने से दुनिया के कई देशों में इसका काफी बढ़ चढ़कर प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में काफी स्थिरता आई है। कई अध्ययनों में ये सामने आया है कि नवीकरणीय ऊर्जा और लोगों के स्वास्थ्य में सीधा संबंध होता है, और सरकारें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों पर जो भी निवेश करती हैं, उसका स्पष्ट प्रभाव आम लोगों के स्वास्थ्य स्तर में देखने को मिलता है। जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस कार्बन और सल्फर आदि मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण भी काफी महंगी प्रक्रिया हो गई, जिसके कारण उनकी कीमतों पर काफी असर पड़ा है। जीवाश्म ईंधन का परिवहन काफी जोखिमपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनके रिसाव से गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग में भी काफी ज्यादा योगदान देते हैं। आइए समझते हैं भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति। स्वच्छ पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। साथ ही ये भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो पावर से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना शामिल है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की कतार में शामिल हो जाएगा, यहाँ तक कि वो कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा। क्योंकि भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए विकसित भारत 2047 विजन का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से राष्ट्र को $30 trillion की विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। जानते हैं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एंड हाइड्रोजन के विकास के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहा जाता है जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से तैयार की जाती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन या जल विद्युत का उपयोग करके जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। भारत ने 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का वैश्विक लक्ष्य रखा है, जो भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइज करेगा। आइए ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमुख पहलुओं को समझते हैं। सौर पैनलों या पवन टर्बाइनों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। यह जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने में मदद करता है। सरकार साइट अर्थात स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन योजना के तहत घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दे रही है। आइए सुनते हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में पिछले दशक में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है, जो वर्ष 2014 में मात्र 3 गीगावाट से बढ़कर वर्ष

0: 2025 में लगभग 129 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट, रूफटॉप सोलर, हाइब्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड इंस्टॉलेशन शामिल हैं। सौर ऊर्जा अब भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है तथा भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। उच्च सौर विकिरण तथा भूमि की उपलब्धता के कारण पश्चिमी तथा उत्तरी राज्य सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु शीर्ष सौर उत्पादक राज्यों में शामिल हैं, जिनमें राजस्थान की सौर क्षमता अत्यधिक है तथा वहां निरंतर विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। रूफटॉप सोलर का प्रसार भी पीएम सूर्य घर योजना जैसी योजनाओं से प्रोत्साहित हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक लगभग 24 लाख परिवारों ने रूफटॉप सोलर पैनल लगवाए हैं। साथ ही पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंपों को ग्रिड कनेक्शन के साथ एकीकृत किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की बढ़ती चुनौती के बीच भारत जल निकायों तथा कृषि भूमि पर सौर पैनलों की स्थापना की दिशा में अग्रसर है। मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क जैसी परियोजनाएं इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। ये प्रणालियां जल वाष्पीकरण को कम करती हैं तथा जल के प्राकृतिक शीतलन प्रभाव के कारण पैनलों की दक्षता में वृद्धि करती हैं। इसके अलावा द्वि उपयोग भूमि नीति के तहत सौर पैनलों को इतनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है कि उनके नीचे फसल उत्पादन संभव रहे। इससे किसानों को खाद्य उत्पादन से समझौता किए बिना विद्युत विक्रय के रूप में आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होता है। आइए परिचित होते हैं पवन ऊर्जा के विकास क्षेत्र में। भारत में पवन ऊर्जा का तीव्र विस्तार हो रहा है, जो वर्ष 2025 के मध्य तक 51 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा एक प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा है। इसकी शुरुआत एक टरबाइन से होती है, जिसे हवा चलने पर घुमाया जाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। आधुनिक पवन टरबाइन हल्की हवाओं को भी बिजली में बदलने में अत्यंत कुशल है। बिजली उत्पादन के दौरान ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है। यदि हम ऊर्जा के लिए कम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं और उसकी जगह पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। पवन ऊर्जा का एक और लाभ ये है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ये हवा से प्राप्त होती है, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है और कभी समाप्त नहीं होता। पवन ऊर्जा का दोहन आर्थिक रूप से भी लाभदायक है, न केवल इसलिए कि इसका उत्पादन सस्ता है। ये एक स्थानीय संसाधन पर निर्भर करता है और स्थानीय रोजगार सृजित करता है। पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 30% की वृद्धि हुई है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा के लिए ग्रिड आधुनिकीकरण की आवश्यकता को बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं भूतापीय ऊर्जा को। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक ऊष्मा ऊर्जा स्रोत है, जिसका उपयोग खाना पकाने, नहाने, कमरे को गर्म करने, बिजली उत्पादन और अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले जीवाश्म ईंधनों के दहन से बिल्कुल अलग है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में तेजी से आकर्षक बन रही है। समझते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से देश का विकास। जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत कहते हैं। विद्युत शक्ति के जनन की विधियों में जल विद्युत बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का एक तिहाई भाग जल विद्युत के रूप में प्राप्त होता है। न केवल गिरते हुए जल में निहित ऊर्जा का उपयोग शक्ति जनन के लिए किया जा सकता है, वरन बहते हुए पानी में भी निहित गतिज ऊर्जा का उपयोग भी शक्ति जनन के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना होता है जहां बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जा सके और उसमें निहित शक्ति को विद्युत शक्ति के जनन के लिए जल को आवश्यकता अनुसार नलों अथवा खुली नहर के द्वारा बिजली घरों में प्रयुक्त किया जा सके। उपयुक्त स्थान की तलाश के लिए वर्षा तथा जमीन दोनों का अध्ययन करना होता है। बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जहां न्यूनतम मूल्य में बना बांध अधिकतम पानी जमा कर सके। बात करते हैं आधुनिक समय में बायो एनर्जी की। बायो एनर्जी ऑर्गेनिक पदार्थ से मिलती है, जिसे बायोमास कहा जाता है, जैसे लकड़ी, खेती के अवशेष, गोबर और ऑर्गेनिक कचरा। इसे पारंपरिक उपयोग में सीधे जलाना शामिल था, जबकि आधुनिक बायो एनर्जी प्रोसेस्ड बायोमास को और उन्नत रूपांतरण तकनीकों पर निर्भर करती है। आधुनिक रूपों में बायोगैस, बायोएथेनॉल, बायोडीजल और बायोमास पैलेट्स के फॉर्म में शामिल है, जो स्वच्छ और अधिक कुशल है। ये तकनीकें फसल के अवशेषों को खुले में जलाने और बिना मैनेज किए कचरे के निपटान को कम करने में भी मदद करती है। बायोमास का उपयोग नवीकरणीय बिजली, ऊष्मीय ऊर्जा या परिवहन ईंधन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
1: और इसी के साथ धरती आकाश का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 होने वाले हैं और आप सुनिए कार्यक्रम, पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी
1: बाहर शिरान धगाने अजीज मरनामे सुबह ये माँ दर साते नौ वासी दे गए ये हिन बराबर बा साते हफ्तों सी दे गए ये तेहरान इला साते याद दे हिन बराबर बा साते नौ तेहरान पश्चिमी शवाद इनक बख्शे फारसी ये बरूर मर्दी आकाशवाणी बरनामे सुबह ये खुदरा दर मौजे कूटा दर अदीफा ये 5102 किलो हर्ट्ज पश्चिमी कुनाद बरनामे सुबह इमरोदे माँ इबारत आजिया का हंगे हिंदी अखबार हिंदो जहां तराना फारसी तफसीर रूस गुफ्तार इमरूस बरनामे ये स्पॉटलाइट यक तराना फिल्मी तराना आइए यक फिल्म हिंदी अखबार जहां बरदारा खुलासा ये अखबार इंजा दहलीज शानदगा नजीर बरनामे सुगाहिरा बाय गांग हिंदी शुरू में क्यों नहीं

0: أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم برنامج سبوت لايت.
1: سبوت لايت.

0: के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service

0: आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला,
0: और मैं हूँ मनीषा बोस। तो स्वीकारें हमारा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारे साथ आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन। और आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं FM गोल्ड के साथ साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेग 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर भी। साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी आप हमें ट्यून कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, और मनीषा तुम्हें भी मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी अक्सर बड़ी उपलब्धियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से आसान बनती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे दिन को बेहतर बनाती हैं, तनाव को कम करती हैं और हमें अपने लक्ष्य के और भी करीब ले जाती हैं। कुछ नया पढ़ना, समय पर काम पूरा करना, सुबह जल्दी उठना, एक अच्छी आदत हमारा जीवन बदल सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज का हमारा जो सवाल है इसी बात से जुड़ा हुआ है दोस्तों, कि वो कौन सी आदत है जिससे आपकी जिंदगी को पहले से ज्यादा आसान, बेहतर और खुशहाल बना दिया है। अपने विचार, अपने अनुभव, कहानियां हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com पर। और ये भी हो सकता है, बताइए आप बोलिए।
1: और हो सकता है कि आपकी एक अच्छी आदत किसी और की जिंदगी को भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो इंतजार रहेगा आपके जवाब का। खत लिखिए, हम उसे जरूर पढ़ेंगे।

0: साथियों, ये गीत आप सुन रहे थे आए दिन बहार के फिल्म से, और गायिका थी आशा भोसले। और देखिए ये गीत जैसा था, खत लिख दे बाबू, और खत आ चुके हैं मंजुला जी के मुस्कान से पता चल रहा है।
1: बिल्कुल, आपके सांवरिया ने भेजा या नहीं भेजा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास मेल आ गए हैं। तो ये लिखा है अंशु माला ने दिल्ली से, बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि मेरी एक छोटी सी आदत सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना, देखने में बहुत ही साधारण सी बात लगती है लेकिन एक छोटी सी आदत पूरे दिन का मूड और ऊर्जा तय करती है। दिन की शुरुआत एक व्यवस्थित काम से होती है तो मन को हल्का और सकारात्मक भी रहता है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है। और अंत में उन्होंने एक छोटी सी बात और लिखी है कि ये आदत मुझे मेरी मम्मी से मिला है।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है, एक विरासत में ऐसी आदत को अपने साथ लेकर चलना बहुत ही बड़ी खूबी है। और अगला जो संदेश है वो भी हमारे एक बहुत ही प्यारे श्रोता साथी का है, और उनका नाम है नवीन भाटिया जी, और ये हैं मोती नगर नई दिल्ली से, जिन्होंने लिखा है, जब से मैं एफएम गोल्ड पर जुड़ा हूँ तब से मेरी थिंकिंग पॉजिटिव हो गई है और जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। यानी कि उनकी ये आदत जो है हमारे एफएम रेडियो से सुनने की, जुड़ने की, ये आदत उनको सबसे बेहतरीन बनाती है।
1: बहुत ही खूबसूरत। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, और एक खूबसूरत विचार लगता है मनीषा कुछ बताने वाली है।
0: बिल्कुल, मेरे पास है दोस्तों, क्योंकि आज की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हमने बताया कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, कौन सी ऐसी आदत है जो आपकी जिंदगी में आपको आपकी खूबी से मिलाती है। उसी तरह दिन की शुरुआत अगर हम किसी अच्छे विचार के साथ करते हैं तो दिन भी बहुत खुशनुमा हो जाता है। जरा सोचे, एक बच्चा जो होता है जब वो अपने आज के आनंद को जीते हुए क्या कभी कल के बारे में सोचता है, कोई योजना बनाता है? सोचिएगा, किसी छोटे बच्चे को याद करके आप सोचिए कि जब वो किसी पानी से भरे तालाब को या पोखर को पार करता है, या कभी उस पोखर को जब वो देखता है पार करता है तो उसे समुद्र की तरह समझता है जब पार करता है। मतलब उसका जो ख्याल है अपने जीत के जश्न को मनाने का होता है, और वो इस तरह अपनी जीत को पाता जाता है, महसूस करता जाता है।
1: और याद कीजिए अपने बचपन के सभी उस क्षण को जो भरपूर आपने जिया था, पूरी तरह से वो उस पल में ही मिल जाया करता था, बिना किसी पूर्वाभास के, फिक्र और चिंता के बगैर बीते हुए कल के बोझ या आने वाले कल की व्यग्रता के बगैर, क्योंकि वो वर्तमान के अलावा कहीं और होना जानता ही नहीं था। और हाँ, वो कला बच्चे की मासूमियत नहीं बल्कि उसकी सिद्धि थी जो हर पल को जीना जानती थी।

0: बिल्कुल कहा, सही कहा आपने। और देखिए, बचपन में कुछ भी स्वाभाविक रूप से जादू ही नहीं होता दोस्तों। दरअसल बचपन का जादू तो ध्यान की जो गुणवत्ता होती है उसमें छिपा होता है, यानी वो जब जहाँ होता है तब सिर्फ वहीं होता है ना। फिर बड़े होने के साथ हम अपने आप को, स्वयं को विभाजित करना सीख लेते हैं। हमारा एक हिस्सा कहीं और बैठा होता है और हम दूसरा हिस्सा कहीं और होता है। हम तन से कहीं और होते हैं, मन से कहीं और होते हैं। तो यही बात जो होती है वो हमारे एहसास को बदलती जाती है।
1: और यकीन मानिए, एहसास की परतों को हटाते ही बचपन का जादू ठीक वहीं मिलेगा जहां हमने छोड़ा था उसे। और अभी इसलिए सोचिएगा जरूर कि आखिरी बार कब वास्तव में आप वहां गए थे और आप कहां हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त को फिल्म थी सुजाता।
1: और दोस्तों आज का दिन उद्यमिता की दुनिया के लिए बहुत खास है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे। और छोटे और मध्यम उद्योगों के वैश्विक अर्थव्यवस्था, नवाचार और रोजगार सृजन में योगदान को सम्मान देने का यह दिन 2017 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाने की शुरुआत की थी।
0: और दोस्तों उसी तरह 27 जून का वो दिन है जो हमें भारतीय इतिहास के शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की याद दिलाता है। अपनी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और समाजवेशी शासन के लिए प्रसिद्ध पंजाब के इस शेर को हम उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हैं।
1: और दोस्तों आज का दिन इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी, जिन्हें दो दशकों तक दौड़ के मैदान पर उनकी तेज गति के कारण पायोली एक्सप्रेस, उदन परी और गोल्डन गर्ल के नाम से पुकारा गया, जी हाँ आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के पयोल्ली गांव में जन्मी पिलावुल्ला कंडी थेक्के परमपिल उषा यानी एथलीट पीटी उषा, उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।
0: और आज 27 जून की वो तारीख है दोस्तों जब हिंदी फिल्म जगत के महान संगीतकार आर डी बर्मन

0: राहुल देव बर्मन जिन्हें प्यार से मंचमता भी कहते थे, उनकी भी जयंती है। भारतीय फिल्म संगीत को एक नई पहचान देने वाले रॉक, जैज और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के बेहतरीन मिश्रण से संगीत जगत को सजाने वाले इस महान संगीतकार को आज हम नमन करते हैं।
1: क्या कहा?

0: दोस्तों, ये गीत आप सुन रहे थे अभी फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आपको बता दें, आप हमारे साथ जुड़े हैं आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। और हमेशा की तरह आज भी हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो है, आपकी कौन सी आदत में ऐसी है जो आपको सफल बनाती है, जिसके बारे में आपको हमें संदेश भेजना है fmgolji@gmail.com पर।
1: और मनीषा, इसी बीच एक मेल हमारे पास आ गया है रश्मि का।

0: गुरुग्राम से वो लिखती हैं कि मेरी छोटी सी आदत है कि ऑनलाइन कुछ खरीदने के पहले 10 बार कार्ट में डालना और फिर बिना खरीदे बंद कर देना और फिर दावा करना कि वाकई क्या ये जरूरी है, फिर ये तय करना कि क्या ये जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें कार्ट में डालते हैं, उसमें कुछ चीजें जरूरी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, वो बहुत प्यारा सा संदेश है, ये है राजेश्वर राव जी का। और इन्होंने कहा है कि इनकी एक आदत है कि ये जब भी अपनी कार में ड्राइविंग के दौरान बैठते हैं तो वो अपनी ग्लास रखते हैं। तो हमें अपने इस चैनल के माध्यम से ये सबको जरूर बताना चाहिए कि हमें प्लास्टिक जो ग्लास होती है उसको यूज नहीं करना चाहिए, हमें प्लास्टिक के यूज से, उसके प्रयोग से बचना चाहिए ताकि हम अपने एनवायरमेंट को शुद्ध रख सकें, उसे साफ रख सकें। बहुत सुंदर संदेश आपका, निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं तक भी पहुंचा होगा राजेश्वर जी।
0: और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यात्रा, ये किसको पसंद नहीं होता। यात्रा केवल नए स्थान देखने का माध्यम नहीं है बल्कि नए अनुभवों, नई संस्कृतियों, नए विचारों से जुड़ने का अवसर भी है। और जब यात्रा का आनंद किताबों से जुड़ जाए तो सफर और भी यादगार बन जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी हिंदी यात्रा वृत्तांत पुस्तकों के बारे में बताएंगे जिन्हें हर यात्रा प्रेमी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिंदी यात्रा जो है साहित्य की, उसमें महापंडित कहे जाने वाले राहुल सांस्कृत्यान की पुस्तक मेरे लद्दाख यात्रा, इसके बारे में ये पुस्तक जो है वो भौगोलिक सुंदरता, वहाँ के लोगों के जीवन और बौद्ध संस्कृति को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है उनके इस लेखन में। राहुल सांस्कृत्यान केवल स्थानों का वर्णन नहीं करते थे दोस्तों, बल्कि वो पाठक को उस वातावरण का हिस्सा बना देते थे। ये पुस्तक लद्दाख को अगर आप समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो उसकी सुंदर जो प्रस्तुति है उसका एक माध्यम है।
0: और अब बात करते हैं उमेश पंत की पुस्तक दूर दुर्गम दुरुस्त की। यह पुस्तक उन रास्तों की कहानी है जहां हर कोई नहीं पहुंचता। लेखक ने दूरस्थ और कम चर्चित स्थानों, जिसको कि आजकल हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अनरियल वाली जगहों की यात्राओं को संवेदनशीलता और रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। पुस्तक पढ़ते हुए महसूस होता है कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है बल्कि रास्तों को जीने का अनुभव है। और अगली पुस्तक है कच्छ कथा, के लेखक है अभिषेक श्रीवास्तव। चलो मनीषा तुम बता दो।
1: बिल्कुल, इसका नाम आते ही ना मंजुला आंखों के सामने सफेद जो रंग होता है, लोक संस्कृति, रंग बिरंगे उत्सवों की छवि उभर आती है। ये पुस्तक कच्छ की मिट्टी, वहाँ के लोगों, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का ऐसा परिचय कराती है दोस्तों कि पाठक स्वयं को उस धरती पर महसूस करने लगता है। ये केवल यात्रा वृत्तांत नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक दस्तावेज भी है।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही। और अब बात करते हैं प्रसिद्ध लेखक और खाद्य इतिहासकार पुष्पेंद्र पंत की पुस्तक नैनीताला नैनीताला की। इस पुस्तक में नैनीताल और उसके आसपास के पहाड़ी जीवन को बेहद आत्मीयता से चित्रित किया गया है। लेखक केवल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन नहीं करते बल्कि वहां की संस्कृति, खान पान, लोगों और स्थानीय जीवन के विविध रंगों को भी सामने लाते हैं। यह पुस्तक पाठक को पहाड़ों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करती है। और अक्सर कहा जाता है कुछ यात्राएं पैरों से पूरी होती हैं और कुछ किताबों से।
1: वाह, क्या बात कही मंजुला जी। और कुछ किताबों से पूरी होती है, ये आपने बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजिटल दुनिया है, इस डिजिटल दुनिया में किताबों से जुड़े रहने से हम अपने मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को और भी बेहतर कर सकते हैं। ये पुस्तकें केवल स्थानों की जानकारी नहीं देती हैं बल्कि उन जगहों की आत्मा से भी हमें परिचित कराती हैं। यदि आप यात्रा के शौकीन हैं दोस्तों, या भविष्य में किसी सफर की योजना बना रहे हैं, तो इन हिंदी पुस्तकों को अपनी पढ़ने की सूची में जरूर शामिल कीजिएगा।

0: अभी हम सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी को फिल्म 12 o'clock से।
1: और साथियों, घर आंगन कार्यक्रम में आज की प्रश्नोत्तरी फिर से आपको बता देती हूँ। अगर आपने अपना रेडियो अभी ट्यून किया है तो सुनिए वो प्रश्न है आज का कि आपकी कौन सी आदत है जिसने आपको सफल बनाया है। और पहला संदेश मेरे पास है जो है दीशिता सोइन का, जिन्होंने लिखा है कि हर दिन पॉजिटिव थॉट्स के साथ दिन की शुरुआत करना और कंसिस्टेंट रहना और सकारात्मक रहना मुझे स्ट्रेंथ देता है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही।
0: और अनन्या श्रेष्ठा का भी एक मेल आ चुका है जो लिखती हैं कि मुझे जर्नलिंग करने का बहुत शौक है और बहुत ही फायदा हुआ इससे, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हुई है, फोकस बढ़ गया है और यादों को जो संभाल कर रखने का एक अच्छा तरीका भी मिल गया है। बहुत ही खूबसूरत,
1: बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देते रहते हैं, तो मंजुला जी के पिटारे में एक और जानकारी है, मैं चाहती हूँ आप बताओ, शुरुआत करो।
0: तो अब हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की पारंपरिक थाली और उसके महत्व के बारे में। तो मनीषा बिहार में जो ये है आर्द्रा नक्षत्र, जिसको साधारण भाषा में कई लोग आर्द्रा नक्षत्र भी बोलते हैं, उसकी विशेष सांस्कृतिक और कृषि महत्व है। पीढ़ियों से यहाँ इस नक्षत्र के दिन खीर पूरी, जो मौसमी सब्जी, रसीले आम और जामुन खाने की परंपरा चली आ रही है। और ये केवल एक भोजन नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और परिवारों को जोड़ने वाली एक सुंदर विरासत है।
1: बहुत खूबसूरत बात आपने बताई, मुझे भी इसकी जानकारी है। और श्रोताओं, इसमें दाल भरी पूड़ी जो होती है वो ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वहीं जो मौसमी सब्जियां होती हैं वो प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश देती हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। वैसे ही खीर जो है वो शुभ अवसरों का अभिन्न हिस्सा मानी गई है। और जो आम है, फलों का राजा, ग्रीष्म ऋतु की मिठास और प्रकृति के उपहार का प्रतीक है। और इसीलिए इस थाली में ये सब कुछ सजा होता है।
0: और मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम की मिठास, खीर पूरी का स्वाद, यही तो है बिहार की पहचान। और इस नक्षत्र के आगमन पर भगवान इंद्रदेव का स्मरण किया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। मान्यता है कि इंद्रदेव की कृपा से अच्छी वर्षा होती है जिससे खेतों में हरियाली और किसानों के जीवन में समृद्धि आती है।
1: हालांकि ये परंपरा बिहार की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, लेकिन ऋतु परिवर्तन का स्वागत, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और नई कृषि जो है उसके लिए ऋतु का आगमन उत्सव के समान होता है। और ये बिहार तक सीमित नहीं रहता, भारत के कई राज्यों में अलग अलग नामों से ये परंपरा वर्षा ऋतु और कृषि चक्र के आरंभ का स्वागत करती है।
0: बिल्कुल, यही भारत की खूबसूरती है। परंपराएं भले अलग हो लेकिन प्रकृति का सम्मान, अन्नदाता के प्रति आदर और परिवार के साथ उत्सव मनाने की भावना पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। तो आइए इस आर्द्रा नक्षत्र पर हम सब अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोएं, किसानों के परिश्रम का सम्मान

0: पराया धन इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा और किशोर की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को।
1: और एक और मेल हमारे पास आ गया है, रमीशा जैन है दिल्ली से। वो लिखती हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी आदत जिसने मेरे जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों को परिवर्तित किया, तो मेरा उत्तर होगा कि वो आध्यात्मिक साधना और सनातन जीवन पद्धति को पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनाना। यही वो परिवर्तन है जिसने मुझे भीतर तक दृढ़ बनाया, मुझे संभाला और प्रत्येक कठिन क्षण को मेरे पथ को आलोकित किया।
0: बहुत सुंदर विचार आपने लिखा हुआ है। और मेरे पास हमारी एक नियमित श्रोता साथी हैं, उनका भी संदेश आ चुका है। ये हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और बहुत खूबसूरत सी बात उन्होंने लिखी है कि बिजली, पानी, पेट्रोलियम ऐसे जितने भी उत्पाद हैं और गैस का उपयोग बहुत सोच समझकर हम करते हैं, अन्न को भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, और यही आदतें हमें हमारे जीवन में सफल बना रही हैं।
1: और एक और मेल है गौरी शंकर जी का कि आप दोनों बेटियों को राम राम, बचपन की बातें अच्छी बुरी आज भी याद आती है। सुबह जब हम योग करते हैं तो विचारों में बदलाव जरूर आता है, विचार अच्छे ही आएंगे और काम करेंगे तो वो सही ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेल करने के लिए।
0: और मंजुला जी, एक बहुत सुंदर सा संदेश है उत्तर प्रदेश भटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता का। ये लिखते हैं कि हर दिन सुबह से रेडियो सुनते हुए अपनी दिनचर्या को हम पूरा करते हैं और गीत संगीत सुनकर सुकून पाते हैं। जी बहुत शुक्रिया, और देखिए आपके सुकून को हम बरकरार रखें, यही हमारी कोशिश रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और चलो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे अजरक प्रिंट की, एक ऐसी हस्तकला की जो अपनी सुंदरता, जटिलता और प्राचीन इतिहास के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अजरक की परंपरा इतनी पुरानी है, इसकी जड़ें उन सभ्यताओं तक पहुंचती है जो मिस्र के पिरामिडों के समय में अस्तित्व में थी। कुछ इतिहास का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसी तरह की छपाई और ज्यामितीय डिजाइनों का उपयोग किया जाता था।
0: हाँ, मुझे इसके बारे में एक जानकारी ये भी है मंजुला जी कि जो अजरक शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द अजरक से जुड़ा माना गया है, और इसका अर्थ होता है दोस्तों नीला रंग। यही गहरा नीला रंग अजरक की सबसे बड़ी पहचान है, और भारत में ये कला मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ और राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में विकसित हुई। खत्री समुदाय के लोगों को आप जानते होंगे, उनके जो कारीगर हैं वो पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। उनके लिए अजरक सिर्फ व्यवसाय नहीं है बल्कि विरासत और पहचान का प्रतीक भी है।
1: और अजरक प्रिंट की सबसे खास बात यह है कि इसकी निर्माण प्रक्रिया, एक कपड़े को तैयार करने में कई दिन लग जाते हैं, इसमें 14 से 16 चरणों से गुजरना पड़ता है। प्राकृतिक रंगों, लकड़ी के ब्लॉकों और पारंपरिक तकनीकों की मदद से हर डिजाइन को बड़ी ही सावधानी से बनाया जाता है।
0: और नीले रंग के इंडिगो, लाल रंग के लिए मदार की जड़, पीले रंग के लिए अनार के छिलके, काले रंग के लिए लोहे के घोल का उपयोग किया जाता है। यही प्राकृतिक रंग अजरक को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाते हैं दोस्तों। अजरक की डिजाइनों में तारे, वृत्त, जालियां और अन्य ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देती हैं। ये केवल सजावट नहीं है बल्कि प्रकृति, संतुलन और ब्रह्मांड के प्रति मानव के जुड़ाव को भी दिखलाती हैं।
1: बहुत ही खूबसूरती से तुमने बताया। और समय के साथ अजरक ने पारंपरिक परिधानों से निकलकर वैश्विक फैशन के जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज साड़ी, दुपट्टे, कुर्ते, जैकेट और आधुनिक परिधानों में भी अजरक की झलक देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अजरक केवल प्रिंट नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही

कला संस्कृति और शिल्पकारों की मेहनत की जीवित कहानी है और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी परंपरा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि आज भी हमारे जीवन को रंगों से भर रही है।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म धर्मकांटा से।
1: और दोस्तों अब एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में हम सभी का जागरूक होना जरूरी है। बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो घरों की छत से ही रोशन कर रही है हमारे भविष्य को, वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
0: और ऊर्जा की खपत को देखते हुए सरकार ने 2024 से शुरू इस योजना का लक्ष्य रखा है 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का, ताकि लोग खुद अपनी बिजली बना सकें और स्वावलंबन से जुड़ सकें।
1: क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाली इस योजना से कार्बन उत्सर्जन को रोकने और देश को टिकाऊ विकास की ओर ले जाने का प्रयास है। और इससे जुड़ने वाले लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी योजना है, यानी कम बिल और ज्यादा बचत।
0: और अगर आप इस स्कीम से जुड़ते हैं तो इसके लिए 78,000 तक की सब्सिडी भी मिलेगी और छत पर सोलर पैनल लगाना भी आसान हो जाएगा। इसका लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक पीएम सूर्य पर पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, फिर छत पर सोलर पैनल लगवाएं, फिजिबिलिटी जांच पूरी करें और सब्सिडी प्राप्त करें।
1: आवेदन के लिए आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक हो और नवीनतम बिजली का बिल, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक या रद्द की

0: अभी आप सुन रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म है दिल ने फिर याद किया। और इसी के साथ हम अपने आज के इस खूबसूरत सफर को देते हैं यहीं विराम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दीजिए मंजुला और
1: मनीषा को इजाजत, लेकिन हम फिर मिलने के वादे के साथ आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका

0: लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. During the visit, Prime Minister Modi will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Meanwhile, Seychelles has backed India's bid for a permanent seat on the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Ford said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power.
3: Prime Minister Modi and what he's done.

मैं बता दूं, जी हाँ, आप भी हमें अपने दिल की बात बता सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से कैसा लगता है। हमारे इस ईमेल एड्रेस पर आप अपना आपके मन में जो बात है वो लिख सकते हैं, आप अपने कमेंट लिख सकते हैं iprradiodelhi@gmail.com। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म दाग की। अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो ये कहानी है सुनील की, जो प्रेम करता है सोनिया से। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उसे मृत समझ लिया जाता है। हालात के दबाव में वो दूसरी शादी भी कर लेता है, लेकिन बाद में जब उसका पहला प्यार उसके जीवन में लौटता है, तो उसके सामने रिश्तों, जिम्मेदारियों और भावनाओं का कठिन संघर्ष खड़ा हो जाता है। यही द्वंद्व इस फिल्म को भावनात्मक गहराई प्रदान करता है। और अगर हम इस फिल्म के किसी रोचक तथ्य की बात करें, तो ये फिल्म उस समय के लिए एक बहुत ही साहसिक विषय पर आधारित थी। वो इसलिए क्योंकि इसमें दो विवाह जैसी संवेदनशील सामाजिक विषय को अत्यंत संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया था। हालांकि उस समय पर दो विवाह होना, दो शादियां होना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, और इसको बड़े पर्दे पर दिखाना एक सच में बहुत ही साहसिक काम था। दर्शकों ने इसकी कहानी और अभिनय को खूब सराहा। तो इस फिल्म की हम बात करते रहेंगे, सुन लेते हैं इस फिल्म से जुड़ा एक और शानदार गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपके साथ सुनिधि गुप्ता। तो अभी आपने सुना फिल्म दाग का ये सदाबहार गीत, हम और तुम और हम, किशोर कुमार और लता जी की आवाज में। इस गीत के शब्द लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, जिसे इस संगीत इसका संगीत दिया था इस फिल्म का जो गीत लिखे थे वो लिखे थे साहिर लुधियानवी जी ने, जिसने इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म दाग के लिए राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट एक्टर अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। ये उनके शानदार अभिनय की एक और बड़ी उपलब्धि थी। तो इस फिल्म के बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? <So easy. laughs>
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म दाग की। यश चोपड़ा की फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता श्रोताओं ये रही है कि वो रिश्तों की भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारते थे। दाग भी एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें प्रेम के साथ साथ जिम्मेदारी और त्याग को समान महत्व दिया गया है। इस फिल्म के बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस फिल्म के गीत इतने शानदार हैं कि श्रोताओं ने ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है हमें मेल पर कि हम इस फिल्म के गीत भी बराबर सुनाते रहें। तो चलिए सुन लेते हैं एक और गीत जो कि लता जी ने गाया है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और आप अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही फिल्म से। मैं हूं आपके साथ सुनिधि गुप्ता। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म दाग की। ये फिल्म उस दौर की सफल फिल्मों में शामिल रही और इसकी सफलता ने यश चोपड़ा के स्वतंत्र निर्माता के रूप में करियर को एक नई उड़ान दी। इस फिल्म के गीतों की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर गीत कहानी को आगे बढ़ाता है। गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि पात्रों की भावनाओं को भी अभिव्यक्त करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये इसके अगर आप सिर्फ गीत भी सुनेंगे तो आपको कहानी का अंदाजा भी हो जाएगा। फिल्म के संवाद और गीत इतने ज्यादा प्रभावशाली थे कि आज भी रेडियो और संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं और लोग हमें बार बार रिक्वेस्ट करते हैं इस फिल्म के गीत को सुनने के लिए। हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं, जो रेडियो प्रेमी हैं और रेडियो पर इस गीत को, इस फिल्म के गीतों को और साथ साथ कई सारे फिल्म के गीतों को सुनना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने मन की बात भी हमें बताते रहिए कि आप और कौन से गीत सुनना चाहते हैं और कार्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो आइए इस फिल्म का एक और सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।

श्रोताओं, हमें लगातार इस कार्यक्रम में लोगों के मेल प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें से सोनीपत शांतिनगर से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी इस फिल्म के गीतों को सुनना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया भी इस फिल्म के गीतों को इस फिल्म के गीतों का आनंद उठा रहे हैं। इसके साथ साथ स्वर्ण सिंह ने भी मेल किया है और इनके परिवारी जनों का नाम शामिल करने के लिए इन्होंने कहा है, दलजीत सिंह, राजीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, इन्हें हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, इन्होंने सराहा है और हम भी आपके मेल का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आनंद उठाते रहिए हमारे कार्यक्रमों का। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म दाग की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए ऐसा संगीत तैयार किया था जो आज भी सदाबहार गीतों की सूची में शामिल किया जाता है। दोस्तों, दाग के संगीत में भारतीय शास्त्रीयता और मधुरता दोनों ही देखने को मिलती हैं। तो इसके साथ साथ चलिए हम इसकी बातें करते रहेंगे, सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दाग के बारे में कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं थी आपके साथ सुनिधि गुप्ता। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम और जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।

0: उनकी आखिरी रसूम कल चेन्नई में अदा की जाएगी। कोलकाता के तारातला इमारत की गिरने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। बचाव और इमदादी काम जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि शुमाली बहरे अरब के मजीद कुछ इलाकों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बकिया इलाकों, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाज इलाकों और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरक के कुछ इलाकों में आज शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। फुटबॉल के फीफा आलमी कप में आज मिस्र और ईरान का मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया, जिसके नतीजे में मिस्र नॉकआउट मरहले में पहुंच गया और वो पहली बार नॉकआउट में पहुंचा है। आज सुबह मैक्सिको के ग्वाडालाखारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरफहरिस्त हो गया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां। एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशभाषा समुद्री पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी करार दिया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अगले कलीदी साथियों में सबसे ज्यादा करीबी समझता है, जो मुश्तरक अकदार और मफादात रखते हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह ने गुजरात के 14 बड़े शहरों में इमदाद बाहिमी पर मबनी भारत टैक्सी सर्विस का आगाज किया है। तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का चेन्नई में 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। और फुटबॉल के फीफा आलमी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit, describes Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service, Bharat Taxi, in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will arrive Seychelles in a short while on a 3-day state visit. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Earlier in his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. More from our correspondent.
2: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the

0: Pradesh and Uttarakhand during next 3 to 4 days. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezia was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit. Described Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. US Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों

0: देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
6: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy.

0: Economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे. सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं. इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी. पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे. मामले की जांच जारी है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है. इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी. वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी. महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी. परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी. मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई. कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है. राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है. विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है. आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है. तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे. उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया. राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया. एक रिपोर्ट.
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है. उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है. ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है. इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है. शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं. इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी. नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक

0: पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। हमारा अगला कार्यक्रम है एक ही कलाकार। तो आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के प्रिय श्रोताओं का मैं सुनिधि गुप्ता हार्दिक स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार में। तो आज का ये कार्यक्रम समर्पित है हिंदी फिल्म के संगीत के उस जादूगर को जिसने अपनी धुनों से संगीत की दुनिया को एक नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार राहुल देव बर्मन की, जिन्हें दुनिया प्यार से पंचनदा के नाम से जानती है। दोस्तों, 27 जून यानी आज ही के दिन सन 1939 को जन्मे पंचमदा महान संगीतकार सचिन देव बर्मन के पुत्र थे। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। कहा जाता है कि बचपन में वो जब रोते थे तो उनकी आवाज प यानी 5वें सुर जैसी लगती थी। इसी कारण अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें प्यार से पंचम कहना शुरू कर दिया और यही नाम हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, पश्चिमी गीत, जैज, लैटिन और रॉकिन, इन सभी शैलियों का ऐसा अनूठा संगम उन्होंने अपने संगीत में किया कि हर धुन आज भी नई जैसी लगती है। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके एक सदाबहार गीत के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी सुनिधि गुप्ता। तो अभी आपने सुना पंचम दा का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत होगा तुमसे प्यारा कौन। श्रोताओं, आरडी बर्मन कई गीतों में रोजमर्रा की चीजों से ध्वनियां तैयार करते थे, जैसे कि कभी कांच की बोतल से, कभी कांच के ग्लास से, कभी कंघी से, कभी बोतल से, तो कभी सांसों की आवाज का प्रयोग करके वो बिल्कुल नया संगीत रच देते थे। जी हाँ, उस दौर में ये प्रयोग बहुत ही अनोखा माना जाता था। तो आरडी बर्मन की बातें करते रहेंगे, लेकिन उनके इतने सारे फेमस सॉन्ग्स हैं तो हमारे श्रोतागण भी बहुत सारे गाने सुनना चाहते हैं और हमें रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं उनका एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आपको बता दें कि पंचम दा केवल एक संगीतकार ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन माउथ ऑर्गन वादक और गायक भी थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज भी दी थी? महबूबा महबूबा, दम मारो दम के हिस्से और कई अन्य गीतों में उनकी विशिष्ट आवाज ने अलग ही रंग भर दिया था। उनका मानना था कि संगीत सीमाओं में नहीं बंधता, इसलिए वो हर नई धुन के साथ कुछ न कुछ नया करने का प्रयास जारी रखते थे। तो आइए सुन लेते हैं उनका एक और गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। तो दोस्तों आरडी बर्मन ने लगभग 3 दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। वो किसी भी गीत की रिकॉर्डिंग से पहले घंटों तक वाद्य यंत्रों के संयोजन पर काम करते थे, यानी कि उन्हें जोड़ तोड़ उनकी चलती रहती थी। उनके ऑर्केस्ट्रा में भारतीय और विदेशी वाद्य यंत्रों का अनूठा मेल देखने को मिलता था। इसी कारण उनके गीत आज भी नए संगीतकारों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। चलिए ये बातें चलती रहेंगी और हम पंचम दा के बारे में जानते रहेंगे। सुनते हैं उनसे जुड़ा एक और यादगार गीत।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कलाकार आरडी बर्मन की, यानी कि राहुल देव बर्मन की, हमारे पंचमदा की जीवन यात्रा और उनके संगीत और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को हमने इस कार्यक्रम में जाना। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि कल्पना, मेहनत और जुनून साथ हों तो संगीत समय की सीमाओं को पार करके अमर हो जाता है। यही कारण है कि आज भी उनकी धुनें हर पीढ़ी के दिलों में बसती हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने उनके बारे में, उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जाना, उनसे जुड़ी बातें की, उनके जुड़े गीत सुने, और अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ। अभी हमें समय इशारे कर रहा है कि आज का कार्यक्रम हमें समापन करना होगा, और चलते चलते हम छोड़ जाते हैं आपको उनसे ही जुड़े एक और गीत के साथ। सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ। मुझे यानी अपनी दोस्त सुनिधि को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए हमारा आकाशवाणी दिल्ली का इंप्रेस चैनल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रिज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन। अरे वंदना बहना, आज चो मुरझाई सी लग रही है, कछु खाए के ना आया इनका?
1: अरे सखी, गर्मी के मारे ने थकान जी है जाए और कछु बात ना है। मैं तो कलेऊ में दूध को दरिया उखाए के आई हूँ।
0: बड़ो ही पौष्टिक कलेऊ करियो है आज।
1: और का, तुम बताओ तुमने कहा करो कलेऊ?
0: अरे बहना, मैं तो हमारे कृष्ण कन्हैया की पसंद को कलेऊ करके आई हूँ, नेक बताओ तो कहा।
1: सखी, माखन रोटी या छाछ होएगी?
0: हाँ हाँ, रोटी के ऊपर माखन धर के खायो बहना, बड़ो ही स्वाद लगे है।
1: स्वाद के संग विटामिन डी ते भरपूर। सखी, ऐसे ही ना है खाना जाके काजे मैया ते झगड़ते।
0: और का बहना, यही ते माखन रोटी ब्रज को पारंपरिक कलेऊ है। और बहना, ब्रजवासी अंट शंट कलेऊ ना करे, छाछ दही दरिया जे ही करे। और अगर ब्रज के कलेऊ की बात करें तो ब्रज साहित्य में कलेऊ को कई जगह वर्णन किया गया है।
1: हाँ सखी, सूरदास जी ने तो कई कलेवा के पद रचे हैं।
0: हाँ बहना, सही कह रही हो। एक पद है सूरदास जी को, करहु कलेऊ कान प्यारे, माखन रोटी दियो हाथ पर, बलि बलि जाऊं जुखा हो ललारे, टेरत ग्वाल द्वार हैं ठाड़े, आए तब के होत सवारे, खेलहू जाए घोष के भीतर, दूरी कहूं जन जइहू वारे, टेर उठे बल राम श्याम को, आवहु जाहि धेन बन चारे, सूर श्याम कर जोरी मात सो, गाय चरावन कहत हहारे।
1: सखी, कलेऊ का एक और पद है, कनक कटोरा प्रातही, दधी घृत सुमिठाई, खेलत खात गिराह वही, झगरत दो भाई, अरस परस चुटिया गहे, बरजती है माई, महा ढीट माने नहीं, कछु लहुर बड़ाई, हंसी के बोली रोहिणी, जसुमती मुस्काई, जगन्नाथ धरनी धरई, सूरज बली जाई।
0: मतलब कलेऊ करते करते हु झगड़ते दोनों भैया।
1: हाँ सखी।
0: एक और पद है बहना, कमल नयन हरि करो कलेवा, माखन रोटी सध्य जाम्यो दही, भांति भांति के मेवा,
1: खारिक दाख चिरौंजी किसमिस, उज्जवल गरी बादाम, सजरी छेव छुआरे पिस्ता, जे तरबूजा नाम। सखी, ब्रज में कलेवा में फल छाछ दूध दलिया सत्तू बेड़ी जलेबी और रबड़ी को चलन है। और सखी, की ब्याह की एक रसम हूँ तो हते?
0: कौन सी?
1: जा मैं ब्याह के बाद ब्याहला के घरवारे दूल्हा दुल्हन को संग बिठाए के कलेऊ करवा में।
0: हाँ, कुंवर कलेऊ कहे हैं जाकू।
1: हाँ सखी, और कुंवर कलेऊ करवात भये जो दुल्हन की बहने भाभी सखी सहेली मिलके दूल्हा को खूब सता में।

0: बातें तरह तरह के सवाल पूछें, पहेली छंद सुनाएं, जैसे परीक्षा है रही होए।
1: हाँ बहना, जे तो बहुत प्राचीन परंपरा है। और बहना, जब ब्रज में रामलीला को मंचन हुई ना, तो या मैं हूँ कुंवर कलेवा को बड़ो विनोदी दृश्य उभरे है। जब चारों भाई कुंवर कलेवा पे अपनी सास के पाछे बैठ जाएं, तो सीता जी की भाभी जिनको नाम है सिद्धि और बिनकी सखी सहेली चुटकी ले में और कहे हैं, अरे हमने तो सुनो है कि तुम चारों भाई बड़े वीर हो, बड़े बड़े राक्षसन ते रक्षा के काजे ऋषि तुम्हें लेके गए, पर यहाँ तो चूहा की नैया छिपे बैठे हो सास के पाछे। और एक उर्मिला की सखी वो राम जी ते कहा कह वे,
0: कहा
1: कि अरे राम जी एक बात बताओ, बुढ़ऊ राजा दशरथ तो इतेक सुंदर ना है, पर तुम तो कितेक सुंदर हो, कहा कामदेव के छाए हो। और तुम्हारी अयोध्या नगरी वो तो बड़ी ही विचित्र है, वहाँ तो महतारी खीरते ही बालक जंदे में। तो लखन हूँ जवाब दे में है। वे कहें, चलो हमारे यहाँ तो खीरते ही सही, पर बालक को महतारी जने हैं, तुम्हारे यहाँ तो मिथिला में जनकपुरी में धरती ते ही छोरी है जामे।
0: अरे सखी, हास परिहास करनो तो ब्रजवासिन को स्वभाव होए, चाहे कोई अवसर होए, ब्रजवासी विनोद करवे ते चूके ना है।
1: जे तो सही बात है। और सखी देखो, कलेऊ कलेऊ करत भय मन भोजन पे ही अटक गयो है।
0: तो चोना सखी, आज अपने श्रोतान को भोजन थारी लीला सुनवाई के ब्रज के भोजन को स्वाद ले लियो जाए।
1: बिल्कुल, तो सुनो श्रोताओ, भोजन थारी लीला।
2: ब्रज राम।

0: भैया कन्हैया, आज तो बड़ो ही आनंद आयो। खिसलने सिला कैसी माखन जैसी चिकनी है, एक ही पल में ऊपर से नीचे बीजरी सारा पेट्यो के बस पूछे ही मत, आनंद आ गयो।
1: भैया मोहू को तिहारे संग बड़ो ही आनंद आवे है, रात भर पपैया की तरह बाट जो हूँ कि कब सकारे तिहारे संग गौचारण को जाऊं, वहां सब मिलके खेलें कूदें, अनेकन रूप धार के सगरे दिना आनंद लें। याद है बादना, तालवन के मीठे फल कैसे खाए आते, याद है ना?
0: सोना याद, खूब याद है। पर कन्हैया, ताल के फलन ते तो अधिक आनंद वा गधा के लड़वे में आयो, गधा के लड़वे में। और भैया कन्हैया, तू तो हमारे जीवन को रक्षक है, जो तू वादना न हो तो ना,
2: हाँ भैया,
0: तो हम तो वा गधा ने पहुँचा दिए होते स्वर्ग में सूदे।
3: हाँ भैया, तू तो स्वर्ग को पहुँच जाते।
2: हाँ भैया,
0: सारो गधा बन के आयो गधा। कंस को मामा कहूं को कैसे मीठे फल, और काहुए खामन न दे।
3: हाँ।
0: लूम कहूं को,
3: लूम कहूं को,
0: अरे फलवा के बाप के है का।

0: ਇਨਹੀਂ ਲੱਛਣ ਤੇ ਅਸੁਰ ਬਣਿਓ ਇਨਹੀਂ
1: ਲੱਛਣ
0: ਅਰੇ ਭਈਆ ਫਲਨ ਕੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਤੋ ਮੇਰੀ ਭੂਖ ਔਰ ਚਮਕ ਆਈ ਅਬ ਓਈ ਮਈਆ ਕੀ ਛਾਕ ਨਾ ਆਈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੱਠ ਸੋ ਸੂਦੋ ਠਾੜੋ ਹੈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਰੇ ਕਨਹੀਆ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਚਮਕ ਤੋ ਹੋਇਓ ਮੇਵਾਦਾਰ ਮਗਦ ਕੋ ਲੱਡੂ ਸੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
2: ਲੱਡੂ ਸੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੱਡੂ ਸੋ
3: ਅਰੇ ਸਾਰੇ ਗੱਪਕ ਮਤ ਜਾਈਓ
0: भैया मंस का तू यो बताए या बन को नाम कहा है
4: अरे कन्हैया मैंने खाई है बन की खीर हाँ पर सुंदर बड़ो है
2: हाँ भैया
4: कदमन की छैया पर्वत सरोवर पशु पक्षी बड़े मनोहर दिखे हैं भैया कन्हैया
0: अरे या बन को नाम है काम बन
4: काम बन
0: हाँ
4: अच्छा
0: यहाँ शिव जी ने कामदेव को भस्म करो हो यही ते या को नाम है काम बन
5: कहा गई भैया कन्हैया शिव जी ने कामदेव को भस्म
0: करो हो
4: पर नाना भैया कामदेव को भस्म करवे की जरूरत ना है अब कन्हैया मैं तो भाई अपनो चेला बनाऊंगा चेला और सुने और जब स्त्री को रूप बना के सखीन के घर माखन खायो करूंगा और जब चाहूं असुरन के कान पकड़ के सारे ने जमुना में फेंक दूंगा और भैया सुने जब है जाए रात तो मैं जसोदा मैया बनके कन्हैया तेरे संग सोया करूंगा सुनी
3: अरे भैया मनसुखा ओ मनसुखा
4: हाँ
3: ये बोल ना रहे हो
4: हाँ हाँ बोल कहा के
3: देख छाक लेके को आ रहे हो दी से
2: हाँ भैया
4: हाँ अच्छा मैं देखूं
3: हाँ तू अपनी दूर
4: ऐसे कर ला मैं अपनी दूर दृष्टि से देखूं
3: हाँ भैया देख
4: अरे अरे ये तो कोई सखा आ रहा है सखा
6: कहा कह रहे हो सखी की ठौर पे सखा कैसे आ गए हो
5: दिखा ना हो गो यार
4: अरे ना ऐसा ही लग रहा हूँ तो
6: भैया मेरे
4: आंखन में बाहर के
5: देख
4: अरे पूछे मत मेरे पेट में हूँ तो मुंह से ऐसे कूद रहे हैं अरे जैसे राम जी की सेना लंका में कूदी सुने मैं बताऊं तो मेरी बात सुने
2: बताए
4: फूले हैं कदम बन मोदक समान घन और खीर तो तलैया भरी लाग रही दुख में
2: वाह भैया मनसुखा
4: खीर तो तलैया भरी लाग रही दुख में चलत ब्यार तेज बोले खड़खड़ पात चलत ब्यार तेज बोले खड़खड़ पात पापर समान भ्रम पीपर के रूख में पीपर के रूख में हलुआ सी कीच बीच रेणुका पंजीरी जैसी हलुआ सी कीच बीच रेणुका पंजीरी जैसी धूप तुरी माखन सी रव तब सुख में सृष्टि मेरी दृष्ट में अटूट अन्नकूट भई सृष्टि मेरी दृष्ट में अटूट अन्नकूट भई और रचेता रसोईया तो भयो भारी भूख में

0: छल सो धारो गोप रूप तहां खेल समाने।
1: राम राम भैया।
2: भैया
3: ये कौन आएगा भैया?
4: ये कौन सा गोप है भैया?
2: तो कोई नयो सो ही दिख रहा है भाई।
3: अरे सुने भैया, यह देख के तो मोह थरसो लग रहा है।
2: थरसो लग रहा
3: है। और भैया देख, आकाश की नाई कितनो विशाल है, और देख पागहू तो नीकी नाई बांध राखी।
4: हाँ भैया,
3: और देख यहाँ
2: टेढ़ी मेढ़ी
3: बांध राखी ना, और
2: लठियाऊ ओंधी
3: रख
2: लठियाऊ और ओंधी राखी भाई।
3: कन्हैया भैया, अरे भैया कन्हैया, जा गोप को कछु नाम और अतो पतो तो बता।
5: अरे जी नयो सखा है।
3: अच्छा
5: भैया,
3: ये कहाँ से आयो भाई?
2: नयो है भाई, कोई
5: नयो है? नयो नयो में
2: नया सखा बना रहे हैं भैया।
3: पर ये है कौन?
1: अब भैया मैं तो बताऊं।
3: हाँ बता।
1: मैं तो उसके मामा को मामा को
3: मामा को मामा को
1: आज ही सकारे आया हूँ।
2: देख लो आज ही आया हूँ।
1: अब बुआ ने कही वन में ही चले जा, यहाँ अकेलो सांस तो कहा करे।
2: अच्छा तो आएगा कोई
3: भैया? मैंने तो तू पहली बार ही देखो है।
5: चलो भैया कदमन की छियान में विश्राम करें
3: हम भैया। चलो
5: चलो वहीं छाक आ जाएगी। चलो
2: चलो चलो चलो चलो भाई चलो।
3: खाना सुनो, सुने ओ खाना बात तो सुने।
5: सुना है?
3: सुनो कान नव गोप में पूरब देखो नाए, हाव भाव पहचानिए असुर रूप को आए। देखो सावधान जी तो आते।
2: भाई ये बात तो ठीक कह रहा है भाई।
3: और सुने अंतर्गत है क्रूरता, बोलत मधुरे बेन सावधान मिल खेलिए हे मोहन सुखदेन। तुम तो बहुत होशियार हो यहाँ, सावधान रहो, वो कछु यहाँ पे शक लग रही है।
5: देख भैया मनसुखा,
3: हाँ
5: तू कोई चिंता मत करे। हाँ। दाऊ भैया ने ये पहचान लियो है, सेनन ते मोए माने सब बताए दियो।
2: डरना लगे।
5: अरे श्रीदामा, ओ भैया सेतु के निकट गैया चल रही है, तने यहीं ले आओ।
3: अच्छा भैया।
1: अरे भैया हो, अरे भैया जो ताई छाक आवे क्यों ताई सब मिल के आँख मिचौली खेले।
3: हम भैया बात तो सही,
1: जो हार जावे को तो बा पर्वत की गुफा के द्वार तक पीठ पे चढ़ाए के ले जावे।

0: ওরে ভাইয়া দেখো সেই ও দেখিও ভাইয়া রিসমা কেজো লঠো তো ঠালো হ্যায় গেলো
1: হ্যাঁ ভাইয়া হ্যায় তো গেলো হ্যায় সো
2: আরে মনসুখা লে তোয়ে ঘোড়া পে সওয়ারি করাউ সমঝ লে তু জিত গয়ো
3: আরে না না মে না আরে সওয়ারি
0: ও মনসুখা এ বেঠ যা এ আয় মতিয়া ও দেখ ও ও শুন तू ब्याह की गोरी तो मिलेगी ना है
3: अच्छा तू ना माने ले तो पहले बामन को बेटा ही श्री गणेश करेगा
0: जे बात ए
3: ले ना बैठेगो
0: भाई
3: चल चल
2: अरे मनसुखा समर के बैठियो पौन की तरिया भाजूंगो गिर गयो तो दोष मत जीजो
0: अरे भैया देखियो ओ सुनियो सही कहा रोई
3: जो कहा है भैया
4: अरे ओ अरे रुक तो सही अरे भगत चल कन्हैया के पास भगत चल अरे रुक तो सही अरे देख मेरी कहाँ गिर गई
3: अरे मैं कहाँ करूँ बता दो सही अरे यार काल कोठरी में कहाँ ले आयो अरे अब रोऊं तो मेरी कौन सुनेगो अरे भूख के मारे में तो वैसे ही आवाज ना निकल रही अरे हो मैं सुन तो सही कहाँ ले आया तू अरे मुझे
4: अरे भैया कह रही ये आंधी आ गई है कहाँ है ये तो आंधी की तरह से अरे भैया क्या कर
0: रहे अरे भैया देखो गोप तो आ गया है अरे मनसुखा कहाँ है भैया
2: अरे वो तो पूरो लालची है भोजन भक्त मीठे मीठे फलन को देख के वही रह गए हो हाँ
0: अच्छा भैया कन्हैया ओ भैया कन्हैया
3: हाँ भैया
0: लो भैया खेलेंगे अब तो
3: दोस आँख मीच ले या गोप की
0: अच्छा ए ल पकड़ लियो कन्हैया ओ कन्हैया है पकड़ लियो ला भैया ला मेरे पोते और पीठ में बैठा है
3: मोए तो यहाँ की पीठ पे बड़ो ही आनंद आवेगो
2: अरे दो आ जाओ
0: अरे भैया कन्हैया हाँ। भली भात बैठियो यहाँ की पीठ पे ये बहुत तेज भाज आई
3: अरे बर की तरिया चपट जाऊंगो चिंता ही मत करे बलराम भैया
0: हाँ, और देख मेरा पोत आने पूरी चिड़चिड़ा सा समझ लियो
3: अच्छा
2: कन्हैया आज तेरो मेरो मेल भयो है आज तो अपने मित्र कंस को काज सार

0: हेलो,
1: अरे बलराम।
2: हाँ,
1: बलराम
2: भैया।
1: ये तो वो भैया बलराम।
2: हाँ भैया।
1: ओ ये तो बड़ी क्रूरता से भरी बात सुना रहे हो है।
2: अरे अरे वो कन्हैया को मोर फंक कर रहा, वो बजहारी पे मुरली। ओ चलो भैया चलो, ओ चलो भागियो।

0: अरे
1: अरे ना कन्हैया मर गयो ये तो सारो।
2: अरे एक ही मुक्का में मार के कर दियो सारे को ढेर।
0: और का क्यों ना तेरे करो होगा।
1: हाँ ना तेरे करो मैंने ना करो।
3: ले भैया आ गई छाक हूँ।
4: अच्छा भैया।
3: हाँ भैया

0: अरे भैया कन्हैया।
1: हाँ भैया।
0: अरे आज तो मैया ने खीर भेजी है, खीर।
1: अरे तो खीर दिख रही है। अरे हाँ। इसको तो देख, मगध के लड़ुआ हुए।
0: अरे लड़ुआ ने तू खा ले भैया। अरे वो तो खीर बहुत अच्छी लगे ले। ओ कते प्याज दे
1: ना, ओ कते काय को पीबे। मैं लाऊं कदमन के पत्ता।
0: अरे ना वो तो, वो
1: कदम के पत्ता के धोना बना लीजो है,
0: जल्दी कर।
1: हाँ, और देख किस्मत ने तू लेगा के या को देखो श्री रामा को।
0: अरे तू किस्मत ने तई को खिचन दे
1: काजू भी है आवे।
0: चली आमन दे कटे मा
1: कटे मा। अरे भैया बलराम। ओ दादा।
0: हाँ कहा के
2: भैया। देखो हाँ। इन सलान पे ही थारी कटोरा बन गए हैं।
1: हम भैया बन तो रहे हैं तो।
2: कैसी हाँ। स्वच्छ सला है।
1: अरे हम
2: ले आ तो तलैया ले आंजरी में जल।
1: मैं ला रहा हूँ भैया। ए ले मन सुगा।
0: अरे बस।
1: अरे और ले,
0: अरे मैं कोई भोजन भट्ट हूँ।
1: नहीं ना करे,
0: बस बस बस, बस, बस, बस
1: ले ले नेक्स्ट और ले। और भैया
0: कन्हैया दे, कन्हैया तू ले ले।
1: अरे हाँ भैया कन्हैया
0: तू ले
1: ले। सबकी थारी ऐसा करे ना, कछू तू भी तो ले ले लेगा। देख
2: भैया मैं तो सबकी थारी ते चाखूंगा, कैसा स्वाद आवेगा भैया।
1: अरे वाह भैया कन्हैया,
0: आज खूब भंडारो भयो।
1: अरे वो चकान चक्के भैया।
0: और आंदे खीर थोड़ी सी पेट में होरी जैसी की
1: भैया। अरे नंद के भाव तारी ऐसी भोजन ऐसी तारी।
0: बोल कन्हैया लाला की जय। बोल तांबन भोजन थारी की जय। बोल पुछरी के लोठा की जय।
3: अभी आपने भोजन थारी लीला को आनंद लियो बहना।
4: हाँ सखी।
3: वैसे तो कन्हैया की हर लीला के पीछे ब्रजवासी को कल्याण करनो ही है तो। जैसे यह लीला में व्योमासुर नाम को असुर मार के कन्हैया ने ब्रजवासी की और गैया मैया की रक्षा करी। और आपने सुनो कि बाद में छखारी कन्हैया के ताई छाछ लेके गयी।
4: हाँ और कन्हैया पे वारी हो गयी। सखी ब्रज गोपिन को प्रेम हु बड़ो निरालो हतो। कबहू तो कन्हैया को देखे बिना चैन नहीं पड़तो।
3: हाँ।

0: और कबो बिनते झगड़ती, कबो बिन की बंसी ले लेती।
1: हाँ, पहले तो बिने मीठी छाछ पिलाती और फिर मैया ते शिकायत करवे पहुंच जाती कि मैया तेरो लाला हमते रोज रोज झगड़ा करे, हमारी मटकी फूरे, कपरान ने भी जो दे। सुनो तो, हरी किशन और साथिन के स्वर में कितने प्यारा लोकगीत है।

0: बहुत ही बढ़िया लोकगीत सुनवाया हो आपने।
1: हाँ।
0: और अब यही लोकगीत के संग ही हम अपने कार्यक्रम को समापन करें। तो श्रोताओ, अब मोकू यानी के वंदना को
1: और मोकू यानी वंदना जोरी को कार्यक्रम संपन्न कर भी की अनुमति दियो। नमस्कार।
0: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, आप सुनते हैं ये नाटक।
3: आइए सुनते हैं नाटक फुल मून रांझो। लेखक रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुनेंगे।

0: चार, चौथा घर मेरा नसीब, मेरी रानी मेरा राजा, मेरी रियासत मेरा दरबार।
1: ये लड़की कौन है जो अकेले ही खेल रही है?
0: बस आ गया।
1: अभी एक तो दिनों से ही दिख रही है यहाँ कोठी पर।
0: दो, तीन, चार, चौथा घर मेरा नसीब, बस आ गया। कितना अच्छा लग रहा है।
1: ये स्टापो भी भला कोई खेल हुआ? और अकेले खेलने में इसको भला क्या मजा आ रहा होगा?
2: लड़की, ए लड़की।
0: अरे अरे, पाँव क्यों रख रहे हो?
2: अरे कौन हो तुम?
0: पाँव क्यों रख रहे हो? चौथे खाने से निकलना है तो फांद कर निकलो ना। ये खाना तो मेरा घर पक्का हो चुका है।
2: क्या पक्का हो चुका है? अरे चौथा खाना भी स्टापू में ही है ना, और स्टापू तो स्वयं कारदारी कोठी में है जो की पूरी हमारी है, समझी?
0: कोठी तुम्हारी हो या किसी राजा वजीर की, पर अब स्टापू का चौथा खाना मेरा हो गया है। बड़े जत्न से चौथे खाने तक पहुंची हूँ। एक ही टांग पर उचकने के लिए बहुत संभालना पड़ता है अपने आप को। घर तो घर है ना, खेलोगे?
2: अरे मैं लड़के वाले खेल नहीं खेलता। मेरे साथ खेलना है तो दंड पला खेलो। रामू का बेटा दंड लेने को जाए, रामू का बेटा हाफ हाफ जाए।
0: अरे अभी मैं बहुत छोटी हूँ, पेड़ पर थोड़ी चढ़ सकती हूँ। स्टापू में तो हम एक पाँव पर उछल उछल कर चलने और अपने को गिरने से बचाना सीखते हैं। बापू कहता है ये सीख लो तो सारी उम्र काम आता है।
2: अरे स्टापू क्या, थोड़ी सी जगह में फुदकते रहना है। अरे हमको मिलना क्या गया है?
0: अच्छा चलो, मेरी ना तुम्हारी ना स्टापू।

0: दंड पला, हम कीकली डालते हैं गोल गोल घूमकर।
1: अरे नहीं, नहीं, अरे नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
0: मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ, हम दोनों अपने अपने पाँव के पंजे एक दूसरे के पंजों से जोड़कर कीकली खेलते हैं, गोल गोल घूमते हैं कीकली।
1: अरे क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, तुम तो खाम का गले पड़ रही हो मेरे।
0: भेड़ भेड़ भै भै ले ले कितने छे,
1: छोड़ो
0: खाना क्या भरू भरू, मरना कब जब तब,
1: क्या कर रही
0: हो, मरना कब जब तब, वहाँ से निकली जन्म जनानी,
1: छोड़ो मेरा हाथ,
0: वहाँ से निकली जन्म जनानी, जन्म जनानी के 18 बच्चे हम सब सच्चे।
1: ये क्या किया तुमने, कमर तोड़ के रख दी मेरी।
0: संतुलन बनाकर नहीं रख सकोगे तो कमर क्या कुछ भी टूट सकता है।
1: अरे गोल गोल घूमने से सिर में चक्कर आने लगेंगे तो गिरूंगा नहीं क्या मैं, है? मैं आज से तुम्हारा यहाँ ना बंद करवाता हूँ। तुम हो कौन?
2: मैं तुम्हें एक दो दिन से ही देख रहा हूँ यहाँ पर।
0: मेरा बापू यहाँ काम करता है।
2: अच्छा, कौन है तुम्हारा बापू, क्या नाम है उसका?
0: काकूराम।
2: ओ अच्छा अच्छा अच्छा, पर तुम तो कोई काम नहीं करती ना, सारा दिन खेलती रहती हो अकेले ही।
0: खेलती चाहे मैं अकेले ही हूँ, पर मैंने अपना घर पक्का कर लिया है, चौथा खाना अब ये मेरा हुआ, कोई भी इस खाने में पाँव नहीं रख सकता।
2: अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम अपने बापू के साथ यहाँ क्यों आ जाती हो, तुम यहाँ कोई नौकरी तो करती नहीं हो।
0: बापू किसके पास छोड़े मुझे, मेरे घर में बस मैं और बापू ही है और कोई नहीं।
2: और तेरी अमड़ी, अमड़ी नहीं है क्या?
0: ना।
2: क्या हुआ उसे?
3: तेरे बापू को छोड़ किसी और के साथ तो नहीं चली गई क्या?
0: ये जो जंगल है ना,
2: हाँ?
0: इसके पार एक नदी है।
2: हाँ, रोती तो?
0: बस उसी में चली गई, बिल्कुल अकेली, मैं अकेली रह गई हूँ।
2: क्या बात थी?
0: मुझे क्या पता, बहुत पुरानी बात है, मैं पता नहीं पैदा भी हुई थी या नहीं।
2: हाँ, बहुत बुरा लगता होगा तुम्हें, है ना? खैर जो हो गया सो हो गया, चलो खेलते हैं।
0: हम दो ही तो हैं, क्या खेलेंगे?
2: अरे लुका छुपी खेलते हैं ना, तुम मीठी दो मैं छुप जाता हूँ।
0: मुझे नहीं आती मीठी देना, वो एक दो तीन पूरा नहीं आता ना, बस चार तक ही आता है।
2: अच्छा,
0: चौथा खाना, वो भी इसलिए कि चौथा खाना तय है मेरा घर।
2: अच्छा अच्छा, गिनती नहीं आती, कोई बात नहीं, तुम बांसुरी बजाती रहना।
0: मुझे बांसुरी बजाना भी नहीं आता।
2: ओह चलो बाबा, छिपूंगा भी मैं ही और बांसुरी भी मैं ही बजाता रहूंगा, जैसे ही मैं बांसुरी बजाना बंद करूं तुम मुझे ढूंढने आ जाना, ठीक है?
0: ठीक है।
2: तो ठीक है, अब मैं छुपने जाता हूँ, ठीक है?

अरे अरे सुनो, मुझे तो तुम्हारा नाम भी पता नहीं। कहाँ हो? आ जाओ ना सामने, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आ जाओ बाहर निकल कर, मैं दोबारा मीठी दे लूंगी। मैं खो गई हूँ। मुझे बचा लो।

0: अरे बस इतना ही कलेजा तुम्हारा है, छोटी हो ना। अरे मैंने कह तो दिया कि जब बांसुरी बजाना बंद कर दूंगा, पर बांसुरी बजाते बजाते मैं ऐसा खो गया कि बांसुरी बजाना बंद ही नहीं हो पाया। बांसुरी बजाते बजाते मैं सारा जंगल लांघकर रावी नदी तक पहुंच गया, पत्थरों पर।
1: अच्छा
0: हाँ, चल तुझे भी दिखाता हूँ, बहुत मनोरम स्थान है बांसुरी बजाने के लिए भी और लुका छिपी खेलने के लिए भी। हाँ। चल

0: मैं थक गई रांझो।
1: अरे आओ फुलमू आओ। अरे आज तुम्हें देर नहीं हो गई पहुंचने में।
0: तुम्हारे परिवार की कोठी तो रावी के बिल्कुल किनारे पर है। मुझे तो टिब्बे से भागकर ढक्की उतरनी होती है ना। रांझो तुम बांसुरी नहीं बजाया करो, मैं धूप से अनुमान लगाकर अपने आप आ जाया करूंगी।
1: क्यों, क्या बात है? मेरी बांसुरी तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या?
0: अच्छी तो लगती है, बहुत अच्छी लगती है। खींची चली आती हूँ, पर जैसे ही तुम्हारी बांसुरी सुनाई देती है ना, तो मैं सुध-बुध खो बैठती हूँ राजू। ढक्की भी मुझे सटपट भागते हुए उतरनी पड़ती है। एक दिन पहले ही मेरा पाँव मुड़ गया था, और एक दिन तो पाँव के अंगूठे का नाखून टूटते टूटते बचा था।
1: नहीं भाई, हमें अपनी फुलबू तोड़नी फोड़नी थोड़ी है। एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है?
0: ठीक है,
1: मैं थोड़ी सी बांसुरी बजाकर अपने पहुंच जाने की सूचना दे दिया करूंगा। तुम आती रहना आराम से।
0: बिल्कुल,
1: मैं तुम्हारी तरह इस बांसुरी के बिना भी नहीं रह सकता। ये भी छुरमैया है, तेरी तरह माँ विहीन।
0: बांसुरी की भी भला कोई माँ होती है क्या?
1: कभी ये भी अपने पेड़ तने और टहनियों का अंग रही होगी। पेड़ जब समूचा होता है ना, तो उसमें प्राण होते हैं। प्राण तो जड़ों से जुड़े होते हैं, कट जाने पर टहनी बेजान हो जाती है। अब जब मैं इसमें फूंक भरता हूं, तो इसकी सांस चलती है, फिर ये गाती है, मुझे नचाती है। और नहीं बजाऊं तो कुछ नहीं, बस एक मुर्दा भर।
0: कितना सोचते हो तुम, वो भी दूसरों के बारे में रांझो। राजू, हम दोनों हमेशा हमेशा इकट्ठे रहेंगे, आगे भी। अब मेरा मतलब बड़े होकर भी।
1: अरे हो तो गए बड़े, और कितना बड़े होंगे भला, हैं? अच्छा, पहले तुम्हारी नाक बहती थी ना, अब बहती है क्या?
0: तुम्हें तो बस मजाक ही सोचता है। मेरा मतलब है कि बड़े हो जाने पर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तब तो।
1: अरे ब्याह तो मेरे बाप दादा का भी हुआ था, क्या पता मेरा भी हो जाए। पर हाँ, हमारा प्रेम अमर है। अरे शादी ब्याह इसे समाप्त नहीं कर सकते, ब्याह के बाद भी हम ऐसे ही हैं।
0: अरे अच्छा, दिखाओ मैं तुम्हें तुम्हारा अमर प्रेम। तुम मुझे बंदी बनाकर रखना चाहते हो ना? बड़ा होशियार बन रहे हो ना? तुम्हारी तो मैं हड्डी पसली एक करके रख दूंगी, बताती हूँ तुम्हें। रुको तुम,
1: बस बस सुनो मेरी बात। मेरा प्रेम तो अमर है, पर तुम्हारा प्रेम तो बहुत लड़ाकू है। अरे लड़ाकू नहीं बल्कि हलाकू है।
0: चले जाओ यहाँ से। हाँ, मैं तो चली, फिर कभी नहीं आऊंगी।
1: अरे फुलमू,
0: मैं जा रही हूँ।
1: तुम तो नंगे पांव चल पड़ी। अरे तुम्हारी खड़ा हूँ।
0: रांझो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रही ना, तुम्हारी नहीं रही ना, तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम स्टापू में मेरा चौथा खाना हो। ऐसा हुआ ना तो मैं जान दे दूंगी रांझो।
1: अच्छा अच्छा फुलमू, सुन मेरी बात तो। सुन सुन सुन, देख मैं इस बात के लिए तो जान नहीं दे पाऊंगा कि हम बिछुड़ गए हैं, पर अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो सुन, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। सच कह रहा हूं मैं।
0: इसे मत कहो।
1: मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा फुलमू।
0: नहीं,
1: दीपक केवल तभी तक दीपक है जब तक ज्योति प्रज्वलित रहे, समझी?
0: रांझो,
1: हाँ?
0: साथ जीने की बात करते हैं ना, मरने की बात क्यों करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
1: अरे हो जाएगा कुछ ना कुछ, अभी मेरे रिश्ते की भला कौन सी कोई बात हो रही है, हैं? अच्छा अब तो मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, हैं? ये हुई ना बात।
2: अरे भाई जल्दी चलो।
3: अरे चलो चलो चलो चलो।

0: ओपुल मुंह।
1: अब यहाँ इतने लोगों में आवाज तो ना लगाओ, कितने श्रद्धालु आ जा रहे हैं।
0: अरे बड़ा चक्कर पड़ गया है फुलमू,
1: आज माता के डेरे कैसे आ गए?
0: अरे गदियों के डेरे ऊंचाई वाले इलाकों में जा रहे हैं ना, बस वही देखने आ गया मैं।
1: हाँ क्या चक्कर पड़ गया, तुरंत बताकर इधर उधर हो जाओ। नर्सों से तो तुमने बांसुरी भी नहीं बजाई।
0: किसी कारिंदे ने या फिर मुकदम ने ही मेरे बापू से हम दोनों की शिकायत लगा दी है।
1: अब क्या बनेगा?
0: अरे बनना क्या है, मेरे बाबू का नाम जेठा सिंह है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। देखना
1: माँ,
0: देख फुलमो, जीवित रहना है और वो भी साथ साथ, तो भरमौर छोड़कर कहीं और भागना पड़ेगा।
1: हम कहाँ भाग पाएंगे? पांगी चल पड़े क्या? गद्दियों के साथ छिपते छिपाते हुए?
0: हाँ हमें तो जाना ही पड़ेगा पैदल, रेंगती हुई भेड़ों के साथ, और बाबू के कारिंदे आएंगे सरपट भागते घोड़ों पर।
1: चलो चलो, बाकी की बात कल कर लेंगे जब मैं पानी भर के लौट रही होंगी। चली मैं।
0: हाँ ठीक है। अरे सुन फुलमू, फुलमू एक काम करते हैं, भद्रवाह जा सकते हैं, वहां तो मैं पढ़ते समय आते जाता रहता था, वहां का मुझे सब मालूम है, वहां हमारे कहीं खो जाने का भी कोई डर नहीं है।
1: ताकि जाते ही धर लिए जाएं। और जोर से बोलो, अभी सभी ने सुना नहीं है, बापूजी को पता नहीं होगा कि रांझू और जा ही कहां सकता है।
0: अच्छा अच्छा सुन, वहां से थोड़ा नीचे डोगरे इलाकों में उतर जाए।
1: भद्रवाह का रास्ता क्या है?
0: यहां से चंबा, और चंबा से चुरा, और चुरा से पदरी के रास्ते भद्रवाह।
1: अच्छा
0: हाँ, वहां से और निचले इलाकों में उतर जाएंगे, ठीक है ना?
1: ठीक है।
0: हाँ ठीक है, समझ गई।
1: अब अच्छे से सोच विचार कर लेते हैं, फिर बात करेंगे, इतनी देर यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। रांझो, बापू को छोड़ दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है, बहुत सीधा है मेरा बापू, उसे तो कोई भी लूट ले। हम बापू को भी साथ ही भगाकर नहीं ले जा सकते क्या?
0: हाँ हाँ ले चलो, मेरे बापू को क्यों छोड़ना है, बहुत होशियार है, रास्ते में काम आएंगे। अरे मार खाने का इंतजाम करना है ना, तो नरम नरम क्यों खाएं, हैं भिगोकर खाएंगे ना।
1: अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब तुम नाराज मत हो और इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो, सब चौपट हो जाएगा।
0: चौपट हो जाएगा।
1: एक बात है, जब हम लोग वहां पर टिक जाएं, यहाँ तुम्हारा परिवार भी शांत हो जाए, फिर तो मैं अपने बापू से मिलने यहाँ आ सकती हूँ ना।
0: अरे तब की तब देख लेंगे।
1: नहीं रांझो, तुम चाहे आओ या ना आओ, मैं अकेली आ जाया करूंगी, रास्ता ठीक है ना वहां से किसी औरत के अकेले चंबा आने के लिए?
0: देख पडरी वाले रास्ते का तो मैं कह नहीं सकता, हाँ चंबा आने के लिए जम्मू वाला रास्ता लंबा जरूर है, पर उसमें डर वाली कोई बात नहीं।
1: कितनी लंबी है जम्मू वाली राह?
0: नापना भूल गया था मैं, देखो तो सही मौका कौन सा है और तुम कौन सी बातें कर रही हो। अरे पीछे देखो, पीछे कौन आ रहा है?
1: कौन?
0: अब गायब हो जाए यहाँ से।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं।
0: हाँ ठीक है ठीक है।

0: मेरी जमुए दिराहें चंबा कितनी कदूर।
1: क्या बात है पहलवान, दो तीन दिन से बड़ा तानसन बना हुआ है।
0: बापू
1: आजकल तुझे बहुत याद आ रही है, ऊंची ऊंची रेड़ियां, डूंगी डूंगी नदियां, और ये झोले में क्या डाल रहे हो?
0: वो बापू हम वो हम मतलब हम लड़कों लड़कों ने ना भाग सुनाग जाने की सलाह बनाई हुई है बापू।
1: वहां जाकर क्या करोगे? वो तो पूजा पाठ वाली जगह है, भद्रवा चले जाओ ना चंबा से चुराह के रास्ते।
0: अरे नहीं नहीं बापू, नहीं नहीं
1: नहीं बापू, क्या मेरी क्या आंख कान नहीं है? मेरे तो नाक भी है बच्चे सूंघने के लिए, मेरे कान तो दर्जनों हैं, वो भी हवा में उड़ते हुए।
0: अरे बापू आप जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है।
1: हाँ हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे पता है। चलो ओवरी में चलकर बात करते, चल।
0: हाँ हाँ चलते हैं बापू, बात जो मर्जी पूछ लो आप, चलते हैं, चलिए आइए। ये क्या बापू, ये क्या कर रहे हो? अरे बाहर से कुंडी क्यों लगा रहे हो बाबू? अरे तुमने तो मुझे ओवरी में बंद ही कर दिया। अरे ओवरी में बंद क्यों कर दिया मुझे बाबू?
1: दो तीन दिन खाना पानी सारी खातिरदारी ओवरी के अंदर ही हो जाया करेगी।
0: क्या?
1: कुंडी बंद ही रहेगी। अरे कुंडी बंद रहेगी तो पिटाई से भी तो बचा रहेगा ना
0: बाबू। बाबू मेरी बात तो सुनो बाबू, मुझे कब तक बंद रखोगे? मैं करूं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बाबू।
1: काकुराम, ओ काकुराम आना जरा।
2: जी अभी आया सरकार।
3: आ गया मालिक।
1: शाबाश आ गया। और से देखकर बताना ये ओवरी के अंदर कौन बंद है?
3: ये तो आपके फर्जंद है मालिक। क्या हुआ मालिक?
1: कुछ भी नहीं हो सका, हो तो बहुत कुछ गया होता, अब कुछ भी नहीं होगा।
3: मतलब मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार?
1: इन साहब के अगले दो तीन दिन तो अंदर ही कटेंगे। सुन अभी घर जाकर अपनी बेटी फुलमू से कहना कि अगले दो तीन दिन जितना चाहे उड़ ले, जहां जी चाहे, मगर दो दिन के बाद जब तक ब्याह नहीं दी जाती उसका घर की दहलीज से बाहर कटा हुआ नाखून भी नहीं आना चाहिए।
3: क्या क्या हुआ मालिक?
1: फुलमू बता देगी ना क्या हुआ। तू मुझे बहुत अच्छा लगता है काकुराम। पर ये जो अंदर मछली की तरह तड़प रहा है ना, उससे अधिक लाडला नहीं है तू।
3: आप माय बाप हैं सरकार।
1: जा सकते हो। हाँ एक बात और, आज रात को सो मत जाना।
3: जी मालिक।
1: ऐसे ही नाटक करना सोए हुए होने का, रात का पहला पहर खत्म होने पर जैसे ही फुलमू उठकर दबे पांव बाहर जाने लगे ना तो बाजू पकड़कर रोक लेना।
3: ठीक है सरकार।
1: और उसे बता देना कि रांझो नहीं आ पाएगा।
3: जी।
1: बेचारे की मुश्कें कस दी गई हैं। बिना माँ की लड़की ऐसे ही आधी रात को उस अंधेरी वीरान जगह पर प्रतीक्षा करती रहेगी, कहीं को जानवर खा गया या चुड़ैल चिपट गई, और तुम तो काकुराम बिल्कुल अकेले रह जाओगे फिर।
3: नहीं मालिक।
1: जा तू जा, कोई नहीं कोई नहीं, देख तू समझदारी से काम लेगा तो मेरा कोई बैर थोड़ी है तुझसे।
3: जी जी मालिक।
0: बाबू बाबू दरवाजा खोलो बाबू, अब तो खोल दो दरवाजा बाबू।
1: सुन चलो तुझे भी संतुष्टि हो गई ना कि अब फुलमू दर बदर नहीं होगी।
0: बापू ये क्या क्या?
1: अब वो घर से ही नहीं निकल पाएगी। खाना खाकर आराम से सो जाना।
0: खाना खाकर बापू को दरवाजा खोलो बापू, मेरी बात तो सुनो।
4: हे भगवान अब क्या होगा, क्या होगा मेरी फुलमू का?
5: अभी आप सुन रहे थे

0: नाटक फिल्मोरांजो, लेखक रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे प्रियंका भंडारी, मंगत राम, विशाल कुमार, दक्ष वशिष्ठ, नितिन गुप्ता और प्रवीण शर्मा। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: मैं हूँ आपका जलदाता, ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदें ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता।

श्रोताओं, अब सुनिए आज के प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। 4:10 पर आप सुनेंगे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। 4:30 पर वक्त होगा समाचारों के अंतर्गत कार्यक्रम परिक्रमा का। 5:10 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम लोक रंजनी का। 5:30 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चहल पहल। पर आप कार्यक्रम सुनेंगे ग्राम संसार। सायकाल 7:05 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। 7:30 पर आप आनंद लेंगे गजलों और कव्वालियों के कार्यक्रम का। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम मुशायरा। 8:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम। 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 11:10 पर आप आनंद लेंगे एक बार फिर से फिल्म संगीत में आपकी फरमाइश का। ये थे आज के प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, आप सुनते हैं समाचार।

留下来，他没有欲望去偷东西。印度德里广播电台刚才播讲的是一个畅中无忧班级的资料。

印度特里广播电台听众朋友们，请收听张杰新歌和杰特啊新歌唱的歌曲。

0: 印度德里广播天台听众朋友们，请收听加吉庆歌唱的歌曲。
1: आदमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है डूबता भी है फिर उभरता है फिर से बहता है ना समंदर निगल सका इसको ना तवारीख तोड़ पाई है वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला है

印度的里广播电台听众朋友们，现在我们播送印度著名的 news 歌手苏尼迪·约翰唱的歌曲，请各位欣赏。

印度的里广播电台听众朋友们，请收听获得36项印度电影界最佳女配音歌手阿卡·亚格尼唱的歌曲，请各位欣赏。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम प्रवीण यादव है
1: और मैं हूं दर्पण त्रिकिया और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जीवन में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी।
0: खेल बार बार हमें चौंकाता है, कभी कोई छोटा देश, कभी कोई अनदेखी टीम, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर ऐसे खेल जाते हैं कि पूरा खेल ही बदल जाता है। उस दिन सिर्फ एक मुकाबला ही नहीं जीता जाता, बल्कि ये यकीन भी जीतता है कि हौसले का कोई आकार नहीं होता।
1: जिंदगी में भी कई बार हम खुद को अपनी परिस्थितियों में छोटा मान लेते हैं, लेकिन पहचान कभी शुरुआत से नहीं बनती, उसे हिम्मत और मेहनत बनाती है। क्योंकि खेल हो या जिंदगी, दुनिया आपको आपके कद से नहीं, आपके दम से पहचानती है। और आज भी हमारे पास कुछ ऐसी ही खबरें हैं जहां पर छोटे छोटे देशों ने विश्व स्तरीय मंचों पर अपना परचम लहराया है और हम सबको प्रेरित किया है। आइए नजर डालते हैं।

0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का केंद्र रहेंगे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और साथ के साथ बैडमिंटन से जुड़ी भी कुछ खबरों पर नजर डालेंगे।
1: आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप में क्या क्या रहा कल खास, इस पर एक नजर डालेंगे
0: जी। और सेमीफाइनल के क्या समीकरण है उस पर नजर डालेंगे। फीफा विश्व कप को कैसे भूल सकते हैं, फुटबॉल की दुनिया में कौन कौन सी टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंच चुकी हैं, उस पर नजर डालेंगे।
1: और बात करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20 मैच, खेले गए मैच के बारे में।
0: और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉकी मैच पर भी डालेंगे नजर। FIH प्रो लीग में भारत का दबदबा कायम है। साथ के साथ अन्य कई खेल खबरों पर होगी नजर। एथलेटिक्स पर नजर डालेंगे, साथ के साथ वॉलीबॉल पर नजर डालेंगे। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे दर्पण और प्रवीण के साथ। आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी।

0: जी तो शुरुआत करते ही हैं उस खबर से जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। बात कर रहे हैं फीफा विश्व कप की।
1: Yes, he's round the last defender under his right foot.
2: तो बात करते हैं कल खेले गए फीफा विश्व कप फुटबॉल में नॉर्वे वर्सेस फ्रांस की। बहुत ही बढ़िया और कमाल का मैच रहा जिसमें फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हराया। फ्रांस की ओर से उस्मान डेम्बेले ने हैट्रिक लगाई और फ्रांस और नॉर्वे दोनों ही क्वालिफाइड राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।
0: दूसरी ओर सेनेगल और इराक के बीच भी ग्रुप आई का मुकाबला खेला गया जो मुकाबला एक तरफा रहा। सेनेगल ने 5-0 से अपना पहला विश्व कप खेल रही इराक को मात दी। सेनेगल भी राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर चुका है।
2: और वहीं केप वर्दे वर्सेस सऊदी अरेबिया का मैच जो कि 0 ड्रॉ की स्थिति में रहा और जिसमें ग्रुप एच के अंदर केप वर्दे पहली बार खेलते हुए राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं।
0: जी केप वर्दे की कहानी शानदार रही है। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर बसा एक छोटा सा आइलैंड नेशन जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख के करीब है पहली बार विश्व कप में क्वालिफाई किए। स्पेन को ड्रॉ पर रोका और कल सऊदी अरब को भी ड्रॉ पर रोका जिसके चलते अपने ग्रुप में दूसरा पायदान हासिल करते हुए पहुंच चुके हैं वो राउंड ऑफ 32।

0: में क्या कहानी रही है केप वर्दे की। तो वहीं स्पेन ने कल जीत हासिल करी यूरुग्वे के खिलाफ। यूरुग्वे और स्पेन के बीच में ग्रुप एच का यह मुकाबला खेला गया, जिसको स्पेन ने 1-0 से जीता। आपको याद दिला दे कि यूरुग्वे वो टीम रही है जिसने पहले दो संस्करण फीफा विश्व कप के जीते थे, दो बार ओलंपिक का गोल्ड भी हासिल किया है, लेकिन कल 42वें मिनट में एलेक्स बायेना के गोल के चलते यूरुग्वे को हार मिली और यूरुग्वे ग्रुप स्टेज से इस विश्व कप से बाहर हो चुका है।
1: और वहीं न्यूजीलैंड और बेल्जियम के बीच खेले गए मुकाबले में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से हराकर 5-1 से न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है और क्वालिफाइंग राउंड में अपनी जगह और पक्की कर ली है।
0: यूं तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो रैंकिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो इस विश्व कप में खेल रही सभी 48 टीमों में से सबसे नीचे है, लेकिन उनसे उम्मीद थी एक अच्छे प्रदर्शन की बेल्जियम की टीम के खिलाफ। उस तरह का प्रदर्शन रहा नहीं, पहले 20 मिनट कशमकश जरूर जारी रही लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा। जब उनके कोच डैरन बेजली से पूछा गया कि आप किस तरह देखते हैं इस कैंपेन को, तो उन्होंने बताया कि निराशा जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का गर्व भी है कि हम फीफा विश्व कप तक पहुंचे और एक अच्छी टक्कर दी।
2: It's probably still sinking in, you know, that we're out and that we have to go home. This was a tough evening tonight. You know, we knew we would have to survive. We knew, you know, that when Belgium put their team sheet in, that, you know, this is a really strong team. And the first 20 minutes was tough, you know, living, you know, staying in the game, surviving. And, you know, I thought the guys did a great job defending, you know, last gasp defending, emergency defending, you know. And we were staying in the game, and that was what the plan needed to be. We needed to stay in the game as long as we can, open the game up second half, you know, and try and win the game tonight, get that win that we wanted. But then we conceded a really poor goal, and, you know, then we have to chase a game because, you know, this is a team that are not just going to go, let's lose 2-0. We opened the game up, made a lot of attacking changes, you know, and against a team like this, you know, you run the risk of conceding goals like we did. But, you know, when I look back, I'm so proud of the players. They worked so hard today, but our World Cup exit isn't really tonight. It was, you know, when we're leading twice against Iran and leading against Egypt, they were the points that we needed to qualify out of this group, and we didn't do that, and we left ourselves a tough task to beat Belgium tonight.
1: और इसी दौरान एक और मैच खेला गया इजिप्ट और ईरान के बीच, जो कि 1-1 की बराबरी पर रहा, जिसके अंदर इजिप्ट ने अपनी क्वालिफाइंग राउंड में जगह पक्की कर ली है। वहीं ईरान की स्थिति अभी साफ नहीं है।
0: जी, और अब नजर डालते हैं आज होने वाले मुकाबले। आज यानी कि 12 बजे के बाद जो मुकाबले शुरू होंगे वो भारतीय समय के अनुसार कल, लेकिन यूएसए, मेक्सिको और कनाडा के समय के अनुसार आज वो मुकाबले खेले जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे होने वाली है पनामा और इंग्लैंड के बीच। पनामा और इंग्लैंड ग्रुप एल का हिस्सा है और वहीं क्रोएशिया और घाना भी ग्रुप एल का हिस्सा है। क्रोएशिया बनाम घाना, पनामा बनाम इंग्लैंड, ये दोनों मुकाबले एक साथ शुरू होंगे। जैसा आप जानते हैं फीफा की गाइडलाइंस के हिसाब से हर ग्रुप का आखिरी मुकाबला एक साथ शुरू किया जाता है और इंग्लैंड की टीम पर खासी नजरें होने वाली हैं क्योंकि बतौर फेवरेट्स मानी जाती है इंग्लैंड, लेकिन अभी तक जो प्रदर्शन रहा है इस विश्व कप में वो उतना सराहनीय नहीं रहा है। घाना के खिलाफ ड्रॉ खेला था इंग्लैंड ने, जिसकी उम्मीद इंग्लैंड के फैंस नहीं कर रहे थे। पनामा की टीम हालांकि इंग्लैंड के सामने कच्ची मानी जाती है, लेकिन इंग्लैंड के मैनेजर थॉमस टुशेल कहते हैं कि भले ही पनामा बड़ा नाम ना हो लेकिन अपने दिन पर वो जरूर उलटफेर कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास उनको बिल्कुल भी हल्के में लेने का समय नहीं है।
3: We see a well-coached, a well-drilled team from a coach who's there now since 5-6 years. It's not the most famous, the most well-known football nation, most glamorous football name, but they were strong into this group. They can play in the role of an underdog. They can play without any pressure. So that's what we expect. It's a complex game. We expect them from time to time defend again in a deep block. So we have to try to break it down, accelerate the game in the right moments. But we see also high high press against our goal kicks, against our goalkeeper when in game. We see ball possession phases. So yeah, it's a complex one. We are in the role of the favorites. We have to do some stuff

0: better, details better than against Ghana, but it's another challenge, and we need another top performance to be able to win.
1: जी हाँ, टॉप परफॉर्मेंस की जरूरत है क्योंकि घाना के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर पाए थे। खैर, घाना की टीम भी शानदार प्रदर्शन करती आ रही है इस विश्व कप में। आपको बता दे कि घाना उन चार टीमों में से है जिसने अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया है, यानी घाना की वो जो डिफेंस की दीवार है उसको कोई भी टीम तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाई है। लेकिन क्रोएशिया को दमखम दिखाना होगा क्योंकि घाना तो राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना चुका है। क्रोएशिया की टीम के लिए लगभग करो या मरो का ये मुकाबला होने वाला है, और इसलिए घाना के कोच कार्लोस क्वीरियोज कहते हैं कि हम क्रोएशिया को हल्के में नहीं ले रहे हैं।
2: Playing against a great team, which is Croatia, with a lot of wonderful players, experienced players. And for sure it will be tough, intensive for both sides. But at the end of the day, I do believe it will be a lot of fun and entertainment for everybody. And I hope with the inspiration of my players that we'll be able to express good football, the best football on the day, on the pitch. And if we're able to do that, I'm sure that we'll be close, more close to win, which is the target that we have in our mind to play for win, as always.
3: So जी हाँ, आप जिनको सुन रहे थे वो घाना के कोच थे, लेकिन वो हैं पुर्तगाल से, और पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच भी आज भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। और पुर्तगाल में कौन है ये शायद भारतीय दर्शकों के लिए बताने की जरूरत नहीं। जी हाँ, रोनाल्डो, जिनको देखकर भारतीय लोग के अंदर एक अलग सा ही उत्साह आ जाता है, और इस मैच का आनंद भी भारतीय उसी तरह उठाएंगे जिस तरीके से उन्होंने बाकी मैचों का आनंद उठाया है।
1: जी, ये ग्रुप के का मुकाबला है और उसी समय शुरू होगा ग्रुप के में एक और मुकाबला, DR कांगो बनाम उज्बेकिस्तान। याद दिला दें आपको, उज्बेकिस्तान भी अपना पहला विश्व कप खेल रही है, हालांकि उनके राउंड ऑफ 32 में जाने के जो समीकरण है वो नहीं बन रहे हैं। उज्बेकिस्तान बाहर है तो इसलिए अपनी साख के लिए खेलेगी। दूसरी तरफ DR कांगो की अभी भी उम्मीद बरकरार है। इसके अलावा भी कुछ मुकाबले खेले जाने वाले हैं। सुबह 7:30 बजे अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया ग्रुप जे के एक मुकाबले में आमने सामने होंगी, तो दूसरी तरफ उसी समय शुरू होगा अर्जेंटीना का मुकाबला। एक तरफ रोनाल्डो पर नजर रहेगी तो अर्जेंटीना के मेसी पर भी नजर रहेगी, और जॉर्डन के खिलाफ यह मुकाबला होगा। तो फीफा विश्व कप में पर तो नजर बनी ही रहेगी, लेकिन भारतीय खेल प्रशंसकों की नजरें क्रिकेट पर भी बनी हुई है। फीफा विश्व कप की चर्चा को विराम देते हैं, रुख करेंगे अब क्रिकेट का।
4: Yes, he's round the last defender, under his right foot. It's a goal!
3: तो जी हाँ, बात करते हैं कल खेले गए T20 मैच भारत और आयरलैंड के बीच में, जिसमें भारत को आयरलैंड से 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा।
1: जी, और आयरलैंड की वो टीम जो वैसे तो जायंट किलर्स के रूप में देखी जाती है, क्योंकि हम सबको याद है 2007 के विश्व कप में कैसे उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, 2011 में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, 2015 में वेस्ट इंडीज को हराया था, लेकिन भारत के खिलाफ ये उनकी पहली जीत है। और भारत टू टाइम डिफेंडिंग चैंपियन है जहां तक T20 विश्व कप की बात होती है, और इसलिए आयरलैंड के लिए कल की ये जीत बहुत ज्यादा खास रही है। और आपको ये भी बता दें कि किस तरह सूरत हाल रहा मैच का। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में 30 रन पर 3 विकेटें गवाई, लेकिन उसके बाद बढ़िया रिकवरी करते हुए कप्तान लॉर्कन टकर के अर्धशतक के बदौलत 182 रन उन्होंने बनाए। दूसरी तरफ भारत की पारी लड़खड़ाई, और अभिषेक शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिनके बल्ले से रन निकले, 49 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए, लेकिन बाकी का बल्लेबाजी क्रम उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाया। आयरलैंड के लिए कई हीरो साबित हुए, जिनमें एक हीरो थे जय मुंद्रा, और कमाल की कहानी है, जय मुंद्रा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, अंडर 14 क्रिकेट इन्होंने राजस्थान में खेली, लेकिन किस्मत ले गई इनको आयरलैंड, और कल भारत के खिलाफ डेब्यू करते हुए इन्होंने संजू सैमसन और शिवम दुबे का विकेट लिया और आयरलैंड को जीत दिलाई। खैर, भारतीय टीम की आलोचना इस बात पर हुई कि परिस्थितियों को समझने में और अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में भारतीय टीम नाकाम रही। जब अभिषेक शर्मा से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी।

आई फील विकेट में थोड़ा बहुत तो कुछ था. आई फील जैसे आयरलैंड में बैटिंग की, देयर वाज फ्यू शॉट्स जो एग्जीक्यूट हो रही थी और कई शॉट्स थी जो मुश्किल थी मारनी, तो आई फील उसमें उन्होंने बॉलिंग काफी अच्छी की और एग्जीक्यूट किया प्लान. एंड बाकी बैट्समैन का भी आई थिंक यही था कि जो शॉट्स थोड़ी लिमिटेड शॉट्स थी जो यहाँ पे लग रही थी, बट आई फील दे प्लान रियली वेल.

0: हेलो ग्राम संसार।
1: ग्राम संसार
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: अशोक कुमार शर्मा किताब के खुद प्रंश है।
0: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज नीलम चौधरी को सुनाएंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मंटू शर्मा बोल रहा हूँ सर, गांव से एडा से।
0: मंटू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: नीलम चौधरी की आवाज में सर।
0: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर नीलम चौधरी से ये रागनी। किस्सा रहेगा चंदर किरण का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, सचिव जी सहरसे राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: केशव कुमार को सुनना चाहूंगा, साथ में बनवारी लाल यादव जी गामड़ी वाले, और शमशेर जी द्वारका से, विजय लखेरा मंदिरगढ़ से, राहुल सैनी सहरसे जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: सत्यदेव सागर, ग्राम सरवन्ना, थाना छतारी, जनपद बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर।
0: सागर साहब, आज किस कला

0: कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: केशव कुमार जी की आवाज में कोई रागिनी भजन सुनवा दो सर, तो एक नाम लेना चाहूंगा
0: जी।
1: पत्नी संतोष देवी, बेटा शिवदत्त सागर, सुधीर सागर, अंकित सागर। नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार, महेंद्र भाई आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: केशव कुमार को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: और मेरे साथी आते बात साथी में से पत्ता देवी।
0: हेलो ग्राम संसार,
3: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: एक केशव जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी?
0: जी,
3: जयपाल सिंह अध्यक्ष, जगदीश मोटा बादलपुर, मास्टर ब्रह्म सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार,
4: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं हरि सिंह सैनी, पशुआ नगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, यूपी से बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: केशव कुमार को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: कुछ नाम है जी, देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश, डॉक्टर, पोती पोता, कुछ नीतीश, हेमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छवि, निशा, कंचन और भांजा मेरा गोविंद, मनोज, हरिचंद और संजीव, ज्योति, गीता, पूरे गांव की फरमाइश। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार,
5: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे
5: हैं? बोलो जी, डाना निरसान, जिला भिवानी जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: केशव कुमार को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: ये बच्चों के भी नाम है जी, राजवीर सिंगाड़िया, सतीश सिंगाड़िया जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर केशव कुमार से ये रागनी, खिस्सा रहेगा हीर रांझे का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम राम।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री

0: मदद करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन मोटे अनाज यानी कि इनको आजकल श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, पोषण की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से और साथ ही साथ हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे किसान बहन भाई जैसे जानते ही हैं कि जो मोटे अनाज में जो अनाज आते हैं जिसमें कि बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इनके अलावा श्री अन्न में जई है, कोदो है, कुटकी है, रागी है और समा, ये भी मोटे अनाज में ही आते हैं। अब वो बात आती है कि क्या खास बात है मोटे अनाजों में।
1: बिल्कुल शशि भाई, मोटे अनाज गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा जो बहुत मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप में हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है, तो वहीं अघुलनशील रेशा पाचन तंत्र से मल को इकट्ठा करने और उसकी आसान निकासी में मदद करता है। ये पानी भी खूब सोखता है और व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के बाद प्यास भी खूब लगती है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है।
0: बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज यानी कि श्री अन्न उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन, ग्लूटेन इन अनाजों में नहीं होता, इसीलिए इनसे पाचन तो अच्छा होता ही है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने समझा कि जो मोटे अनाज होते हैं, श्री अन्न होते हैं, पोषण की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से उनका क्या महत्व है। लेकिन मोटे अनाज उपभोक्ताओं तक तभी पहुंचेंगे जब आप इनकी खेती करेंगे, तो ऐसे में बाजरा है, मक्का है, जो मोटे अनाजों में ही आते हैं और आप इनकी खेती करना चाहते हैं, तो इसी क्रम में आपको एक जानकारी सुनवाते हैं जिसका विषय है मक्का और बाजरा मोटे अनाज की खरीफ की बिजाई। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शंकर लाल जाट, मक्का वैज्ञानिक, और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ की फसलों की जब हम बात करते हैं तो किसान भाई उसकी बिजाई, बीज, खेत की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं, चाहे उसमें गर्मी की जुताई हो, चाहे बीज को बाजार से लेना हो और चाहे उर्वरकों का प्रबंधन। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर खेती वर्षा पर आधारित होती है, लेकिन अब सिंचाई के साधन भी कहीं कहीं उपलब्ध हो गए हैं, जिसके कारण कुछ हमारे किसान भाई बहुत सी फसलें अगेती भी लगाने लगे हैं। और जब हम बात खरीफ फसलों की करते हैं तो उसमें विशेष तौर पर आज हम बाजरा है, मक्का की बात करते हैं, जिसको हमारे बहुत से किसान भाई मोटे अनाज भी कहते हैं और ज्यादातर किसान इनको खाने में भी प्रयोग करते हैं और दूसरे उत्पादों में भी इनका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। मक्का और बाजरे की खेती किस तरीके से की जाए जिससे अधिक उत्पादन मिल सके और किसान को लाभकारी खेती सिद्ध हो, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकरलाल जाट, जो कि मक्का विशेषज्ञ हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई मक्का है, बाजरा है, इसकी खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप बताना चाहेंगे जिससे कि हमारे किसान भाई उस पे अमल करके मक्के और बाजरे से अच्छा ही नहीं लाभकारी भी उनके लिए सिद्ध हो।
3: जी बिल्कुल, जो मक्का और बाजरा जैसे आपने कहा कि जो वर्षा आधारित मुख्य फसलों में अपने देश में इस मौसम में आती है, और जो इन फसलों का अगर कोई किसान इसका लाभकारी उत्पादन लेना चाहता है तो इसमें दो चीजें बड़ी मुख्य निकलने बल के आती है, एक तो बुआई का तरीका और दूसरा है उसके अंदर खरपतवार का पूरा अच्छे से प्रबंधन। तो जो शुरू के इसके दोनों फसलों में 30 दिन का खरपतवार का प्रबंधन होता है, उसमें जब बुआई करते ही उसके अंदर जो शाकनाशी हो गया या फिर आपके पास पशु चलित ऐसे इम्प्लीमेंट है या आप उसकी निराई गुड़ाई कर पाते तो अच्छा है। तो शुरू के 30 दिन इनके बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। आप जो इसकी बुआई का तरीका है, हालांकि हम जानते हैं कि सारे किसान बड़े रिसोर्स पुअर हैं, कम रिसोर्सेज हैं,

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन

0: लेकिन जिस क्षेत्र में, जैसे आप अलीगढ़ का क्षेत्र लीजिए,
1: जी
0: आलू बहुत होता है। अब आलू के अंदर तो वो मेड़ बना के बोते हैं और बाजरे को फ्लैट में बोते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको मेड़ बनानी है जो आलू के लिए बना रहे, और फिर उसके ऊपर आप संकर मक्का, हाइब्रिड संकर जो बाजरा है या साधारण बाजरा है, उसका आप लगा के देखिए, आपको 30 से 40% आपको उपज का इजाफा मिलेगा। ऐसे ही मैं मक्का में बात करता हूँ, मक्का में भी ये है, आप मेड़ बना के बुआई करिए। जो पानी ज्यादा बरसता है तो भी उसकी नाली में पड़ा रह जाता है, पानी अगर कम बरसता है तो भी नाली में भरा रह जाता है, तो वो आगे तक चलता है। और जो छोटा पौधा जब होता है तो कभी कभी क्या होता है कि शुरू शुरू में 15-20 दिन लगातार बारिशें होती है तो पौधा दब जाता है, या तो मर जाता है, नहीं मरता है तो भी मरे जैसा होता है, तो उसमें फसल में काफी नुकसान होता है। तो ये आपको जो महत्वपूर्ण काम है, एक तो बुआई का तरीका बड़ा अच्छा करें, दूसरा आप खरपतवार प्रबंधन करें, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अच्छी किस्मों का चयन करें। अच्छी किस्में मतलब जो गुणवत्ता युक्त किस्में हैं और जिनका बीज उपचारित है, तभी आप उसको सबसे अच्छा उपज ले सकते हैं। और क्योंकि ये फसलें दोनों ऐसी हैं जो आप देखिए, बाजरा 70-80 दिन में आ जाता है, 90 दिन में, मैक्सिमम 100 दिन में आ जाता है, ठीक है। ऐसे मक्का भी 80-90 दिन से लेके 110-120 दिन की फसल है, तो कम दिन में आप ये समझिए प्रतिदिन ये फसलें रोज की अगर दिनों का भाग देना तो 2 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो आपको जो शुरू का जो कृषि कार्य है वो काफी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत अच्छे से अगर आप बीज लेंगे, उसको उपचारित करेंगे, अगर जैसे मैं आपको बाजरे की बात करूं कैसे उपचारित करना है, तो आप उसके अंदर जो ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम है उसका 4 प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित करें, या थेराम जो होता है उसका 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित करें। जो बाजरे का बीज है वो आप 3 से 4 किलो ही लेना, ज्यादा बीज नहीं बोना है, क्योंकि इसमें बीज भी छोटा होता है, दूसरे इसमें कल्ले भी फूटते हैं, सभी अपन लोग जानते हैं। तो जब आप 3 से 4 किलो बीज लेते हैं तो बहुत सफिशियंट होता है 1 हेक्टेयर में अच्छी बाजरे की उपज लेने की। ऐसे ही अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का का बीज है वो आप लें, जो सर्टिफाइड किस्म है, अच्छी किस्म है, उनका बीज लें। अगर आप अपने पास खुद बीज पैदा किया है तो बीज उपचारित करना जरूरी है, नहीं तो जो बाजार से ले रहे हैं अमूमन आपका बीज उपचारित आते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने मक्का का जिक्र किया, जैसे आपने प्रमाणित बीज की बात करी, मक्का में एक शंकर मक्का होती है, संकुल मक्का होती है, तो डॉक्टर साहब इसमें क्या अंतर है और कौन सा बीज अच्छा रहता है?
0: देखिए, संकर और संकुल मक्का है, संकुल मक्का के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे संकर मक्का का एक मिश्रण है, एक बड़े लेवल पे देखा जाए, वैसे साइंटिफिक नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के भुट्टे रहते हैं, जैसे उसके अंदर भुट्टे लगना आज से स्टार्ट होंगे तो 10 दिन तक उसके अंदर भुट्टे आते रहेंगे, ठीक है ना, और हरे भुट्टे भी उतने दिन तक चलते हैं, नर मंजरी भी उतने दिन तक चलती है, तो उसमें आपकी परिपक्वता एक समय नहीं होती है, ये संकुल मक्का हो गई। तो आप इसका बीज अगर एक बार आपने खरीद लिया तो 3 बार तक आप बो सकते हैं उसी बीज को, वो सब संकुल मक्का है, उसमें पूसा कंपोजिट 2, पूसा कंपोजिट 3, 4 ऐसे करके आपका विजय है, उसके बाद में हमारा कंपोजिट वैरायटी भी है, ये होगी संकुल किस्में। और संकर किस्में वो होती है, 2 पेरेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो बच्चे होता है उसको संकर कहते हैं, तो उसमें क्या यूनिफॉर्मिटी रहती है, उसमें केवल 2 ही पेरेंट इन्वॉल्व है, संकुल के अंदर बहुत सारे पेरेंट इन्वॉल्व है। और जो उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो उत्पादन क्षमता की जो संकर किस्में हैं उनमें ज्यादा रहती है संकुल किस्मों की बजाय।
1: डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई मक्का बरसात में लगाते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई मक्का पहले भी लगाते हैं, तो क्या एक ही बीज का प्रयोग करते हैं या इसकी अलग अलग किस्में हैं?
0: देखिए, हर समय जब भी आप बीज का चयन करते हैं तो अमूमन वैसे तो यह रहता है कि आप बीज अगर सही है तो आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं, यह आपके फसल चक्र पर डिपेंड करता है। जैसे आज आपने लगाया और आपको खेत चाहिए 100 दिन बाद खाली, तो आप वैसी किस्म चयन करें जो 100 दिन बाद आपका खेत खाली कर दें।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि कोई अमेरिकन मक्का बोलता है, कोई मीठी मक्का बोलता है, और कुछ ऐसे हैं कि हमारे कुछ किसान भाई बेबी कॉर्न के लिए मक्का उगाते हैं, तो ये तीनों की किस्में अलग अलग होती हैं डॉक्टर साहब?
0: देखिए, जो अमेरिकन भुट्टा या स्वीट कॉर्न बोलते हैं वो एक चीज है, उसकी किस्म सबसे अलग है। जो मक्का की स्पीसीज होती है जिया मेज करके बोलते हैं, और आगे अगर उसके सेकर आटा लगाते थे इसका मतलब मीठी मक्का है, तो उसका दाना बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, जब बुआई करते हैं तो बहुत सिकुड़ा हुआ दाना होता है
1: जी।
0: और उसकी जो बीज दर है वो आपकी 7 से 8 किलो 1 हेक्टेयर की होती है, साधारण मक्का 20 किलो 1 हेक्टेयर की होती है। तो मिट्टी मक्का अमेरिकन भुट्टा एक ही है लेकिन साधारण मक्का से डिफरेंट है। बेबी कॉर्न क्या करते हैं, साधारण मक्का ही है लेकिन उसमें क्या करते हैं कि जो भुट्टा होता है वो छोटी अवस्था में होता है, 2 से 3 दिन का होता है तभी तोड़ लेते हैं, तो उसकी जो अंदर की जो भुट्टा होता है, गुल्ली जिसको कहते हैं
1: जी,
0: वो गुल्ली बड़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है, उसके अंदर

0: कैल्शियम ज्यादा होता है उसके अंदर, आपका राइबोफ्लेविन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से। और सबसे अच्छा है वो हाइजेनिक है, इसमें कभी पेस्टिसाइड का लोड नहीं होता है। अगर लोड कोई छोटा मोटा इसने डाला भी है तो इसके ऊपर 6 से 7 पत्तियां लगी होती
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: उन पत्तियों के अंदर लिपटा रहता है। तो ये बहुत ही मतलब
1: सुरक्षित
0: हेल्दी, सुरक्षित और ऐसे करके सेफ वाला एक स्नैक बनता जा रहा है। इसको आप ऑर्गेनिकली भी पैदा कर सकते हैं अपने घर में। अगर कोई किसान भाई या कोई चाहे कि मैं पैदा करना चाहता हूँ, वो 4 मक्का के दाने लाए, उनको लगाए, और जब भुट्टा आने लगे उस समय उस भुट्टे को 3-4 दिन में तोड़, एक भुट्टा तोड़ेंगे नीचे या ऊपर फिर भुट्टा आएगा। ऐसे 3 भुट्टे एक ही पौधे पे आते हैं। जैसे हम भिंडी की सब्जी तोड़ते हैं ना,
1: जी
0: बैंगन की तोड़ते हैं या भिंडी को तोड़ते हैं, भिंडी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक भिंडी तोड़ी उसके ऊपर फिर भिंडी आ जाएगी, ऐसे ही इसके अंदर भुट्टा आता है, वो बेबी कॉर्न है।
1: हम जैसे बाजरे की बात करते हैं, डॉक्टर साहब बाजरा पहले होता था कि वो उसको खाते हैं और खाने हुए उसका आटा खराब होता है। क्या नई किस्में कुछ ऐसी निकाली जा रहे हैं जिसमें पौष्टिक गुण भी हों और उसका आटा भी ज्यादा दिन तक रखा जा सके?
0: देखिए, जो बाजरा है उसके अंदर नई किस्में जितनी भी आ रही है अपने देश में पिछले 5-7 साल में, उनके अंदर हाई आयरन और हाई जिंक है।
1: जी
0: जिंक है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे हम कोविड के टाइम में देखा तो जिंक की टेबलेट काफी लोगों को दी गई, तो इम्यूनिटी बूस्टर है जिंक की, और जो ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो आजकल जितनी भी वेरायटी हमारी रिलीज हो रही है, जिसमें अगर आप देखें राजस्थान पर, गुजरात और हरियाणा के लिए KBH 108 है, GHB 558 है, फिर एक बहुत ब्लॉकबस्टर वेरायटी MPMH 17 वेरायटी हाइब्रिड, सबके अंदर हाई आयरन हाई जिंक और बायोफोर्टिफाइड है। जितने भी हाइब्रिड रिलीज हो रहे हैं अभी बायोफोर्टिफाइड है। और अगर कोई चाहे जैसे कंपोजिट या संकुल वेरायटी लेना चाहे, जैसे आप PC 443 है, उसके बाद PC 383 ले सकते हैं। अगर कोई खरीफ के अन्य रीजनों में जैसे पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बुआई करना चाहता है, तो उसमें भी एक MPMS 17, कावेरी सुपर बोस बायो 448 है, MP 78 72 है, और संकुल किस्म में आपकी राज 171 है, PCB 164 है। संकुल किस्म में बाजरे में या तो कुछ थोड़ी बहुत कोई खाने के लिए या पशु के चारे के लिए ज्यादा उगाई जाती है। जो बाजरा है बेसिकली जो आप कह रहे हैं, तो इनके अंदर बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास हो रहा है। लेकिन जो आटा खराब हो रहा है
1: जी
0: तो उसमें क्या रहता है, रेंसिडिटी रहती है, वो रेंसिडिटी की वजह से ही खराब होता है। तो उसमें थोड़ा सा एक प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन का कार्य जो पूसा संस्थान कर रहा है, वो उससे नई नई रेसिपी बना रहा है, उसके अंदर आपको रेंसिडिटी कम करने के लिए उसे प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी रेंसिडिटी कम हुई है उसको, जैसे हम 5 दिन रख पा रहे थे तो अभी 20 दिन रख पा रहे हैं, तो वो प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग के ऊपर है। ऐसी कोई किस्म नहीं है जिसके अंदर बाजरे का आटा खराब नहीं होता। बाजरे का आटा खराब सब में होता है, अगर लेकिन वो प्रोसेसिंग आप ठीक कर देते हो तो आपका ठीक रह सकता है।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी भी किस्में निकाली गई हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता रहता है, कभी एकदम बारिश हो जाती है और कभी ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो इस जलवायु को भी सहन कर सके किस्में निकाली गई कुछ?
0: देखिए, अभी क्या होता है, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करें तो 1 साल में नहीं होता है, 2 साल में नहीं होता है, 5 साल में धीरे धीरे धीरे धीरे छोटा छोटा होता है। तो जब भी हम कोई किस्म को ब्रीड करते हैं तो उस किस्म को जितने भी उसकी प्रोजिनी है, जैसे 1000 प्रोजिनी लगाई हमने, उनके बच्चे लगाए, 1000 में से अगर 4 बच्चे ठीक कर रहे हैं, दूसरे साल भी ठीक कर रहे हैं, तीसरे साल भी ठीक कर रहे हैं, तब जाके उनको हम लोग कहते हैं कि ये किस्म अच्छी है और किसानों को दी जाएगी। तो वो जलवायु प्रतिरोधन क्षमता हम लोग पहले से डेवलप करते हैं। दोनों जो हमारी फसलें हैं उनके अंदर ये इनग्रेंड है, अगर नहीं रहेगा तो। आप देखिए, पिछले काफी सालों से हमारा मक्का और बाजरे का उत्पादन काफी बड़ा है, स्पेशली मक्का का तो बड़ा है लेकिन बाजरे का भी काफी बड़ा है। तो ये इसलिए बढ़ पा रहा है कि हम लोगों ने एक प्राकृतिक वेरिएशन है उसमें उनके बच्चों में से वो निकाल के ला रहे हैं, और वैसी किस्मों को हम लेके आ रहे हैं जो आपकी जलवायु के प्रतिरोधन या सहिष्णुता होती है। दूसरा यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बारिश बहुत कम होती है, तो वहां एक छोटी ड्यूरेशन की वेरायटी HHB 67 मतलब वो 70 दिन की फसल है
1: जी।
0: और सबसे ब्लॉकबस्टर वैरायटी रही ये, हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से डेवलप हुई, अभी HHB 67+ भी आ गई है उसकी। तो ये चीज उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में आपको रहना है तो उस हिसाब से चीज आनी चाहिए। और ये दोनों फसलें ऐसी जगह हैं, ये उसी जगह होती है, बाजरा वहां होगा जब 500 mm से कम रेनफॉल होगी, मक्का वहां होगा जब 500 से 700 mm रेनफॉल होगी, दोनों का एरिया अलग है।
1: तो डॉक्टर साहब, हम तो ये चाहेंगे कि आप किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे जो धान की फसल लगाते हैं उसको छोड़ के मक्का और बाजरा की लगाएं जिससे पानी की भी बचत हो।
0: देखिए, हम किसानों को यही सलाह देंगे कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक संभावना है, अगर आप धीरे धीरे इनको करना स्टार्ट करेंगे, मक्का और बाजरा को, जहां पे मक्का

0: सकते हैं, वहाँ मक्का करिए, ज्यादा रेतीली जमीन है वहाँ पे आप बाजरा करिए। और वहाँ पे जैसे जैसे आप पानी को बचाएंगे, आप देखिए 3 से लेकर 5 इरीगेशन लगती है मक्का और बाजरे में, और आप चावल में लेंगे तो आपकी 25 से कम कहीं नहीं लगती। तो आप देखिए जो आप पानी नीचे से डाल के ऊपर लेके आ रहे हो, और उसके अंदर आप चावल के अंदर भी काफी पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड आपके नीचे जा रहे हैं। किसान भाई ये नहीं देख रहा है कि मेरे पास जो पैदा हो रहा है, अब नीचे का जो पानी है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है पेस्टिसाइड से, उसको जरूर आप एक अंदाज में देख करके देखें। इन फसलों की तरफ आप जाएंगे तो धीरे धीरे मार्केट डेवलप होगा, मार्केट क्योंकि इन दोनों फसलों का काफी है, ये जैसे बायो फोर्टिफाइड हो गया, मिलेट का भी अपना है पूरा जोर है तो उससे है, और मक्का एक औद्योगिक फसल है, 95% से ज्यादा मक्का उद्योगों में प्रयोग होती है, बायोइथेनॉल के लिए भी प्रयोग बढ़ रहा है। तो अगर इससे छोड़ के निश्चित रूप से वहां जाते हैं तो आपका सेहत, मिट्टी का सेहत और तीसरा पर्यावरण, तीनों की सुरक्षा होगी, और चौथा जो मैंने आपको बताया जो आपकी मिट्टी के अंदर जाके पानी प्रदूषित हो रहा है जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी फैल रही है, उससे भी हमें निजात मिल सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफी विस्तार से बताया किस तरीके से मक्का और बाजरे की खेती कर सकते हैं, अगर इसमें भी तकनीक का किसान भाई प्रयोग करें, जैसे सिंचाई के नए नए साधन आए हैं, उसमें बूंद बूंद सिंचाई है, आपकी फवारी सिंचाई है, उसके द्वारा भी अगर करते हैं उसमें भी पानी की बचत होगी और आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और लागत में भी कमी आएगी। डॉक्टर शंकरलाल जाट जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे बातचीत, विषय था मक्का और बाजरा, मोटे अनाज की खरीफ की बिजाई। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शंकरलाल जाट और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक रागनी, कलाकार हैं सत्येंद्र यादव।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये रागिनी, और इस रागिनी के कलाकार थे सत्येंद्र यादव।
1: नीलम बहन, आज का जो समय है वो इंटरनेट डिजिटल मीडिया का समय है, और कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करते हुए घर बैठे ही कोई भी जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, अगर वो अपने फोन का इंटरनेट का सदुपयोग करता है तो। और देखिए, आजकल तो हर क्षेत्र में तरह तरह के ऐप आ चुके हैं, हर विभाग के अपने अपने ऐप हैं और उनका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो कैसे पीछे छूट सकता है। तो हमारे जो किसान बहन भाइयों को घर बैठे ही जरूरी जानकारियां हैं वो मिल जाएं, इसके लिए किसान सुविधा ऐप भी आ चुका है और हमारे जो किसान बहन भाई हैं इसका उपयोग भी कर रहे हैं। किसान सुविधा ऐप कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है, जो आप किसान भाइयों को मौसम, मंडी के भाव, खाद की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं की जानकारी, कृषि सलाह, इस तरह की 22 से अधिक आवश्यक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करता है।
0: बिल्कुल शशि भाई, किसान सुविधा ऐप की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये ऐप मौसम की जानकारी, वर्तमान तापमान, बारिश और नमी के साथ साथ अगले 5 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान बताता है, और इस ऐप के माध्यम से देश भर की मंडियों के भाव और फसलों की दैनिक और नवीनतम मूल्य की जानकारी मिलती है, और इस ऐप के माध्यम से स्थानीय डीलरों के पास खाद की उपलब्धता और कीमतों की जानकारी आसानी से मिल जाती है, और साथ ही इस ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी किसान भाइयों को आसानी से मिल जाती है, और इसके अलावा किसानों के सवालों का समाधान और किसान कॉल सेंटर से सीधे जुड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: बिल्कुल, तो नीलम है, ये तो जानकारी रही किसान सुविधा ऐप की, और देखिए अब समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति, सभी किसान बहन भाइयों को राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजाइए कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की गाई ये गज़ल, और इसके साथ ही हमारा आज का गज़ल और कव्वाली का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस शिक्षा सत्र के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। जहांगीरपुरी से 4 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष ISF वर्ल्ड स्कूल

0: रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 3 दिन के त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में जो कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों को 1 महीने के भीतर सील भी किया जा सकता है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की संख्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा और संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी छात्रों से अपील की है कि यदि किसी कोचिंग संस्थान में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी संदेश, ईमेल या फोन के माध्यम से प्रशासन को दें।
1: 1 महीने का टाइम है। दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 900 या 1000, नंबर से मतलब नहीं है, मतलब है बच्चों की जान से, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके पास फायर ऑडिट नहीं है, जिनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, जिनकी बिल्डिंग में सेफ्टी और सिक्योरिटी के सभी मेजर्स नहीं है, उनको सील कर दिया जाएगा यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे।
0: दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आज 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा कुछ नए मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है। पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और वरिष्ठ नेतृत्व की सहमति से संबंधित जिला अध्यक्षों ने अपने अपने जिलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि नई सूची में महिला सशक्तिकरण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता के अनुरूप 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित टेक फोर फ्यूचर कार्यक्रम के समापन समारोह में आज सीएम श्री स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने नवाचार आधारित प्रोजेक्ट और मॉडल प्रस्तुत किए। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य रोजमर्रा की समस्याओं का तकनीक के जरिए समाधान देना था। समारोह में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, नए विचार और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता दिल्ली के युवाओं की प्रतिभा को दिखाती है। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूलों में रोबोटिक्स लैब और स्मार्ट क्लासरूम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
2: हम आपको रोबोटिक लैब्स और स्मार्ट क्लासेस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप तकनीक के उपभोक्ता नहीं, तकनीक के निर्माता बने। आपकी जिज्ञासा को कभी मरने मत देना, क्योंकि भविष्य उन्हीं से है जो आज की सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविन्द्र इंद्रा सिंह कल चांदपुर खुर्द से चांदपुर कला लिंक रोड और माजरा रोड में उच्च वोल्टेज तारों के स्थानांतरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बवाना विधानसभा में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक के कुलपति के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट पर दी गई जानकारी में श्री संधू ने बताया कि बैठक में नई तकनीकों के बढ़ते असर और उनका लोगों की समस्याओं के समाधान में बेहतर इस्तेमाल करने पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज रोहतक के भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रबंधन के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 17वें बैच के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री संधू ने कहा कि आज के समय में प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम को बेहतर तरीके से करना या संसाधनों का सही उपयोग करना नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया का पहला चरण शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्वविद्यालय ने बताया कि सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा देने वाले छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं, वे सामान्य सीट आवंटन प्रणाली यानी सीएसएएस 2026 पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय के 67 कॉलेजों में 73 स्नातक पाठ्यक्रम

0: कार्यक्रमों और 100 से अधिक बीए कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने कहा है कि पंजीकरण केवल सीयूईटी यूजी 2026 की आवेदन संख्या के माध्यम से ही किया जा सकेगा। सौम्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनके पास से प्रतिबंधित नशीले दवाओं की 1300 गोलियां बरामद हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 22 लाख रुपए से अधिक नकद, करीब 35 लाख रुपए के सोने के गहने, 6,20,000 रुपए के चांदी के गहने और एक स्कूटी भी जब्त की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और ऐसे संगठित गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गाजियाबाद में जमीन और अचल संपत्ति धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 4 स्थानों पर छानबीन की है। यह अभियान सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों के ठिकानों पर गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत चलाया गया। छापों के दौरान एजेंसी ने धन के लेन देन, संपत्तियों, कंपनियों के वित्तीय विवरणों और कई अन्य संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य और औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज उत्तर प्रदेश के जेवर में अंबर और एसेंट के सर्किट विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि आज दुनिया विश्वसनीय, लोकतांत्रिक और सक्षम विनिर्माण भागीदारी की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज उस भरोसे का केंद्र बनकर उभरा है। श्री वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी नीतियां, कुशल युवा कार्यबल और तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे के कारण भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का स्वाभाविक केंद्र बन रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विभागों के मुख्यालयों और जिला स्तर के कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मानव संसाधन विकास की समीक्षा करते हुए आज मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक माह अपने कार्यों का विवरण अनिवार्य रूप से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर अपना विवरण पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। एमएसएमई दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े सभी उद्यमियों को शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा।

0: सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी में बाल संस्कार शिविर 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि शिविर ने बच्चों को केवल सुखद स्मृतियां ही नहीं दी, बल्कि उन्हें ऐसे संस्कार, अनुशासन और संस्कृति मूल्यों से भी समृद्ध किया है जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करेंगे। श्री गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष 10,000 पौधे लगाने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने टैंकर आधारित जलापूर्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 82,117 से अधिक अतिरिक्त टैंकर जलापूर्ति दर्ज की है। जल बोर्ड ने बताया कि पिछले वर्ष मई में जहां 1,06,501 टैंकर जलापूर्ति दर्ज की गई थी, वहीं इस वर्ष मई में यह संख्या बढ़कर 1,88,618 टैंकर जलापूर्ति तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
1: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में हर वर्ष लगभग 1,78,000 से 1,87,000 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है। इसमें करीब 23,000 मीट्रिक टन जीआई।
0: राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बीच कल समझौता हुआ। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। श्री सूद ने कहा कि इन दोनों प्रतियोगिताओं में 50 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
2: फेडरेशन के अंतर्गत जहां बैडमिंटन और रेसलिंग के इंटरनेशनल खेल होंगे जिसमें
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में हर वर्ष लगभग 1,78,000 से 1,87,000 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है। इसमें करीब 23,000 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला क्वीन अनानास भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
0: राष्ट्रीय राजधानी के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आज 3 दिन के त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। जहांगीरपुरी से 4 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए पेश है मुशायरा।
4: सभी सामेईन की खिदमत में नसरीन बेगम का पुरखलूस आदाब। पेश है मुशायरा। मुशायरा उर्दू अदब की एक अहम और दिलकश रिवायत है जो सदियों से चली आ रही है। आज भी इसकी महफिलें बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मुनक़िद की जाती हैं। उर्दू ज़बान की शीरनी और शायरी का हुस्न आज भी लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करता है। मुशायरों में मोहब्बत, इंसानियत, कौमी यकजहती और समाजी मसाइल पर भी रोशनी डाली जाती है। अलावा बरी मुशायरा न सिर्फ

0: साहिब दिल्ली से ही तशरीफ फरमा हैं और मैं अथर शकील नगीनवी नगीना से हाजिर हूं। इस प्रोग्राम की इब्तिदा करने के लिए एक ऐसे मोतबर और नौजवान लबो लहजे के शायर से दरख्वास्त करते हैं जिसका ताल्लुक मेरठ से है, लेकिन उसने अपनी आवाज, अपने कलाम, अपने लहजे से अपने आप को उर्दू दुनिया में बहुत जल्द मनवाया है। मैं दरख्वास्त करता हूं मोहतरम जनाब वाजिद मेरठी से कि वो अपने कलाम से नवाजें। इस्तकबाल कीजिए वाजिद मेरठी माइक पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। चंद शेरों से मैं अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ।
0: अता करें।
1: मतलब कुछ यूं है कि रिश्तों ने जब अपना कहना छोड़ दिया,
0: रिश्तों ने जब अपना कहना छोड़ दिया,
1: रिश्तों ने जब अपना कहना छोड़ दिया, हमने उनका दर्द भी सहना छोड़ दिया। रिश्तों ने जब अपना कहना छोड़ दिया, हमने उनका दर्द भी सहना छोड़ दिया। शेर हाजिर करता हूँ कि किसको किसकी आज पड़ी है दुनिया में, किसको किसकी आज पड़ी है दुनिया में, अपनों ने भी अपना कहना छोड़ दिया।
0: अपनों ने भी अपना कहना,
1: किसको किसकी आज पड़ी है दुनिया में, अपनों ने भी अपना कहना छोड़ दिया। और शेर इसमें है कि अपनों ने भी अपना कहना छोड़ दिया, जीने के अंदाज भी बदले हैं वाजिद, जीने के अंदाज भी बदले हैं वाजिद, अब हमने जज्बात में बहना छोड़ दिया।
0: अच्छा है, वाह वाह।
1: जीने के अंदाज भी बदले हैं वाजिद,
0: भी बदले हैं वाजिद,
1: अब हमने जज्बात में बहना छोड़ दिया। और एक गजल के चंद शेर और समाप्त कर लीजिए कि मतलब है कि हुआ कम न जिसका असर जिंदगी भर,
0: हुआ कम न जिसका,
1: हुआ कम न जिसका असर जिंदगी भर, नजर में रही वो नजर जिंदगी भर।
2: क्या
1: हुआ कम न जिसका असर जिंदगी भर,
2: नजर में रही,
1: नजर में रही वो नजर जिंदगी भर। और शेर है कि हम उनके तसव्वुर में खोए हुए हैं,
0: हम उनके तसव्वुर में खोए,
1: हम उनके तसव्वुर में खोए हुए हैं, ना हो उनको शायद खबर जिंदगी भर।
0: क्या कहना है, वाह।
1: हम उनके, बहुत शुक्रिया, कि हम उनके तसव्वुर में खोए हुए हैं,
0: हम उनके तसव्वुर में खोए,
1: ना हो उनको शायद खबर जिंदगी भर।
0: क्या कहना है।
1: शेर इसमें बतौर खास शेर हाजिर करता हूँ कि कहें बेहुनर हम उसे किस हुनर से,
0: कहें बेहुनर हम,
1: कहें बेहुनर हम उसे किस हुनर से, ना आया हमें ये हुनर जिंदगी भर। कहें बेहुनर हम उसे किस हुनर से, ना आया हमें ये हुनर जिंदगी भर, ना आया हमें ये हुनर जिंदगी भर। वो मेरी उड़ानों से खाइफ था शायद,
0: वो मेरी उड़ानों से खाइफ था शायद,
1: वो मेरी उड़ानों से खाइफ था शायद, कतरता रहा मेरे पर जिंदगी भर। वो मेरी उड़ानों से खाइफ था शायद,
0: कतरता रहा,
1: कतरता रहा मेरे पर जिंदगी भर। मकता कुछ यूं है कि कतरता रहा मेरे पर जिंदगी भर। हाजिर करता हूं कि ना उतरेगा एहसान एक पल का वाजिद,
0: वाह वाह,
1: ना उतरेगा एहसान एक पल का वाजिद, करें माँ की खिदमत अगर जिंदगी भर।
0: क्या कहना है, इबादत हो रही है।
1: और दो तीन शेर और हाजिर करता हूँ कि मतलब कुछ यूं है कि आदमी से जल रहा है आदमी,
0: आदमी से जल रहा है
1: आदमी, से आदमी से जल रहा है आदमी, अंदर अंदर गल रहा है आदमी,
0: अंदर अंदर गल रहा है
1: आदमी, से जल रहा है आदमी, अंदर अंदर गल रहा है आदमी। और शेर बतौर खास के मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह में,
0: मुश्किलें ही मुश्किलें हैं,
1: मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह में, फिर भी लेकिन चल रहा है आदमी। मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह में, फिर भी लेकिन चल रहा है आदमी, फिर भी लेकिन चल रहा है आदमी। और मखता है कि आदमी को खुद से वाजिद क्या है बैर,
0: आदमी
1: को खुद से वाजिद क्या है बैर, एक घुटन में ढल रहा है आदमी। आदमी को, बहुत शुक्रिया, कि आदमी को खुद से वाजिद क्या है बैर, एक घुटन में ढल रहा है आदमी। और चंद शेर तरन्नुम से पेश करके फिर जहमत तमाम
0: अता करें।
1: मतलब बतौर खास

0: कि तुम राय मत लेना,
1: वाह,
0: बहुत दौलत कमाना तुम, तरक्की खूब करना तुम,
1: बहुत दौलत कमाना तुम, तरक्की खूब करना तुम,
0: बहुत दौलत कमाना तुम, तरक्की खूब करना तुम, किसी मजबूर की लेकिन कभी भी हाय मत लेना।
1: वाह वाह, बेशक,
0: किसी मजबूर की लेकिन कभी भी हाय मत लेना, किसी के फन पे या किरदार पर जब राय देनी हो।

0: देना चाहता हूँ।
1: अता करें, अता।
0: नज्म का उन्वान है एतराफ।
1: एतराफ।
0: मैं सुबह होते ही हर रोज ये बदन अपना।
1: मैं सुबह होते ही हर रोज ये बदन अपना।
0: मैं सुबह होते ही हर रोज ये बदन अपना दहकती काम की भट्टी में झोंक देता हूँ।
1: वाह
2: वाह।
0: मैं सुबह होते ही हर रोज ये बदन अपना दहकती काम की भट्टी में झोंक देता हूँ। थपेड़े गर्म हवाओं के तन पे सहता हूँ, वो सर्दी सहता हूँ जिसमें के खून जम जाए।
1: वाह
2: बहुत अच्छे।
0: मैं सुबह होते ही हर रोज ये बदन अपना दहकती काम की भट्टी में झोंक देता हूँ। थपेड़े गर्म हवाओं के तन पे सहता हूँ, वो सर्दी सहता हूँ जिसमें के खून जम जाए। हुलाक आंधी और बारिश मगर मैं रुकता नहीं। हुलाक आंधी और बारिश मगर मैं रुकता नहीं। तमाम दिन की मशक्कत का बस ये मकसद है कि काश थक के कभी इस तरह की नींद आए। तमाम दिन की मशक्कत का बस ये मकसद है कि काश थक के कभी इस तरह की नींद आए। जो पीछा छोड़ दे माजी की तल्ख परछाई, जो पीछा छोड़ दे आंखें वो तंज करती हुई। तमाम दिन की मशक्कत का बस ये मकसद है कि काश थक के कभी इस तरह की नींद आए। कि काश थक के कभी इस तरह की नींद आए, जो पीछा छोड़ दे माजी की तल्ख परछाई, जो पीछा छोड़ दे आंखें वो तंज करती हुई, जो पीछा छोड़ दे कारे बुजदली मेरा, कि जब किसी की वफाओं को गिरवी रखकर मैं तमाम आरजी खुशियां खरीद लाया था।
1: वाह वाह
2: बहुत अच्छे।
0: जो पीछा छोड़ दे आंखें वो तंज करती हुई, जो पीछा छोड़ दे एक कारे बुजदली मेरा, कि जब किसी की वफाओं को गिरवी रखकर मैं तमाम आरजी खुशियां खरीद लाया था। ये बदनसीबी है मासूम हाय है उसकी कि इस जहान की हर एक शय मयसर है। ये बदनसीबी है मासूम हाय है उसकी कि इस जहान की हर एक शय मयसर है। बस एक सच्ची मोहब्बत को मैं तरसता हूँ।
1: वाह बहुत अच्छे।
0: बस एक सच्ची मोहब्बत को
1: बहुत
0: मैं तरसता हूँ।
1: क्या कहने आदिल रशीद साहब?
3: मेरी नजर में बड़ा कलाम वो होता है जिसको सुनने के बाद बगैर किसी कोशिश के वो हाफ्ज में महफूज हो जाए। ऑल इंडिया रेडियो की इस नशिस्त में हमारे दरमियान एक ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर मौजूद हैं जिनका कलाम सुनने के बाद बगैर किसी कोशिश के हाफ्ज में महफूज हो जाता है। वो बेहतरीन और मुमताज़ गज़ल को शायर होने के साथ साथ बेहतरीन नाज़िम मुशायरा भी हैं। मैं उनको इन चार मिसरों के हवाले से उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो भी आज की इस नशिस्त में अपना कलाम पेश करें कि वो मुफक्किर भी है, अदीब भी है। वो मुफक्किर भी है, अदीब भी है और शायर भी है, खतीब भी है। उसकी बातों में है बला का रस, वो सरापा जबान नकीब भी है। यानी मेरी मुराद है आज की इस शेरी महफिल के शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब अथर शकील साहब, जो नगीना से तशरीफ़ लाए हैं। कई शेरी मजमुओं के तख्लीकार भी हैं कि बराए करम वो भी अपना कलाम पेश करें।
1: शुक्रिया डॉक्टर फुरकान साहब। एक मतला और दो चार शेर मुलाहजा फरमाएं। अर्ज करता हूँ कि कहीं शराफत कहीं शरारत, कहीं मुसर्रत कहीं उदासी। कहीं शराफत कहीं शरारत, कहीं मुसर्रत कहीं उदासी। वो चांद चेहरा वो चंद यादें, लिए है दिल में मकी उदासी। वो चांद चेहरा वो चंद यादें, लिए है दिल में मकी उदासी। और ये शेर भी देखें कि कभी जो उस माह रूह के रुख पर दिखाई दी है तो ये भी देखा। कभी जो उस माह रूह के रुख पर दिखाई दी है तो ये भी देखा। हर अहले दिल ये पुकार उठा, नहीं उदासी नहीं उदासी। कभी जो उस माहरू के रुख पर दिखाई दी है तो ये भी देखा। हर अहले दिल ये पुकार उठा, नहीं उदासी नहीं उदासी। तेरी निगाहों की शोखियों ने उतारे चेहरों से सबके चेहरे। तेरी निगाहों की शोखियों ने उतारे चेहरों से सबके चेहरे। जो तूने देखा है हंस के मुझको, लगी है हर एक जबी उदासी। जो तूने देखा है हंस के मुझको, लगी है हर एक जबी उदासी। सदाएं गूंजी हैं हर तरफ ही, ये क्या सितम है गजब है उसका। सदाएं गूंजी हैं हर तरफ ही, ये क्या सितम है गजब है उसका। गुलाब चेहरा गजाल आंखें और उस पे बिखरी हंसी उदासी।
0: हाँ, हाँ, क्या कहने।
1: सदाएं गूंजी हैं हर तरफ ही, ये क्या सितम है गजब है उसका। गुलाब चेहरा गजाल आंखें और उस पे बिखरी हंसी उदासी। मैं साथ उसके یہ چند لمحے

0: जरा सा हंस लूं, जरा सा रो लूं,
1: वाह,
0: मैं साथ उसके ये चंद लम्हे, जरा सा हंस लूं, जरा सा रो लूं, हमेशा फिर मैं तेरा रहूंगा, तू कर ले मेरा यकीन उदासी।
2: वाह वाह,
0: जरा सा उस,
2: क्या लहजा है, वाह वाह वाह,
0: मैं साथ उसके ये चंद, शुक्रिया, मैं साथ उसके ये चंद लम्हे, जरा सा हंस लूं, जरा सा रो लूं, हमेशा फिर मैं तेरा रहूंगा, तू कर ले मेरा यकीन उदासी। और ये शेर भी देख लीजिए कि जहां भी पाया मुझे अकेला, करीब आई मेरे यकायक, जहां भी पाया मुझे अकेला, करीब आई मेरे अचानक, नहीं रही कैद होके जाना, कहीं ये खलवत नशी उदासी, नहीं रही कैद होके जाना, कहीं ये खलवत नशी उदासी। और ये मक्ता भी मुलाजा फरमा लें कि सदाएं सजाए फिरता है अपने रुख पर, बगैर तेरे भी जो तबस्सुम, सजाए फिरता है, सजाए फिरता है अपने रुख पर, बगैर तेरे भी जो तबस्सुम, तुझे खबर क्या कि दिल में अथर शकील के है मकी उदासी, तुझे खबर क्या कि दिल में अथर शकील के है मकी उदासी। शुक्रिया,
1: बहुत खूबसूरत।
0: दो तीन शेर और मुलाजा फरमा लें।
2: जी जी,
0: तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ।
2: जी जी,
0: ये हवा रोज ही छू कर तेरे गेसू आए,
2: ये हवा रोज ही छू

0: आए,
1: वाह वाह वाह,
0: रौनकें सब तेरे जाने से हुई है काफूर,
1: वाह।

0: श्रोताओं, हमारे भी जहन में, नजर में, प्रशंसकों में अगर कोई है तो वो है सिर्फ तुम। देखिए, हिंदी फिल्मों ने हमें कई खूबसूरत गीत दिए और कई गीत उन फिल्मों की पहचान भी बने। आज फिल्म संगीत में हम आपको इसी तरह की चर्चित फिल्मों के टाइटल गीत सुनवा रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं चांदनी फिल्म का ये खूबसूरत गीत। आवाज है श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत शिवहरी का।
1: चांदनी

श्रोताओं, चांदनी फिल्म से लिया गीत अभी आप सुन रहे थे। और निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसी सदाबहार फिल्में होती हैं जो हर वक्त हर मौसम हमें गुनगुनाने पर, हमें झूमने पर मजबूर भी कर देती हैं। और इनके जो गीत होते हैं उनसे हमारी कोई ना कोई यादें जरूर जुड़ी होती हैं। ऐसा ही ये फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं तुम बिन फिल्म से लिया गीत। आवाज है चित्रा की।

0: श्रोताओं, तुम्बिन फिल्म से लिया गीत अभी आपको सुनवाया और इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
3: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
4: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह

0: ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृह मंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है।

0: अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and

0: Heavy rainfall over Assam, Meghalaya, sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Vidarbha, Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. In US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan have reached the semifinals at the Titan Gym in the California State University. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight games 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. In men's singles, Srikanth defeated Chinese Taipei's Liao Shuo Fu 21-9, 12-21, 21-8 to stay on course for a possible All-India final. Ronak Chauhan also advanced, beating Israel's Misha Zilberman 23-21, 21-11. India have reached the quarterfinals of the Badminton Asia Junior Mixed Team Championships with a convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match in Yatsushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durga Aisha Kandrapu and Kirti Manchala gave India a strong start by defeating Alyssa Kuleshova and Diana Naminova 11-5. Puneet Suresh and Deepthi Raj Aditi then edged past Mustafa Malikzan and Alyssa Kuleshova 11-10 to extend India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably sealed the tie. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in the US. Both matches are scheduled to begin at 2:30 a.m. IST. Earlier, Spain booked their place in the knockout stage with a hard-fought 1-0 victory over Uruguay. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौमे आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेस, दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द-बुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सेहवाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 रोजा दौरे पर आज दोपहर विक्टोरिया पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जना मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकतदार और एक करीबी दोस्त है। जना मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर हैं जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में इश्तराक में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए और वहां पौधा लगाने की तकरीब में शामिल हुए।

0: तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने सेशल्स के सदर की मौजूदगी में कोकोडी मेयर का पौधा लगाया। वजारत खारजा के मुताबिक पौधा लगाने की यह तकरीब एक पेड़ माँ के नाम पहल का एक हिस्सा थी और इससे पायदारी और माहौलियात की खातिर भारत सेशल्स के दरमियान मुश्तरका अज़्म की अक्कासी होती है। वो बोटानिकल गार्डन में जाइंट टॉर्टोइज एनक्लोजर भी गए। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वहां आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ने दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा एक मुतहरिक पुल का काम किया है, इससे अवाम के दरमियान राबते मुस्तहकम हुए हैं। खैर सगाली के खसूसी कदम के तहत वजीर आजम मोदी ने सेशल्स के सदर को भारत में तैयार करदा गश्त के लिए तेज रफ्तार बहरी जहाज सुपुर्द किया। उन्होंने उन्हें 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी गाड़ियां और 5 लेजर रेडियल कश्तियां भी सौंपी जो सेशल्स की तरक्की और सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगी। वजीर आजम मोदी सेशल्स के तारीखी यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी होंगे। वो सेशल्स की कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम हैं। दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारतीय बहरिया का अंदरूने मुल्क तैयार करदा निगरानी से मुतालिक बहरी जहाज INS इक्षक जनूबी मगरबी बहरे हिंद खित्ते में इसकी तैनाती के हिस्से के तौर पर सेशेल्स में विक्टोरिया बंदरगाह पहुंच गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि सेशेल्स के 50वें कौमी दिन के मौके पर यह बहरी जहाज वहां पहुंचा है। इसने मजीद कहा है कि इससे भारत और सेशेल्स के दरमियान बढ़ती बहरी शराकतदारी और देरीना दोस्ती का इजहार होता है। इस दौरान INS इक्षक कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेगा और सेशेल्स की दिफाई अफवाज के साथ सिलसिलेवार पेशावराना राबते कायम करेगा जिनका मकसद बहरी इश्तराक और एक दूसरे के तरीकेकार से वाकफियत में इजाफा करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DT न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात ओ नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर में नायब वजीर आला हर्ष सिंघवी की मौजूदगी में जिला तरक्याती तालमेल और निगरानी कमेटी की सदारत की। वजीर मौसूफ ने मरकज की कई अहम स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया। किसानों को माली एतबार से बाख्तियार बनाने की गरज से जनाब शाह ने एक तेज रफ्तार सर्वे कराए जाने की बात कही ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जमीन रखने वाले हर किसान को कम अज कम 2 मवेशी मुहैया कराए जाएं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि दुनिया भर में किसी भी मईशत की मजबूती बहुत छोटे छोटे और मुतवस्सित कारोबारी इदारों के इसके शोबे के इश्तराक पर मबनी होती है। आज नई दिल्ली में MSME के दिन 2026 उद्यमी भारत की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में MSME का शोबा पहले सिलसिले के एंटरप्रेन्योर्स के हौसले और कारोबारी जज्बे की अक्कासी करता है। नायब सदर ने कहा कि यह शोबा मुसलसल आला मियारात को बरकरार रखते हुए मुल्क की कुल बरामदात में तकरीबन 50% का तआवुन कर रहा है। जनाब राधाकृष्णन ने मजीद कहा कि MSME का शोबा 2047 तक विकसित भारत की जानिब मुल्क के सफर में एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our honorable PM Shriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इज्तिमा से खिताब करते हुए MSME के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने कहा कि मरकजी बजट से MSME के शोबे के लिए हुकूमत की तरजीह और अज़्म का इजहार होता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत एक ऐसे इको निज़ाम की तश्कील के लिए अहदबंद है जहां हर कारोबारी को इख्तरा तरक्की और मुल्क की तामीर में तआवुन करने के बराबर के मौके मयसर हों।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी, ये दर्शाता है।

0: है कि प्रधानमंत्री जी एमी शमी को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: वज़ीरे आज़म के म्यूजियम और लाइब्रेरी PMML में आज अनजहानी वज़ीरे आज़म PV नरसिम्हा राव के 105वें यौमे पैदाइश के मौके पर उनकी हयात और विरासत के तई वक्फ एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह PMML की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदरनशी नृपेंद्र मिश्रा ने किया और प्रधानमंत्री संग्रहालय में लगी इस नुमाइश को देखने वालों के लिए खोल दिया। इस नुमाइश में ऐसी नायाब तस्वीर, सरकारी दस्तावेजात, तकारीर, खतो मुरासले और आर्काइव से मुतालिक साजो सामान रखा गया है, जिससे अवामी जिंदगी में नरसिम्हा राव के काबिले कद्र सफर का इल्म होता है। वजारत दिफा ने आज कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी पोस्ट्स गर्दिश कर रही हैं जिनकी रूह से वजीर दिफा राजनाथ सिंह के पिछले बरस 28 जुलाई को पार्लियामेंट के ऐवान में दिए गए खिताब की गलत तर्जुमानी की जा रही है। वजारत ने कहा है कि इन पोस्ट्स में उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को अलग करके इस तरह दिखाया जा रहा है जिससे ये झूठा गुमान गुजरता है कि जनाब सिंह ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भारतीय फौजी की जान तलफ नहीं हुई है। वजीर दिफा के बयान के तनाजुर की वजाहत पेश करते हुए वजारत ने कहा है कि जनाब सिंह के खिताब के वक्त मीडिया के कुछ हिस्सों और सोशल मीडिया पर एक मखसूस मुस्तकिल और पुर असर बयानिया उभरा जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पायलट्स की जानें तल्फ हुई हैं। वजारत ने कहा है कि ये बयान कतई गलत था, इसके बावजूद इसे बहुत शिद्दत के साथ तूल दिया जा रहा था जिसमें वाजह तौर पर ऑपरेशन की कामयाबी को कम करने और अवामी जज्बात को मजरूह करने की नीयत कारफरमा थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा इस बात का एतराफ किया है कि जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इस सिलसिले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची ने आज एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगली मीटिंग में इन इस्तीफों पर गौर वखोज किया जाएगा। इसमें इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अकीदतमंदों की जानिब से दान में दी गई चांदी की ईंटें और जेवरात वगैरह का हिसाब किताब लिया जाएगा। ट्रस्ट ने अपने खत में कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में पेश आए हालिया वाकयात से उसे इंतहाई अफसोस और सदमा पहुंचा है। इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि SIT की अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक अतियात से मुतालिक मामले में एक FIR भी दर्ज की गई है जिसके तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET से मुतालिक पेपर लीक होने के एक बड़े वाकये का राज भिवंडी में फाश हुआ है। इम्तिहान के इनेकाद से एक दिन कबल इस बात का इल्म हुआ और पेपर लीक मामले में मुलव्वस 3 मुबैना अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजमीन TET के सवालनामे दिल्ली से लेकर आए थे और वो मुबैना तौर पर तकरीबन 1.5 करोड़ रूपये की मालियत के एक सौदे में उन्हें फरोख्त करने की तैयारी कर रहे थे। एक सुराग मिलने पर कार्रवाई करते हुए भिवंडी की पुलिस ने एक जाल बिछाया और लेन देन तय पाने से कबल ही 3 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र की स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने इतवार को होने वाले TET के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस वाकये के सबब महाराष्ट्र भर में लाखों उम्मीदवारों के दरमियान तशवीश पैदा हो गई है। मगरबी एशिया में 4 महीने से जारी महाजराई को खत्म करने की गरज से 2 हफ्ते पहले तय पाई कमजोर जंगबंदी को इंतहाई दबाव का सामना है। पिछले 48 घंटे में अमरीका और ईरान के दरमियान कई हमले और जवाबी हमले हुए हैं। हमलों ने जुमेरात के रोज उस वक्त जोर पकड़ा जब आबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल जहाज पर किए गए ईरानी हमले के जवाब में अमरीका की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। इसके बाद तेहरान के बकौल आज खत्ते में अमरीकी फौजी पोजीशन के खिलाफ उसका हमला एक दिफाई हमला था। दोनों ही मुल्क अबूरी माहदे की खिलाफवर्जी का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं जबकि अमरीका और ईरान दोनों ही जैसे को तैसा मुहावरे पर अमल करते हुए फौजी कार्रवाइयों के एक सिलसिले में मुलविस हो गए हैं जिससे 40 मुल्कों की सिफारती कोशिशों को खतरा लाहक हो गया है। अफगानिस्तान के हिंदूकुश खत्ते में आज शाम भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:04 पर 6.2 शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया। जलजले के झटके भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान में महसूस किए गए। दिल्ली NCR, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत शिमाली भारत के कई हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा और

0: मुजीनों समेत मरकज के जेर इंतजाम कई इलाकों में लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आए। एहलकारों ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में साइंसदान संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि यह जल्जला अपनी नौयत के एतबार से मोतदिल था और इसके मरकज के नजदीक तवक्को है कि नुकसान भी काफी कम हुआ होगा।
1: कि जो गहराई वो 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, और इसके झटके जो है दिल्ली एनसीआर चंडीगढ़ श्रीनगर हिमाचल प्रदेश कई हिस्सों में महसूस किए गए और रिपोर्ट के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये रीजन में महसूस किए गए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज गर्मी की पेशगोई की है। दिल्ली में कल आरजी तौर पर मतला अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। US ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में टाइटन जिम में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने जापान की तीसरे दर्जे की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेटों में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। कल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। मर्दों के सिंगल्स में साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जोफो को 21-9, 12-21, 21-8 से शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल के लिए इस इम्कान को बरकरार रखा है कि फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान आजाजी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेज और दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द बोर्ड से मुतालिक मामलों के बाद अखलाक बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावे भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल चेतावनी दी कि जो कोचिंग सेंटर जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत रेगुलेटरी कानून लाएगी ताकि ज्यादा सख्त निगरानी, बेहतर जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे उनकी संख्या 900 हो या 1000, संख्या मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा कैसी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की जानकारी ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए दे सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक

0: Meanwhile, experts have warned that Swiss glaciers may lose vast amounts of ice due to the extreme heat wave across the continent. The snow and ice that accumulated on Switzerland's glaciers over the winter is expected to have completely melted by tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा का। ये वो कार्यक्रम है जिसमें सुनते हैं आप गोल्डन एरा के वो खूबसूरत गीत जो हमेशा सदाबहार रहते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश कुमार की गाइस शोर फिल्म के गीत के साथ।

कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है रास्ते का पत्थर, आवाजें हैं आशा भोसले और मुकेश की।

0: गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया और आवाजें हैं लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की।
1: शील शील कहाँ खोई हुई हो?
2: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
1: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। और अभी थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखें, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार। जाओ ना।

गीत सुनहरे कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दो चोर से है, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

ये खूबसूरत गीत सुना आपने किशोर कुमार की आवाज में। लीजिए सुनते हैं अगला गीत, एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में है और आवाजें हैं, जी हाँ, हमने आपको बता दिया, किशोर कुमार की फिल्म का नाम है अपराध।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है अपना देश, आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

गजरा। गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म उपहार से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी की।

पिया का घर का ये खूबसूरत गीत आवाजें किशोर कुमार की। लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है दोस्त, आवाजें एक बार फिर किशोर कुमार और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम आपकी किस्म। इस गीत के साथ ही फिलहाल अपनी दोस्त सरिता को दीजिए गीत सुनहरे कार्यक्रम को यही संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 6,750 करोड़ रुपए की 2 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए भारत के प्रमुख केंद्रों में से एक बनने के लिए तैयार है। परियोजनाओं के महत्व पर श्री वैष्णव ने कहा कि इन सुविधाओं में उन्नत मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB बनाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने बुनियादी ढांचे के परिवर्तनकारी प्रभाव पर बल देते हुए कहा कि प्रस्तावित दिल्ली लखनऊ वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगा। कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार पुलिस स्टेशन इलाके में हाटा पिपराइच रोड पर एक कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 25 साल के विवेक सिंह, 31 साल की शालू और 55 साल की माधुरी इलाज के लिए मोटरसाइकिल से गोरखपुर जा रहे थे। आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये दुर्घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हाटा पिपराइच रोड पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर एम अभिषिक्त किशोर और शहर के पुलिस आयुक्त शंखव्रत बागची ने 30 जून को भारत की राष्ट्रपति की विशाखापत्तनम यात्रा के लिए कल सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने INS डेगा, राष्ट्रपति के यात्रा मार्गों और नोटेल के बैठक स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभी विभागों को प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने और सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अचूक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात मार्ग में परिवर्तन, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और निगरानी सहित व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पाकिस्तान के कराची में घनी आबादी वाले गुलिस्ताए जौहर इलाके में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें कल 3 पैरामिलिट्री जवान मारे गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में

आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। आज के गीत बहार कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सरिता, लेकर आई हूं बेहतरीन गीतों का खूबसूरत सा पिटारा। तो आनंद लीजिए कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का।

0: दोस्तों इसी खूबसूरत से गीत के साथ है गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को हैं। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों में हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। एक प्राइवेट मीडिया चैनल के डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें एडिशन में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने हेल्थ पॉलिसी को लेकर नजरिया बदला है। अब सरकार सिर्फ बीमारी के इलाज के बजाय अच्छी सेहत पर और सिर्फ बीमारी को ठीक करने के बजाय पूरी हेल्थ केयर पर ध्यान दे रही है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को सबसे अहम माना गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कल मरकापुरम जिले के किस्टम सेट्टीपल्ले गांव में संजीवनी डिजिटल नर्व सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि संजीवनी डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम 15 अगस्त से पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा, जिसमें हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा होगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों तक की हेल्थ केयर सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने चेन्नई पोर्ट के जरिए चीन में बने पटाखे और आतिशबाजी के सामान भारत में तस्करी करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान निदेशालय के अधिकारियों ने चीन से आए 2 40 फीट के कंटेनर रोके, जिनके बारे में गलत जानकारी दी गई थी। उनमें ट्रॉली बैग और स्प्रेयर हैं। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि इन कंटेनरों में करीब 46,000 पटाखे और आतिशबाजी के सामान छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें चालाकी से अन्य सामानों के पीछे छिपाया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister

रहे हैं, आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन, अनमोल, खूबसूरत गजल के साथ। और यह गजल है बहुत ही खूबसूरत। जी हाँ दोस्तों, यह गजल अपने आप में बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब है। साथियों, गजलों का जो मूड होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। जी हाँ, सादगी सिंगार हो गई तस्वीर एल्बम से बहुत ही शानदार खूबसूरत रचना है, अहमद एंड मोहम्मद हुसैन की आवाज में बेहतरीन लाजवाब गजल। यह गजल 1995 में प्रदर्शित हुई थी और गीत बेकाल उत्साही और संगीत से सजाया है अहमद मोहम्मद हुसैन ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की बहुत ही खूबसूरत गजल।

जी हाँ श्रोताओ, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गजल सादगी। जी हाँ, सादगी अदा हो गई, वाकई बहुत ही सुंदर श्रृंगार हो गई, लाजवाब जज्बात और बेहतरीन खूबसूरत गजल। बढ़ते हैं एक और लाजवाब गजल की ओर, और यह गजल है बहुत ही सुंदर, बेहतरीन गजल, और पूरा दुख आधा चांद एल्बम खुशबू से एक शानदार बेहतरीन लाजवाब गजल, रूप कुमार राठौड़ की आवाज और साथ में सोनाली राठौड़ की आवाज में सुंदर बेहतरीन लाजवाब गजल। और ये गजल के लिरिक्स यानी कि जो गीत हैं प्रवीण शाकिर के हैं और संगीत रूप कुमार राठौड़ का। तो आइए सुनते हैं एक और लाजवाब गजल।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गजल। ये गजल, जितनी भी गजलें अभी प्ले की हैं, वाकई बहुत ही अनमोल गजल हैं। और अक्सर अक्सर ये भी देखा गया है कि जो रैंडमली कोई भी गजल या गीत है, अक्सर वही सुनने को मिलता है। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि एक नयापन हो खूबसूरत गीत में भी और कुछ गजलों में भी। जी हाँ, वाकई बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब गजलों का समावेश बन रहा है। तो अब सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत गजल है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, गालिब पार्ट वन से है। आवाज शुमोना रॉय विश्वास की है और ये एल्बम 1999 की एल्बम है और शानदार गजल है। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन, अनमोल, खूबसूरत गजल एक नई आवाज के साथ।

बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत गजल। हालांकि यह गजल न जाने कितने जो गायक या उस्ताद हैं गाई होगी, लेकिन इनकी अदायगी, इनके खूबसूरत अंदाज में लाजवाब गजल एक बार फिर से आपने सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत गजल।

एक और खूबसूरत गजल आ रही है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही खूबसूरत गजल है और सुंदर कोमल, सुंदर कोमल सपनों की बारात, ये टाइटल है इस गजल का। एल्बम इशारा, आवाज सोनाली राठौड़ की, प्रोडक्शन ईयर 1997। गजल कैटेगरी में शानदार गजल है और यह गजल वाकई बहुत ही सुंदर है। गीत प्रवीण शाकिर के और आवाज से सजाया है रूप कुमार राठौड़ ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गजल।

जी हाँ, वाकई बहुत ही सुंदर, लाजवाब खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। यह गजल वाकई बहुत ही सुंदर है, बस्ती में टाइटल है और इशारा एल्बम से सुंदर खूबसूरत रचना है। आवाज रूप कुमार राठौड़ की और गीत यानी कि गजल जिन्होंने लिखी है वो है कैश उल जाफरी और संगीत से सजाया है रूप कुमार राठौड़ ने। तो आइए सुनते हैं एक और अनमोल खूबसूरत गजल।

वाह क्या बात है, बेहतरीन लाजवाब गजलें, वाकई बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल की अंतिम रचना, गजल

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल, जिनमें आज आपने सुनी थी बहुत ही सुंदर सुंदर बेहतरीन लाजवाब गजलें। गजलों का कार्यक्रम यानी कि गीत गजल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 4 बजने को हैं और अब कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस शैलजा और एस सौंदर्या का भक्ति संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं थिरुनयना संबंधार की रचना पीडी अदान से।

0: इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म, वोकल रेंडिशन बाय अनन्या वेंकटेशन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक म्यूजिक, वोकल बाय रेंडिशन, वोकल रेंडिशन बाय अनन्या वेंकटेशन, वायलिन पर विदुषी जी उमा और मृदंग पर विदुषी वी एम कानन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि। तदनुसार 28 जून 2026 सुबह के 4:53.10 हुए हैं। इन मीटरों पर हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे। श्रोताओं, 5 बजे न्यूज इन हिंदी और 5:05 अंग्रेजी में समाचार होंगे। 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योग उज्जाई प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा जिसमें आप सुनेंगे देशभक्ति गीत हम जिंदा हैं सतीश भाटिया के स्वर में। 5:30 का समय है कार्यक्रम स्वर रंजनी का जिसमें आप सुनेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक।

0: 5 बजने को हैं, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हमनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे ब्रिटेन की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता के तहत मिल रहे नए अवसरों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत ब्रिटेन व्यापार सत्र की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का एक क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव शॉ और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के बड़े लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है ताकि हर नागरिक को आसानी से और सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। राज्य मंत्री ने इसका ब्यौरा दिया। एक प्राइवेट मीडिया चैनल में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य योजना को लेकर नजरिया बदला है। अरुणाचल प्रदेश में केई पानीयूर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले के उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन केमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermony, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
3: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kamen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Man Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम आओ योग करें। आज का योगा है उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन।

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम किस सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में

हाइपर या हाइपो थायराइडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं। यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।